0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
2: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषण मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। श्रावण प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रावण मास और अपने चरमोत्कर्ष पर भगवान शिव और माँ पार्वती की और आप लोग पूजा कर रहे हैं, क्यों न हो भगवती जगदम्बा तो और भगवान शिव की अर्धांगिनी है। जयाम्बिके जगन मातर जय सर्व जगन्मयी जयान वधिकैश्वर्ये जयानुपम विग्रहे जयवांग मनसातीते जया चिद्ध्वान्त भंजिके जय जन्म जराहीने जय कालोत्तरोत्तरे मन वाणी से अतीत शिवे आपकी जय हो। अज्ञानांधकार का भंजन करने वाली देवी आपकी जय हो। जन्म और जरा से रहित हे माँ हे उमा आपकी जय।

0: हो काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्ति वाली दुर्गे आपकी जय हो। जयानेक विधानस्थे जय विश्वेश्वर प्रिय जय विश्वसुराराध्ये जय विश्वब्रिजिम्भणी। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी आपकी जय हो। विश्वनाथ प्रिय आपकी जय हो। समस्त देवताओं की आराधनिया देवी आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली जगदम्बिके आपकी जय हो। जय मंगल दिव्यांगी जय मंगल दीपिके जय मंगल चारित्रे जय मंगल दायिनी मंगलमय दिव्य अंगों वाली देवी आपकी जय हो। मंगल को प्रकाशित करने वाली आपकी जय हो। मंगलमय चरित्र वाली सर्व मंगले आपकी जय हो। सर मंगलदायिनी देवी आपकी जय हो। नमः परम कल्याण गुण संचय मूर्तये त्वत्तः खलु समुत्पन्नम् जगत्त्वायैव लीलये। परम कल्याणमय गुणों की आप मूर्ति हैं, आपको नमस्कार है। हे माँ, संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है और आप में ही लीन हो गया। हे भगवती, हे जगदम्बा, सदा शिवांकमारूढ़ा शक्तिरिच्छा शिवालया जननी सर्वलोकानां प्रयच्छतु मनोहरम मनोरथम। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यालिनी देशो हम शुभरणी तो ब्राह्मण संतो निर्भया। बादल समय पर वर्षा करें, पृथ्वी धान्य से समृद्धि हो, यह देश भारतवर्ष शोभरहित हो जाए और ब्राह्मण निर्भर हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका सुख का कल्याण करें, सबके सुख में आनंद चित से जीवित रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख वा भवेत्। सबके सुख के लिए, देश के कल्याण के लिए, परिवार के हित के लिए, समाज के हित के लिए, सबके कल्याण में अपना कल्याण बनाएं, सबके खुशियों में अपने को हर्षित माने, भाग्यशाली माने, तब जा कर के यह जीवन सतर्क और पवित्र रहता है। स्वस्थयस्तु हो विश्वस्य खल प्रसीदता, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथ्योदया, मनजस्य भद्रे बजातु धयते भोक्ष जयेत, आवेशयताम नोः मतिरा मित्यात्मोपिशाम।

0: विश्व ब्रह्मांड का कल्याण हो, सभी हित का कल्याण हो, आकाश पृथ्वी जल विश्व का कल्याण में ही अपना कल्याण होता है। दुष्ट लोग शांत हो जाए, जितने दुष्ट कर्म वाली है, जितने क्रोध वाली है, जितने अहंकार वाले हैं, वो के मन में शांत प्रदान करें, सबका कल्याण हो, कोई किसी के लिए दुष्ट शब्द और दुख न दें। इस कल्याण के लिए सभी प्राणी अपने बुद्धि के द्वारा एक दूसरे का भला सोचें, सबका हित के लिए सोचें, सबका कल्याण के लिए ही सोचें, मन सदा भलाई और मंगल का ही चिंतन करें, एवं हम सब की बुद्धि बिना किसी हेतु के भगवान में आविष्ट रहें। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानामश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री रामदूताय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज सैटरडे 22 अगस्त के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करता हूं। कल जहां से विराम लिया था दोहा संख्या 58 वहीं से हम आगे बढ़ते हुए आज दोहा संख्या 39 को हम प्रारंभ करते हुए शिव सती चरित्र को आगे बढ़ाते हैं।

सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना,

ही, उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहे हैं। कही

वेद जसु गावा। सती जी के हृदय ग्लानी कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहने लगी कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं

0: चलिए आज इसको ही पर विराम दे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: श्रावण मास के विशेष कार्यक्रम में आर्य सभा मॉरिशस से पंडिता नर्मदा पतिया की ओर से श्रोताओं को हमारी सादर नमस्ते। सेवा में प्रस्तुत है एक वेद मंत्र। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम् तन्मे राध्यताम इदम् अहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। ओम शम। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के इस पांचवें मंत्र में वेद माता हमको यह सीख दे रही है, परमेश्वर की ओर से उपदेश दिया जा रहा है कि हमें न्याय युक्त सत्य को ग्रहण करना चाहिए जो सबका

अला करने वाला है। मनुष्यों का आचरण दो प्रकार का होता है, एक सत्य और दूसरा झूठ। अर्थात जो मनुष्य मन और वाणी से सत्य का आचरण करते हैं वे देव कहलाते हैं, और जो झूठ का आचरण करने वाले हैं वे असुर, राक्षस आदि नामों के अधिकारी होते हैं। ये शुभ और अशुभ संस्कार हमारे जीवन को बड़ा प्रभावित करते हैं। शुभ संस्कार विशाल रूप से बढ़ जाने पर व्यक्ति को देवता की श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर देता है। देवता का सही अर्थों में दूसरों को देने वाला, दूसरों का हित करने वाला, दुख दूर करने वाला होता है। सत्य जीवन की आधारशिला है। जहाँ सत्य है वहाँ प्रकाश है, वहाँ उन्नति है, वहाँ जीवन ज्योति है और शांति है। असत्य को छोड़ना अवनति का प्रथम सोपान है। वह अवनति हमें जीवन के लक्ष्य से दूर ले जाती है। सत्य प्रकाश है, वह मार्गदर्शक है और विघ्नों के समय सबसे बड़ा रक्षक है। सत्य देवत्व की ओर ले जाता है, असत्य दानवता की ओर। मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए सत्य का व्रत लेना आवश्यक है। यह व्रत ही उसे घोर विपत्तियों के बाद सत्य रूपी ब्रह्म का दर्शन कराता है। इस मंत्र में अग्नि व्रतपति, हे अग्नि रूप परमात्मा, व्रतों के पालक, व्रतम चरिष्यामि, हम सत्य आदि का व्रत पालन करेंगे। सफलता उसी को मिलती है जिसे सफलता पर विश्वास होता है। आत्मविश्वास के बिना ईश्वर या देवता भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। जीवन में महान कार्य वे ही लोग करके दिखा सकते हैं जो दृढ़ आत्मविश्वासी है। जिन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं, वे कुछ नहीं कर पाते। आत्मविश्वासी लोग जीत की ओर, प्रगति की ओर बढ़ते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी एक व्रत धारण किया था, व्रत पालन। व्रत सिद्ध हो और हमारी आत्मविश्वास की शक्ति से असंभव लगने वाले कार्य इस जंगल लगने वाले देश को उपजाऊ बनाकर विश्व को चमत्कृत कर दिया। अपनी कार्य क्षमता के बल पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता। सफलता घर बैठते नहीं मिलती। सफलता प्राप्त करने से पहले दृढ़ आत्मविश्वास व्रत धारण करना होता है। यह व्रत जो लोग प्रायः कहते हैं कि आज मेरा व्रत है, उपवास है, भोजन नहीं करूँगा आदि, कदापि नहीं। व्रत लेना दृढ़ आत्मविश्वास का होना है। इस विराट ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली अपूर्व अद्भुत ढंग से सुनियोजित है। प्रकृति स्वयं हमें इस बात की शिक्षा देती है कि सफलता का भेद क्या है। किसी पेड़ के उगने से पहले उसका बीज पढ़ना, डालना आवश्यक है। ऐतरेय ब्राह्मण ने इस विषय में सुंदर बात कही है कि श्रद्धा पत्नी सत्यम यजमान। श्रद्धा पत्नी है और सत्यम यजमान। यजमान सत्य के साथ श्रद्धा रूपी पत्नी भी आवश्यक होनी चाहिए। सत्य के श्रद्धा के समन्वय से ज्ञान और विवेक की ज्योति उत्पन्न होती है। दोनों का समन्वय ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करता है। सत्यम ब्रह्म। मनुष्य को व्रत में सफलता के लिए आत्मिक शक्ति चाहिए। वह शक्ति हमें एकमात्र परमात्मा से प्राप्ति होती है। यही शक्ति है, इसका ही बार बार मनन और चिंतन करना चाहिए। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

आदरणीय श्रोतागण, सादर सप्रेम नमस्ते। श्रावणी वेद मास उपलक्षे गहलोत राजपूत महासभा की ओर से यह

अच्छा, आप देव शक्तियों को धारण करने के दृढ़ और सुयोग्य पात्र माध्यम हैं। आप और आपके यज्ञ संचालक कुटिल न बने, पोषक विष्णु देव ही आप पर आरूढ़ रहे। विशाल वायुमंडल में विचरण करते हुए वायु सेवन प्राण संवर्धन करें। राक्षसी वृत्तियां दूर करने के बाद पांचों उंगलियां अथवा पांच विद्या शक्तियां कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, मन शक्ति, बुद्धि शक्ति और आत्मशक्ति ईश्वरीय प्रयोजनों में लगे। ओ

सृजनकर्ता परमात्मा द्वारा रची गई सृष्टि में मानो अश्विनी कुमारों की बाहुओं तथा पूषा देव के हाथों से तुझे साधक के हविष यान को ग्रहण करता हूँ। अग्नि को जो प्रिय लगे हम अधर्व वही विष यान स्वीकार करते हैं। अग्नि तथा सोम के लिए प्रिय पदार्थ ही ग्रहण करते हैं।

कक्षा आपको अनुदारता के लिए नहीं उन्नति के लिए निर्मित किया है। हमें आत्मा में विद्यमान ज्योति दिखाई दे, इस पृथ्वी पर सज्जनता का बाहुल्य हो। धन्यवाद। ओ

प्रजा के स्वामी प्रजापति, आप सभी प्रजाओं का पालनहार हैं। आप सृष्टि में वास करने वाले सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी उत्पन्न हुए जड़ और चेतन पदार्थों को अपने वश में नहीं कर सकता। आप सबसे ऊपर हैं। हम जिस जिस उत्तम पदार्थ की कामना करते हैं तथा उन्हें पाने के लिए आपकी सहायता लेते हैं, शुद्ध मन से प्रार्थना करते हैं, हमारी कामनाएं और प्रार्थनाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो, जिससे हम सब लोग धन ऐश्वर्य, बल बुद्धि, ज्ञान और सुख समृद्धि के स्वामी बनें।

0: धन की इच्छा एवं धन की वृद्धि के लिए शुद्ध व्यापार एक उत्तम मार्ग है, एक उत्तम कर्म है। जिस पूंजी अथवा धन को लगाकर व्यक्ति व्यापार करता है और धन को बढ़ाता है, उसकी रुचि और एकाग्रता उस व्यापार में बनी रहे। इंद्र, प्रजापति, सूर्य, सोम और अग्नि देव की कृपा उस व्यापार और व्यापारी के ऊपर बनी रहे। व्यवसाय करने वाले व्यक्ति की रुचि व्यवसाय में बनी रहे। यह रुचि तभी बढ़ती है जब व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार काम करें। उत्तम व्यापारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अपने व्यापार को सुचारू रूप से बढ़ाते रहें। धर्म से जुड़ा हुआ धन दरिद्रता का नाश करता है।
1: ओम इन्द्रधनस्य सातये हवामहे जेतारम् अपारजितम् स्वर्षडति द्विशंसनः स्वर्षडति द्विषः।
0: विद्या और ऐश्वर्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए सर्वविजयी परम ऐश्वर्यवान परमात्मा को अपने हृदय में आवाहन करें। ऐश्वर्यशाली प्रभु को कोई पराजित नहीं कर सकता। वह धन के दाता परमेश्वर हमारे शत्रु रूपी दुर्गुणों को पूरी तरह नष्ट करके परम सुख प्रदान करता है। वही हमारे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश करता है। इस संसार में सुखपूर्वक निर्वाह करने के लिए हमारा वास्तविक धन विद्या, सद्बुद्धि और उत्तम ऐश्वर्य है। इनकी प्राप्ति और संरक्षण में सुख समृद्धि का विस्तार होता है।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम करुणा जी के साथ है। संध्या नमस्कार आपको करुणा जी।
1: नमस्कार रिया, सभी को नमस्कार। आज सुबह से बंजन ग्रुप के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर एक नया नाम और नया लोगो नजर आएगा, फिनिंग। इस नई पहचान का अनावरण कल आवाचर जिससे खब बोपलों में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया। भंजन ग्रुप के सीईओ विक्रम भंजन ने विशेष रूप से मॉरिशस की कंपनियों की क्षमता पर जोर दिया। उनका ये कहना रहा कि स्थानीय कंपनियों में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। मॉरिशस ने अपनी कोयले की खपत का 15% हिस्सा बायोमास से बदलने का लक्ष्य तय किया है। इसे हासिल करने के लिए वो भारत की विशेषज्ञता की सहायता लेगा। कल भारतीय पक्ष के साथ हस्ताक्षर किए गए एक एमओयू के बाद ऊर्जा मंत्री ने

इसकी जानकारी दी। मॉरिशस में जल संसाधनों की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। कई जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के बावजूद सेंट्रल वाटर अथॉरिटी लोगों तक पानी की आपूर्ति बनाए रखने के प्रयास जारी रखे हुए हैं। और विदेश में यूक्रेन के मध्यवर्ती शहर क्रिवी

0: शामिल हैं। मलबे में अभी भी और लोगों के फंसे होने की खबर है। और अब मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में कुछ घड़ी के लिए बादल घेराएंगे और पूर्व उत्तर तथा सेंट्रल प्लाटो पर जहां तहां बारिश हो सकती है। उसके बाद मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर में पश्चिम एवं सेंट्रल प्लाटो पर बादल घेराएंगे और जहां तहां थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। अन्य इलाकों में धूप खिली रहेगी। तापमान 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। तटवर्ती इलाकों में बल्कि सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, तटवर्ती इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21 अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 6:27 पर, सूर्यास्त होगा 5:59 पर। पूरा बुलेटिन 6:30 बजे, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।
1: Your weather forecast. 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: मनुष्य का अपना क्या है? नाम दूसरों ने दिया, शिक्षा दूसरों ने दी, रोजगार दूसरों ने दिया, धन संपत्ति दूसरे ने दी, पहला और आखिरी स्नान दूसरे कराते हैं, तो मनुष्य को घमंड किस बात का? लेडीज एंड जेंटलमैन, सांसरवास के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यार श्रोताओं, देवी और सज्जनों, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। 819 किलोहर्ट्ज़ पर यह है MBC रेडियो मॉरिशस चैनल, MBC का म्यूजिकल चैनल, जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं, आप सभी का हम शानदार स्वागत करते हैं। आज है शनिवार, शनिवार 22 अगस्त साल 2026, और जी हाँ, ये इस महीने का अंतिम शनिवार होगा, और आशा करते हैं कि आप लोग हमारा साथ ज़रूर देंगे। अभी से 9 बजे तक हम आपका साथ देने आए हैं, और कल रात जो सपने आपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने का समय हुआ है। और सपना देखना अच्छी बात है, पर सपनों को साकार करना ये सबसे बड़ी बात है। सपने तो सभी देखते हैं, पर कुछ लोग उन सपनों को साकार करने में असमर्थ रहते हैं। पर अगर मन में सच्ची लगन हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, तो हम ज़रूर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मौसम तो बड़ा ही प्यारा है इधर, और आशा करते हैं कि आज दिन भर चारों ओर मौसम ऐसा ही सुहाना और प्यारा होगा। हालांकि अभी धूप नहीं निकली है, पर आसमान साफ है, और ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार आज मौसम सुहाना है और टेम्परेचर में 2 डिग्री बढ़ोतरी भी होगी, चलिए अच्छी बात है। इस नई सुबह का आगाज कीजिए हमारे साथ MBC रेडियो मॉरिशस के साथ, नए विचारों के साथ। अपने मन में इस बात को ठान लें कि आज आप जो काम करेंगे, उस काम में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रातःकालीन सभा को गहलोत राजपूत महासभा के प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम है वैदिक नाथ।
3: सुनिए गहलोत राजपूत महासभा की ओर से वेदों और शास्त्रों पर आधारित कार्यक्रम वैदिक नाद।

देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, सादर सप्रेम नमस्ते। वैदिक नाट कार्यक्रम में हम आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ साथ हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता दर्शन आचार्य श्री रविशंकर जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, श्रावणी उपाकर्म

0: वेद स्वाध्याय एवं ऋषि तर्पण का पर्व है, अतः आज का प्रवचन हम वेद पर ही आचार्य जी द्वारा सुनेंगे।
1: ओम नमस्ते जी। अथर्वेद के 10वें कांड के 8वें सूक्त का ये मंत्र है, अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। वेद का ये मंत्र है और इस मंत्र में कहा है कि वो जो भगवान हैं, वो जो ईश्वर हैं, वो ईश्वर सबके आत्मा में बैठे हुए हैं और सबके आत्मा में विराजमान होते हुए भी मनुष्य उसको नहीं देख पा रहे। हम सब की यही स्थिति है। हम अपने मन में आकलन करें कि क्या हम उनको जान पा रहे हैं, और ऐसी वस्तु जो हमारे सबसे निकट हो वो कौन है? वो ईश्वर ही है। और सबसे निकट होते हुए, सबसे अधिक करीब होते हुए, अभी तो जो हमारा स्वरूप जो इतना सूक्ष्म है, उस आत्मा के स्वरूप में वो परमेश्वर विराजमान है, और इतने करीब होते हुए हमारी स्थिति ये है कि हम उनको नहीं जान पा रहे हैं। तो कहा फिर क्या करना है, अंति संतम न जहाति, भले ही वो हमारे पास में है, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो भगवान तो हमको छोड़ते नहीं हैं, वो तो सदा ही हमको सहयोग करते हैं, सदा ही हमारे साथ में विराजमान हैं। आगे कहा, पश्य देवस्य काव्यम, उस भगवान का जो काव्य है, उस भगवान के काव्य को हम देखें। और बहुत सुंदर बात कही कि भगवान का काव्य कैसा है। तो दो प्रकार से भगवान का काव्य है, एक तो वेद है और दूसरा है ये संसार। हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान की प्राप्ति के दो ही साधन हैं, या तो हम पुस्तकों को पढ़ लें और या फिर हम संसार को देख लें। तो पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं और उन पुस्तकों में जो सबसे प्रामाणिक सत्य पुस्तकें हैं, क्योंकि वो ज्ञान की पुस्तकें परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई हैं, उस ईश्वर के द्वारा ही प्रकाशित की हुई हैं, तो भगवान का ज्ञान कैसा होगा? बिल्कुल निर्भ्रांत होगा, सुस्पष्ट होगा, और इतना गहरा सूक्ष्म ज्ञान पूरी स्पष्टता के साथ में भला ईश्वर के अतिरिक्त और कौन दे सकता है? तो वो जो भगवान का ज्ञान है, उस वेद ज्ञान को पढ़ करके हम क्या कर सकते हैं, उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। पश्य देवस्य काव्यम, इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी आर्यों की परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना ये सृष्टि के आदिकाल से चलता आ रहा है। तो ये एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है इस सृष्टि में, वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना। और ऐसा करते हुए हम उस वेद को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते, उस पर विचार करते चिंतन करते हुए, उस पर निधिध्यासन करते हुए, उन बातों को प्रमाण के द्वारा सुस्पष्ट करते हुए हम उस ईश्वर के करीब पहुंचने में समर्थ हो जाते हैं। जितना भी ज्ञान वेद में है, उपनिषद कहती है, उसका जो सार है, वेद के जो 20,000 से भी अधिक जो मंत्र हैं, ऋक यजु साम अथर्व, तो इन सब मंत्रों का जो उद्देश्य है, जो सार है, जिसके लिए ये सारे वेद मंत्र कह रहे हैं, जिसके लिए सन्यासी तपश्चरण कर रहे हैं, ब्रह्मचारी तपश्चरण कर रहे हैं, गृहस्थी लोग अपने कर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, सब आश्रम वाले और सब वर्ण वाले अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका जो मूल तात्पर्य है, वो तात्पर्य क्या है? वो तात्पर्य है ओम। ओम से जिसको कहा जा रहा है, उस ब्रह्म के विषय में उस सब ज्ञान का तात्पर्य है, मतलब एसेंस जो है कि आखिर ये चारों पुस्तकें बहुत सारे अलग अलग विषयों में बात कर रही हैं, लेकिन अलग अलग विषयों में बात करते हुए भी वो किस एक बात पर मेन मुख्य रूप से फोकस्ड हो रही हैं। तो मेन जो बात है, वो मेन बात है ओम से जिसको कहा जाए, ओम जिसको कह रहा है, वो जो ईश्वर है, वो उसका मुख्य विषय है। और ये जो अथर्वेद का मंत्र है, इस मंत्र का भी मुख्य विषय है, जो इसका देवता है, इसका देवता आत्मा है। आत्मा अर्थात आत्मा से यहां पर ईश्वर का ग्रहण होगा। तो जो ईश्वर है, वो ईश्वर ही इस वेद मंत्र

का विषय है। तो जो काव्य है वो काव्य कैसा है, वो सनातन काव्य है। समय के साथ में इस काव्य में, इस ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। मनुष्य के ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है, अपडेशन हो रहा है। हर जो वस्तु आ रही है हर साल वो क्या हो रही है, अपडेट हो रही है, मॉडल उसका नया लॉन्च हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, न्यू जो अपडेशंस जो हो रहे हैं और पुरानी वाली जो चीज़ है वो हटती जा रही है। तो ये जो चीज़ है ये वेद के साथ में नहीं है। न ममार न जीर्यति, ना तो वो ज्ञान क्या होता, ना तो वो ज्ञान नष्ट होता है और ना ही वो ज्ञान पुराना होता है। तो वेद का जो ज्ञान है, वेद का ज्ञान सनातन ज्ञान है, अनादि ज्ञान है। चूंकि परमेश्वर अनादि है, परमेश्वर की व्यवस्था अनादि है, ईश्वर जो तत्व है, वो जो धर्मी है, वो जो तत्व है, वो अनादि तत्व है। तो धर्मी यदि अनादि है, धर्मी यदि नित्य है, तो धर्मी के जो धर्म होंगे, उसके जो गुण होंगे, वो गुण भी कैसे होंगे, वो गुण भी नित्य होंगे। तो ईश्वर नित्य है, तो ईश्वर का गुण क्या है, ज्ञान ईश्वर का गुण है। तो ईश्वर का गुण ज्ञान है, तो उसका ज्ञान भी नित्य होगा। आप कहेंगे मैं तो इस वेद की पुस्तक को जला दूंगा, ये विधर्मी आएंगे और ये हमारी पुस्तकों को इन्होंने जला दिया या जला देंगे तो क्या नष्ट हो जाएगा? नहीं, पुस्तकों के साथ में वेद का ज्ञान नष्ट नहीं होता। पुस्तक नष्ट हो जाएगी, पुस्तक में जो लिखे हुए जो फॉन्ट्स हैं वो जला दिए जाएंगे, डजंट मैटर। पुस्तक का जलाना एक अलग विषय है, वेद का नष्ट होना एक अलग विषय है। ज्ञान जो है वो ज्ञान किसका धर्म है, ज्ञान धर्म है चेतन का, और वो चेतन है ईश्वर। तो चेतन का धर्म ज्ञान है और वो ज्ञान ईश्वर में सदा रहेगा। इसलिए कहा वेद के मंत्र में कि उस भगवान के काव्य को देखना है जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता है, जो कभी भी पुराना नहीं होता है। और इसका जो दूसरा अर्थ है, वो दूसरा अर्थ है कि पश्य देवस्य काव्यम। तो उसका काव्य क्या है, ये जो सारा संसार है, ये सारा संसार उस भगवान का काव्य है। तो एक तो हम पुस्तकों से पढ़ते हैं और पुस्तकों से पढ़ करके उस ईश्वर तक पहुंचते हैं, वेद को पढ़ करके ईश्वर तक पहुंचते हैं। लेकिन कोई ऐसे हैं जो पढ़े हुए लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हृदय से सच्चे हैं, ईमानदार हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वो इस सारे संसार को देख करके, इस सारे संसार को अनुभव करके, इस संसार में क्या है, कैसे लोग हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या सृष्टि में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या नियम काम कर रहे हैं, तो हम इस सृष्टि को देख करके, इस सृष्टि में, इस संसार में हो रहे उन नियमों को देख करके, उन परिवर्तनों को देख करके, मनुष्य के स्वभाव को देख करके, मनुष्य की चेष्टाओं को देख करके, हो रहे नित्य व्यवहार को देख करके, हम अपने पत्नी से, पति से, बच्चे से, माता से, पिता से, मित्र से, संबंधी से, राजा से, गुरु से, शिष्य से, इन सब से तो हम व्यवहार करते रहते हैं और सब एक दूसरे से व्यवहार करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये देखना है। तो ये जो सारा जगत है, इस जगत में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो जड़ के साथ में हो रही हैं, चाहे वो सृष्टि में घटनाएं हो रही हैं, और चाहे वो चेतन सत्ता के साथ में जो व्यवहार हो रहे हैं, जब एक ईश्वर को जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, या फिर जो नहीं भी जानने की इच्छा रखता है ईश्वर को, लेकिन वो इस संसार को बड़ी ही ईमानदारी से, सूझबूझ से, बुद्धिमता से, जागरूकता से इस संसार के साथ में व्यवहार कर रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर भी धीरे धीरे चल करके वो भी धीरे धीरे सत्य तक पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? इसलिए पहुंच जाएगा क्योंकि भगवान की जो सृष्टि है, भगवान ने ये जो इंद्रियां बनाई हैं, जो मन बनाया है, ये शरीर बनाया है, ये जो प्रकृति की सारी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था ही ऐसी है कि यदि जागरूकता के साथ में हम इस संसार का भोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, इसको देखेंगे, खुली आंखों से सुनेंगे, कान खुले रखेंगे, पूरी जागरूकता के साथ में जब हम इस संसार को देखेंगे, करेंगे, तो फिर हमको इसका ज्ञान अवश्य ही होगा और हम उसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे जो हमारे ऋषि पहुँचे थे। हम उसी तत्व तक पहुंचेंगे जिस तत्व के विषय में वेद कह रहा है। तो वेद जिसके बारे में कहना चाह रहे हैं, ईश्वर स्वयं वेद के बारे में मंत्रों के माध्यम से जिसके बारे में कहना चाह रहे हैं, ऋषि जिस पद का व्याख्यान करना चाह रहे हैं, उसी पद के विषय में, उसी ईश्वर के विषय में
आत्मा मनुष्य जानने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब इस संसार को देखेगा, संसार के परिवर्तनों को देखेगा, अपने आप को देखेगा,

0: और वो ये पाएगा कि मैं तो इस संसार से तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी इंद्रियाँ, भगवान ने इंद्रियाँ बनाई ऐसी हैं, तो मैं तो, मेरी जो इंद्रियाँ हैं वो इंद्रियाँ तृप्त नहीं हो पा रही हैं, मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो फिर उसको उसी भूमा की तरफ जाना पड़ेगा, वो खोज करेगा, वो देखेगा आखिर कहाँ मुझे शांति कहाँ मिलेगी, मेरा ठहराव कहाँ होगा, मैं कहाँ जा कर के अपने आप को स्थिर कर सकूँगा। तो जैसे जब उसकी खोज करने लगेगा, देखने लगेगा, संसार को देखने लगेगा, देखते देखते देखते देखते वो उसी एक चेतन तत्व ईश्वर की तरफ ही आकर के टिकेगा। तो इसलिए इस वेद मंत्र में जो बात कही गई है, अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।
1: हम आचार्य जी को धन्यवाद करते हैं उनके उत्तम विचारों के लिए। हमें पूर्ण आशा है कि हमारे श्रोताओं को लाभ पहुंचा होगा। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वैदिक नाद।

तीन चीज़ों पर कभी घमंड मत करना, पैसा, ताकत और अपनी अक्ल पर। पैसा आज है तो कल नहीं, ताकत कमजोरी बन सकती है और अकलमंद इंसान मूर्ख भी बन सकता है। सुबह के 6:18 हो रहे, प्यारे प्यारे श्रोताओं, एक बार फिर आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। 2 मिनट में सुबह के 6:20 होने वाले हैं, तब आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम श्रावण मास के संदर्भ में। और यह कार्यक्रम हमें लेकर जाएगा सुबह के ठीक 6:30। ठीक 6:30 आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का हाल, स्पोर्ट्स रिव्यू। सुनते रहिए प्यार के साथ MBC रेडियो मॉरिशस। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

अर्थात हम वेद मंत्रों को सुने, वेद विरोध कभी न सुने। ओम शम। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से मैं पंडिता राजवंती पियती आप सभी श्रोताओं का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। यह श्रावण मास के शुभ अवसर सभी के लिए हितकर हो। श्रावणी उपाकर्म यह महान पर्व, पवित्र पर्व, इसे चतुर्मासी पर्व भी कहते हैं। सभी के लिए यह महान पवित्र पर्व उपलब्धिदायक हो, हितकर हो। सभी के जीवन में यह पवित्र पर्व आयु, ऐश्वर्य, आरोग्य, अन्न, धन, धान्य, विद्या, यश और स्वस्ति प्राप्ति कराए। सभी को हर प्रकार से लाभकारी हो, कल्याणकारी हो। श्रोतागण, श्रावणी उपाकर्म हर वर्ष

आकर हमको वेद संदेश से अवगत कराता है। कारण है कि वेद ही संसार में सुख का साम्राज्य स्थापित कर सकता है। वेद अपने दिव्य दीप ज्योति से अज्ञान अंधकार को दूर करके हमें सही मार्ग का पथिक बनाना चाहता है। वेद के मार्ग से मानव मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। हमारे प्राचीनतम ऋषि मुनियों का यही उपदेश है, यही उपदेश है कि हम वेद को जानें, वेद को माने, वेद को जानकर अपने को महान बनावें। इस विषय में एक कवि ने कितना अच्छा कुछ कहा है, है वैदिकता का गौरव परम पुरातन, वैदिक शिक्षा अति पुण्य अति पावन, ऋषि मुनि वेदामृत पान किया करते थे, वेदों पर हमारे प्राण दिया करते थे, उस दिव्य ज्योति का ज्ञान उजाला कीजिए, वेदों की विमल विभूति विश्व में भरिए। श्रावणी यज्ञ ही के माध्यम से लोगों को हम वेदों की विमल विभूति का प्रसाद दे सकते हैं। इस यज्ञ के द्वारा हम मनुष्यों में गति उमंग और उत्थान की पवित्र भावनाएं भर सकते हैं। प्रत्येक प्राणी अथवा वे जो वेदों के भक्त हैं, उन भक्तों को और विश्व को भौतिक वातावरण एवं प्रदूषण पर्यावरण से हटकर ऋषि मुनियों ने शांत एवं आनंद की उमंगों से अपने आप को धन्य बनाया है। इससे हम में प्राचीन वैदिक युग का मूर्त रूप से देने की उत्सुकता होती है। श्रावणी का संदेश यही है कि हम अंधकार आच्छादित संसार को वैदिक सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित करें। श्रावणी यज्ञ सबका कल्याण करता है, पथ भ्रष्ट लोगों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर चलने के लिए शक्ति देता है। यज्ञ से प्रभु भक्ति में मन लगता है, यज्ञ से आत्मचिंतन की प्रेरणा मिलती है। इसी कारण विश्व भर में श्रावणी यज्ञ की परिपाटी चलती है। हमारे जीवन में व्रतों और पर्वों का बड़ा महत्व है। श्रावणी यज्ञ में लोग विशेष करके अपने यज्ञोपवीत को बदलकर शुभ कर्मों के लिए भक्ति तो करते हैं, परंतु सत्य वेद अध्ययन एवं आर्ष ग्रंथों के पठन पाठन का व्रत भी लेते हैं, ताकि वेद ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से अपने आप को देख सकें, अपनी संतानों को वेदों की शिक्षा से परिचित करा सकें। स्वाध्याय मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। स्वाध्याय के बिना मनुष्य जीवन एकदम अधूरा है। स्वाध्याय भी अच्छे ग्रंथों का होना आवश्यक है। यदि विपरीत हुआ तो स्वाध्याय का अर्थ ही निरर्थक हो जाएगा। इसलिए युग प्रवर्तक गुरुवर स्वामी दयानंद जी महाराज का विश्व को आवाहन है कि वेदों की ओर लौटो। यही कारण है कि समस्त आर्यजन के आर्यजन लोग यह श्रावणी यज्ञ का आयोजन करते हैं, अपनी सुविधा अनुसार व्रत भी रखते हैं, पश्चात एक दिवसीय दो दिवसीय यथाशक्ति जिस प्रकार से वे लोग प्रबंध करते हैं परायण यज्ञ करा के पुण्य के अधिकारी बनते हैं। इस सावन के महीने में देश भर में सर्वत्र सवेरे सवेरे उषाकालीन शांत वातावरण में जब वेद मंत्रों के कारण सस्वर ध्वनि के मेघमंडल गूंजते हैं, कर्म कुहर में मंत्रों के मधुर स्वर टकरा

आते हैं तो समझो जीवन में नई शक्ति और भक्ति का संचार होता है। लोग अपनी साधना से वेदों के पठन पठन में जुट जाते हैं। इसलिए हमारे प्राचीन काल के आप्त पुरुषों ने इस बात को अपने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद सब धर्मों का मूल है। विश्व शांति का संदेश भी तो वेदों में ही छिपा है। वेद का यह सूक्त है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सबका भला करो भगवन। भला उसी समय सिद्ध हो सकेगा जबकि दुनिया भर के लोग जो वेद के नाम पर गर्व करते हैं वे वेद का स्वाध्याय करना अपना कर्तव्य समझें। इसलिए तो विद्वानों की ओर से आदेश है, स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, क्योंकि प्रमाद से विद्या कभी नहीं आती, प्रमादी पतन को प्राप्त होता है। जो प्रमाद को छोड़ता है वे उत्थान की सोपान पर चढ़ते जाते हैं। ऋषि मुनि गुरुजनों का यही कहना है, यह जो पवित्र धारण करना जब तक है कंधा, व्रती बनो, निस्वार्थ बनो, धर्म मार्ग पर पुरुषार्थी बनो। श्रोतागण, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: 6:30 हैं, पेश है समाचार बुलेटिन। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज सुबह से भंजन ग्रुप के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर एक नया नाम और नया लोगो नजर आएगा, फिलिंग। इस नई पहचान का अनावरण कल बुपलो में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया। भंजन ग्रुप के सीईओ ने स्थानीय कंपनियों की क्षमता पर जोर दिया, जबकि प्रधानमंत्री ने ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मॉरिशस ने अपनी कोयले की खपत का 15% हिस्सा बायोमास से बदलने का लक्ष्य तय किया। इसे हासिल करने के लिए वो भारत की विशेषज्ञता की सहायता लेगा। भारतीय पक्ष के साथ हस्ताक्षर किए गए एमओयू के बाद ऊर्जा मंत्री ने इसकी जानकारी दी। मॉरिशस में जल संसाधनों की स्थिति अभी भी चिंताजनक। कई जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के बावजूद CWA लोगों तक पानी की आपूर्ति बनाए रखने के प्रयास जारी रखे हुए। अब प्रत्येक आयोजक के लिए हज यात्रियों की न्यूनतम संख्या 50 के बढ़ाकर 100 कर दी गई है। कैबिनेट में इसका जायजा। नए नियम आज 22 अगस्त से लागू। और विदेश में यूक्रेन के मध्यवर्ती शहर

0: क्रिव्यी रिह में एक शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। मॉरिशस कोयले की जगह बायोमास का इस्तेमाल बढ़ाएगा। आज सुबह से भंजन ग्रुप के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर एक नया नाम और नया लोगो नजर आएगा, फिलिन। इस नई पहचान का अनावरण कल बुपलो में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया। भंजन ग्रुप के सीईओ ने कहा कि मॉरिशस की कंपनियों की क्षमता पर उन्होंने जोर दिया। उनका ये कहना रहा कि स्थानीय कंपनियों में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। भंजन ग्रुप ऊर्जा क्षेत्र में अपने निवेश को भी जारी रखे हुए हैं। फिलहाल 5 नए भंडारण टैंक का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर लगभग 1 बिलियन रुपये का निवेश किया जा रहा है। सुनते हैं उनके बयान का एक अंश।
1: इकोनॉमिक सोवरेनिटी इज ए नेशनल प्रायोरिटी। दिस एक्विजिशन रिप्रेजेंट्स फार मोर देन जस्ट अ कमर्शियल अचीवमेंट। इट शोज दैट मॉरिशियन कंपनीज आर कैपेबल ऑफ कंपीटिंग, इन्वेस्टिंग एंड सक्सीडिंग इन वाइटल सेक्टर। सिंस जून 2024 आवर टीम हैव वर्कड रिलेंटलेसली टू मेक दिस प्रोजेक्ट ए रियलिटी। टुडे Beta Oil Terminal Limited is the owner of Engen's Mauritius Fuel Distribution Network, as well as its aviation, maritime, lubricant, commercial, and storage operations. For us, Mauritius is not only a market. Maurice, c'est nous pays, c'est nous la case. We are currently constructing 5 storage tanks for the sum of 1 billion rupees, 1 milliard rupees, which will increase the national strategic oil reserve by more than a week. It's no mean feat. By strengthening our country's strategic oil reserve, we are enhancing our resilience to external shocks and disruption in the global energy market. This is what investing in Mauritius means to us. It means building the infrastructure that creates greater resilience and prepare us for the challenges of tomorrow.
0: गौरतलब है कि भंजन ग्रुप ईंधन वितरण करने वाला प्रथम 100% मॉरिशियन समूह है। समूह ने नवंबर 2025 में अपनी सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल के जरिए इंजन पेट्रोलियम मॉरिशस का अधिग्रहण कर ईंधन वितरण क्षेत्र में प्रवेश किया था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने पेट्रोलियम क्षेत्र में भारत के साथ वर्षों से विकसित किए गए सहयोग और साझेदारियों का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां लगातार अनिश्चित होती जा रही हैं, इसलिए मॉरिशस को अपनी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
2: During my state visit to India, I once again raised this important issue of energy security with Prime Minister Shri Narendra Modi. Again, in February 2026, during the AI Impact Summit held in New Delhi, I pursued discussions with Prime Minister Modi again on the strategic imperative on ensuring a reliable and cost-effective supply of petroleum to Mauritius. At that time, there was no war with Iran. Just well before the war broke out. That is why I say we need to be foresighted in our decision. We must think ahead of the curve. Yesterday we witnessed a milestone event with the signature of 2 important instruments with India. First, an MOU on cooperation in the oil and gas sector. And second, the State Trading Corporation and Indian Oil have signed a sales and purchase agreement for the long-term supply of white oil products to Mauritius. These include petrol, diesel, aviation fuel and marine gas oil.
0: गौरतलब है कि मॉरिशस को ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के बायोफ्यूल्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए पहला पायलट देश चुना गया है। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरुवार से।

0: और स्विस की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और हरदीप सिंह पुरी के बीच एक एमओयू का आदान प्रदान भी हुआ। इसके तहत इंडियन ऑयल लिमिटेड के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि के लिए मॉरिशस को ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। मॉरिशस कोयले की जगह बायोमास का इस्तेमाल बढ़ाएगा। मॉरिशस ने अपनी कोयले की खपत का 15% हिस्सा बायोमास से बदलने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो भारत की विशेषज्ञता और सहायता लेगा। ये जानकारी ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादेन ने कल पोर्टवी में भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद दी। ये समझौता खासतौर पर जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल्स और नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े सहयोग पर आधारित है। मंत्री पैट्रिक आसियावादेन को सुनते हैं, विवरण आस्था गोविंद का है।
1: Et moi, je profite l'occasion d'aller là dans une bilatérale, dans une réunion bilatérale, pour soulever 3 issues avec les issues Tamarind Fall, qui nous permet de vivre le plus vite possible.
2: भारतीय मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मैंने Tamarind Falls का मुद्दा उठाया। हम चाहते हैं कि जनवरी 2027 में पैनल्स बिठाए जाने की परियोजना शुरू हो जाए। मैंने बंदरगाह में NLG पर चलाए जा रहे अध्ययन पर भी बात की।
1: 100 MW, je pense, l'un peu de nous, ça l'expertise là, nous peut faire, nous peut demander très fait, il peut dire diamant li, octobre, novembre.
2: भारतीय विशेषज्ञता इसमें हमें प्राप्त हो रही है। अक्टूबर से नवंबर तक ये अध्ययन शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, 1,00,000 फोटोवोल्टाइक पैनल्स की मांग हमने दोहराई जो घरों पर बिठाए जाएंगे। कई स्कीम है और भारत में गुजरात में भी इसी तरह की स्कीम चलाई जा रही है। जल्द ही हमें पैनल्स हासिल हो जाएंगे ताकि ये सेक्टर जल्द ही गति पकड़ सके। मैं भारतीय मंत्री की यात्रा से बेहद संतुष्ट हूँ। हम भारतीय मदद के लिए आभारी हैं। हमारी बैठक नई दिल्ली में लगेगी।
1: Donc, moi, extrêmement content de la visite du ministre et moi, je remercie lui pour ce qu'il a fait pour nous et nous nous donne rendez-vous nous pour joindre prochainement à New Delhi pour discuter certaines choses.
0: अप्रत्येक आयोजक के लिए हज यात्रियों की न्यूनतम संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। कैबिनेट में इसका जायजा लिया गया। नए नियम आज 22 अगस्त 2026 से लागू होंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन FSC ने अपनी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। इसमें मॉरिशस में डिस्ट्रीब्यूटेक्स नामक संस्था द्वारा की जा रही क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी गतिविधियों के प्रति लोगों को आगाह किया गया है। FSC के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटेक्स वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन मौजूदगी बनाए हुए हैं और मॉरिशस में कई स्थानों से भी अपनी गतिविधियां संचालित कर रही हैं। FSC ने इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी है ताकि जांच की जा सके। आशंका है कि डिस्ट्रीब्यूटेक्स पोंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम संचालित कर सकती हैं। मॉरिशस में जल संसाधनों की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। कई जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के बावजूद CWA लोगों तक पानी की आपूर्ति बनाए रखने के प्रयास जारी रखे हुए हैं। देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नदियों सहित पानी के विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उपलब्ध जल संसाधनों को मजबूत करने और मौजूदा स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने के लिए नई परियोजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में जल ही नई घोषणाएं किए जाने की उम्मीद है। CWA के संचार अधिकारी सुनील गोपाल से बात की निर्मा नारायण रेड्डी ने, विवरण आस्था गोविंद का।
3: J'ai constaté qu'il y a deux réservoirs principaux, c'est-à-dire Marouvarquois et la Nicolière, qui ont un taux de remplissage qui est assez inquiétant. Malheureusement, même si nous gagnons un peu la pluie à travers le pays, la Nicolière, il y en a un.
2: Deux mukhya jalashay, yani Marouvarquois et la Nicolière, qui jalstar, bohot kam hai, aur sthiti chintajanak rahi hai. Barish hui hai hal mein, aur la Nicolière, ki pani ka jalstar kuch had tak badha hai.
3: C'est amélioration, mais par contre,
2: लेकिन मौवाकवा में अभी भी केवल 40% ही पानी है। अगर पानी की कटौती का कदम नहीं उठाया जाता तो ये

0: और भी कम होती। हम नदी के पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, पानी को साफ किया जाता है और उसे प्रणाली में सप्लाई किया जाता है। इस दिशा में और आगे बढ़ने का इरादा है, हम अधिक प्रेशर फिल्टरों का इस्तेमाल करेंगे।
1: दस अगस्त से पानी की बचत के लिए कावाश पर प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इस बीच कई कावाश अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। आखिर इन प्रतिबंधों के बीच वे अपना काम कैसे चला रहे हैं? सदानंद, जो कई कावाश के मालिक हैं, ने इसके लिए एक तरीका अपनाया है। उनको सुनते हैं, उनसे बात की निर्मा नारायण रेड्डी ने, विवरण आस्था गोविंद का।
2: Ici, ils m'ont fait commencer, il y a deux mois, et ils m'ont fait investir. Et ils m'ont trouvé dans une situation qui, à cause de mon travail, j'ai besoin d'acheter de l'eau.
0: यहाँ हम दो महीने से काम कर रहे हैं, इस कारोबार में निवेश किया है। अब स्थिति मुश्किल हो रही है। दो हफ्ते से जब से पानी पर पाबंदी शुरू हुई है, हमें पानी खरीदना पड़ रहा है। 10,000 रुपए लग गए हैं। हमारे पास एक रिसाइकलिंग सिस्टम भी है, हम पानी का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाए। नवंबर महीने तक ये कदम जारी रहेगा, स्थिति और भी मुश्किल और चिंताजनक हो जाएगी हमारे लिए।
2: Qui tout molle, les récupérer et nous nous investir dans un système recyclant, nous recycler de l'eau là avec des lits ongoing.
1: कावाश पर पाबंदियां लागू होने के बाद कई कर्मचारियों को शुरुआत में अपनी नौकरियां जाने का डर था। हालांकि कुछ कावाश ने वैकल्पिक उपाय खोज लिए, खरीदा हुआ पानी इस्तेमाल करने के साथ साथ पानी को जमा करने और रिसाइकल करने वाली प्रणालियों की मदद से ये कावाश अपना काम जारी रख पा रहे हैं। इससे वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी काफी हद तक राहत मिली है। इबेन स्थित एक कावाश के कर्मचारी जेहाल लाभघोष से निर्मा नारायण रेड्डी ने बात की, उनको सुनते हैं।
3: On est frappé parce que mon père connaît Kawash est venu, ça quand même tenu des hauts à cause de l'eau.
0: हमारी नौकरी को लेकर बहुत अनिश्चितता है, हमारी नौकरी खतरे में है, पानी की समस्या है, यही हमारी रोजी रोटी है। हमें आश्वासन दिया गया है कि समाधान ढूंढ लिया जाएगा, हमें कुछ राहत मिली है।
3: जानू पागा काका नु टू वन सॉल्यूशन बे याला नु को हम सेंट नु आ ले सा पे।
1: मॉरिशस सरकार खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है। इस योजना में स्थानीय स्तर पर बीज उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल नई किस्मों का विकास और शिक्षा एवं प्रशिक्षण शामिल हैं। फेरिना, जिसे नुआ 45 के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी ही एक नई बीन की किस्म है। इसे इसकी अच्छी उपज और अधिक आयरन मात्रा के लिए चुना गया है। सरकार ने इस किस्म के बीज पर 75% सब्सिडी देने की व्यवस्था की है। इसके बीज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में 130 रुपये प्रति किलो की कीमत पर उपलब्ध है। विस्तार कुणाल गुर्जी की इस रिपोर्ट में। बासे में उमेश भोला 30 पर्च जमीन पर बीन्स की खेती करते हैं। अब वे पुरानी किस्म रेड पर्ल को छोड़कर पूरी तरह फेगिना की खेती करने का इरादा रखते हैं। फेगिना के बीजों पर 75% सब्सिडी दी जा रही है और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड द्वारा इसे 130 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है। किसानों के अनुसार इसका उत्पादन लाभदायक है। बाजार में फेगिना लगभग 150 रुपये आधा किलो बेचा जा रहा है। फेगिना को इसके पोषण तत्वों के लिए भी चुना गया है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक है और अनीमिया की रोकथाम के लिए उपयोगी है। फागई फिलहाल स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई बीन्स की किस्मों पर प्रयोग और विकास कर रहा है। ये किस्में कोलंबिया से प्राप्त हुई हैं और ट्रॉपिकल कृषि केंद्र के मार्गदर्शन में इन पर काम किया जा रहा है।

0: Nous arrivons à 5 variétés prometteuses et ça va une variété là, nous pouvons évaluer ici que le bon planteur. Nous trouvons que même s'il n'y a pas trop beaucoup la pluie, il n'y a pas trop beaucoup fertilisant, mais still, il est capable de survivre. Nous n'avons pas besoin de dépendre de l'importation de bonnes semences de haut parce que le prix des semences, il peut remonter, il peut aller même.
1: बीन्स की खेती में अनुसंधान और विकास का उद्देश्य खाद्य पदार्थों के आयात पर होने वाले लगभग 35 बिलियन रुपए के वार्षिक खर्च को कम करना है। टिकाऊ जमीन प्रबंधन के लिए चीनी विशेषज्ञता की भी मदद ली जा रही है।
2: Récemment, nous visons investir dans la recherche et le développement.
1: इस वर्ष एएमबी 600 किलो बीज बेचने का इरादा रखता है। एक बीघा जमीन के लिए लगभग 100 किलो बीज की आवश्यकता होगी और इससे करीब 3 टन उत्पादन प्राप्त होने का अनुमान है। विदेशी स्तर पर यूक्रेन के मध्यवर्ती शहर क्रिव्ये रिह में एक शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। हमले में 130 लोग घायल भी हुए, जिनमें 23 बच्चे शामिल हैं। मलबे में अभी भी और लोगों के फंसे होने की आशंका है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को बिल्कुल निंदनीय और घृणित बताया। उनके अनुसार दिन में हुए इस हमले को दो चरणों में अंजाम दिया गया। दूसरे हमले में घटना स्थल पर मौजूद आपातकालीन और बचाव कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे और पूर्व उत्तर तथा सेंट्रल प्लाटू पर जहां तहां बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम में सुधार आएगा, मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर में पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर कुछ घड़ी के लिए बादल घिराएंगे और जहां तहां कुछ बारिश होने की संभावना है। अन्य इलाकों में धूप खिली रहेगी। तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। ऊंचाइयों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज सूर्योदय हुआ 6:27 पर, सूर्यास्त होगा 5:59 पर।

आज सुबह से भंजन ग्रुप के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर एक नया नाम और नया लोगो नजर आएगा। फिल इन इस नई पहचान का अनावरण कल बोपलो में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया। भंजन ग्रुप के सीईओ ने स्थानीय कंपनियों की क्षमता पर जोर दिया, जबकि प्रधानमंत्री ने ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर। मॉरिशस ने अपनी कोयले की खपत का 15% हिस्सा बायोमास से बदलने का लक्ष्य तय किया। इसे हासिल करने के लिए वो भारत की विशेषज्ञता की सहायता लेगा। भारतीय पक्ष के साथ हस्ताक्षर किए गए एक एमओयू के बाद ऊर्जा मंत्री ने दी इसकी जानकारी। मॉरिशस में जल संसाधनों की स्थिति अभी भी चिंताजनक। कई जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के बावजूद CWA लोगों तक पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रयास जारी। अब प्रत्येक आयोजक के लिए हज यात्रियों की न्यूनतम संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई। कैबिनेट में इसका जायजा। और विदेश में यूक्रेन के मध्यवर्ती शहर क्रिवी रिह में एक शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत।

0: 6:51 हो चुके हैं। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है कारियर के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: रॉयल रोड बोबासे में 87 साल की 87 year old श्री सिडने एयाबिया सिकोतन, जो सिडने से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो है आज दिन के 2:30 एलियंसन्स खुद ख्याल बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। क्रिमेशन रोड रिश्मा में 81 साल की 81 year old श्रीमती द्रौपदी बुझियावन पैदाइश नाम टैंगा जो राधा से जानी जाती थी और पंडित श्रद्धानंद बुझियावन की पत्नी थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सपहर 3:00 इनके मकान क्रिमेशन रोड रिश्मा से उठाकर दाह संस्कार के लिए क्रिमेशन रोड रिश्माओं की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:00 PM। नंबर 4 करिकाल स्ट्रीट पोर्टवी में 83 साल की 83 year old श्रीमती जय बुनेसा गोलामाली बल्कि बेगम जय बुनेसा गोलामाली पैदाइशी नाम मूली इंतकाल कर गई हैं। जनाजा जो हैं आज दिन के 12:30 इनके शौहर उस्मान गुलाम अली के मकान नंबर 4 करिकल स्ट्रीट पोर्टवी से निकाल कर पहले अल अक्सा मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 9:30 PM। गुशकुटलेन प्लेंडे पापाई में 86 साल की 86 year old श्री मोहित खेडन जो मोहित से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:00 के बेटे किशन खेडन के मकान गुशकुटलेन प्लेंडे पापाई से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्लेंडे पापाई की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:00 PM। ला शपेल आउडोट पॉइंट साबल में 75 साल की 75 year old श्री केशवराव पडू जो कृष्णा गौसोताये से जाने जाते थे और पहले नंबर 20 एवेन्यू विल्सन रोस बेल रोज रहते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4:00 एलियंसन्स ला शपेल आउडोट पॉइंट साबल से उठाकर दाह संस्कार के लिए कॉलोवियो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4:00 PM। होटल नंबर 1 एवेन्यू पाल्मा काठोबोन में 76 साल की 76 year old श्रीमती रेवती गनावरी पैदाइशी नाम नुजादिक जो आंटी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 इनकी बेटी विदाउटी पमचन के मकान होता नंबर 1 एवेन्यू पाल्मा काठोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। मुस्की गली शमेगनिये में 77 साल की 77 year old श्रीमती सुभद्रा भवन पैदाइश नाम हीरा जो सांता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:00 इनके मकान मुस्के गली शमेघनिये से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्रणमायों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:00। बैठका गली यूनियन पार्क में 88 साल की 88 year old श्री मोहर लाल सिंह राम खिलावन जो महेश से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:00 इनके बेटे कैलाश राम केलावन के मकान बैठका गली यूनियन पार्क से उठाकर दाह संस्कार के लिए माघजानी रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:00 AM।

Royal font du sac maître Ter Salki, 73-year-old, Sri Lakshmi Prasad Hira, Sri Lakshmi Prasad Hira, जो अंगुली से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे अमित हीरा के मकान होटवायाल फौजीसाक से उठाकर दाह संस्कार के लिए फौजीसाक की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर 185 रोड पॉम्पलेमूस ला क्रोजे वाले दे प्रेत पोटवी में 60 साल के 60-year-old श्री दुर्गा लक्ष्मण, श्री दुर्गा लक्ष्मण जो पाको से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके भाई विक्रम लक्ष्मण के मकान नंबर 185 पॉम्प्लेमूस ला क्रोजे वाले दे प्रेत पोटवी से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले दे प्रेत की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 2 PM। डालिया लेन बेलव्यू मोरेल में 66 साल की 66-year-old श्री सत्यदेव सिदोनी, श्री सत्यदेव सिदोनी जो सत्यदेव मासों से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे श्री रवि अखिलेश सिदोनी के मकान डालिया लेन बेलव्यू मोरेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए लामोगी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। Cremation today at 1 PM. Montfleury, circonstance Saint-Pierre, mais 82 sal ki, 82-year-old, Shrimati Nilama Niladu, Shrimati Nilama Niladu, paidaish ki naam Dhalapa, jo Celia se jani jati thi, ki mrityu ho gayi hai. Shama kare, arthi jo hai, aaj din ke 10 baje inke bete, नीलाडू कृष्णा के मकान वक्स हॉल लेन मोफ्लेरी सियाकॉन्स्टेंस सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकॉन्स्टेंस की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। बाल्मीकि रोड बुआमांग प्लैन डे पपाई में 30 साल के 30-year-old श्री थंडरशेखर रंगलोल, श्री थंडरशेखर रंगलोल जो किलान से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9 बजे इनके पिता श्री देवानंद रंगलोल के मकान बाल्मीकि गली बुआमांग प्लैन डे पपाई से उठाकर दाह संस्कार के लिए पितों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। नंबर 224 ए बेनोडे सेंट पियर वाली दी प्रेत में 60 साल के 60-year-old श्री चंद्रनाथ बुलका, श्री चंद्रनाथ बुलका जो राजेश से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके मकान नंबर 224 ए बेनोडे डे सेंट पियर वाली दे प्रेत से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रोट रॉयल आमोरी में 21 साल के 21-year-old श्री निमालेन मुनिसोमी, श्री निमालेन मुनिसोमी जो नेलविन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके पिता विशालन मुनिसोमी के मकान रोट रॉयल आमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आमोरी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। चंबितलेन मैडम लुलू रोजवेल में 49 साल की 49-year-old श्रीमती केसुंती श्याम, श्रीमती केसुंती श्याम पैदाइशी नाम कुंती राम जो आरती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके पति श्री संजय श्याम के मकान चंबित लेन मैडम लुलू रोजबेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मोफेचिल न्यू ग्रोव में 77 साल के 77-year-old श्री तिरुभुवन टैंक

गौ श्री त्रिभुवन टै गौ जो सुखराज से जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी पत्नी श्रीमती लीलावती किरण टै गौ के मकान मोफेचिल न्यूखो से उठाकर दाह संस्कार के लिए मौडालबेया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे हुए इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: शनिवार 22 अगस्त श्री श्री कृष्णा बलराम मंदिर, नवजीवन काली मंदिर, शिव मंदिर, प्रिहाट वैष्णव सभा, रामेश्वर नाथ मंदिर और प्लेंदेहोश और रिवियर जुहांपा की अन्य धार्मिक सभाओं के साथ मिलकर यात्रा का आयोजन कर रहा है, जो नवजीवन काली मंदिर से जो प्लेंदेहोश में है निकलकर रामेश्वर नाथ मंदिर रिवियर जुहांपा तक जाएगी। समय रहेगा 2:30 बजे। शनिवार 22 अगस्त को मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वधान में आर्य रविवंश सभा जो रिविया जगहों में है श्रावणी यज्ञ का आयोजन कर रहा है, जो शाम के 3 बजे होगी। शनिवार 22 अगस्त सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक सिंधमा काली सभा जो टैगोर रोड लालमाटी में है 108 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन कर रहा है। श्रावण मास के संदर्भ में शनिवार 22 अगस्त को मॉरिशस आर्य ऋग्वेद प्रजानी सभा के तत्वाधान में विवेकानंद सभा जो तोंबो बे शाखा नंबर 2 में है शाम के 4 बजे यज्ञ और प्रवचन का आयोजन कर रहा है। जगह श्री राम लाखनलाल लेन तोंबो बे रोड त्याहोश। शनिवार 22 अगस्त को मिडलैंड्स के श्री जगदीश्वरनाथ शिवाला द्वारा श्री नरसिम्हा देव तथा नवग्रह की मूर्ति स्थापना की जा रही है, इस संदर्भ में 2:30 बजे एक जुलूस निकाला जाएगा।
2: इस समय सुबह के 7:04:40 हुए हैं। सुनने वालों को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। मॉरिशस की जय हो, किमलेकू देपिना की विजयी हो। मॉरिशन साइकिलिंग फिर से विश्व स्तर पर, इस बार टू दी फ्रांस से निकलकर टू ऑफ ब्रिटेन में कल शाम किमलेकू ने तीसरा चरण जीतकर मन गदगद कर दिया, दिल खुश कर दिया, अखा मॉरिशस को फिर मिला दिया।
3: A couple of hundred meters to go then for Kim LeCour, and she is pushing as hard as she possibly can in and out the saddle. We believe there's only around 100 meters to go here as she is coming up to the line to take the stage victory. What a finish for Kim LeCour. She has given absolutely everything that she has got on this climb. She knows that every single second counts, and this has been an exceptional performance from the Mauritian champion. Kim LeCour, take a bow. You are the stage winner of stage 3 of the Lloyd's Tour of Britain Women. She started the day in third place on general classification, 14 seconds behind Leanna Lippert, taking second as we've got a real fight for third. It looks like it's going to be the rider from Liv Alula-Jaco.
2: किमलेकू देपिना को हार्दिक बधाई। उसने 104.4 किलोमीटर का ये रास्ता 2:46:10 में अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी जर्मन साइक्लिस्ट लियान लाइपर्ट से 13 सेकंड आगे पूरा किया, और इस प्रकार हमारा मॉरिशन चैंपियन साथ ही इस टू ऑफ ब्रिटेन का ग्रीन जर्सी पहनकर लीडर भी बन गई है। एक ऐसी लीडर जो नीडर है, दुनिया की बेस्ट स्प्रिंटर और इस प्रतियोगिता के प्रथम 2 चरण जीतने वाली नेदरलैंड्स की लोरेना वाइब्स फिलहाल किमलेकू से 35 सेकंड दूर है। अब आज पूर्वांतिम या पेनल्टीमेट 4th चरण पहाड़ी इलाके से होकर 138.3 किलोमीटर रेस है, जिसे जीतने के लिए दुनिया के बेहतरीन महिला साइक्लिस्ट जी जान लगा देंगे। इसलिए कम ऑन किम, कम ऑन मॉरिशस। ब्रिटेन में ही रहते हैं लेकिन इस बार

इंग्लिश फुटबॉल की बात करें, लगभग 3 महीनों की छुट्टी के बाद द एफए इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 कल रात बड़े ही धमाकेदार तरीके से आरंभ हुआ। डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल ने अपना टाइटल खूब अच्छे तरीके से डिफेंड किया, उसकी रक्षा की, कोवेंट्री सिटी को 3-0 से हराकर, और एकदम आसान जीत कह सकते हैं। काई हैवर्ट्स, भुकायो साका और मार्टिन ओडिगार्ड का एक एक गोल, इस प्रकार कह सकते हैं कि आर्सेनल की भूख जारी है, एकदम भूखा है एक और टाइटल हासिल करने के लिए। एक कंफर्टेबल जीत कह सकते हैं, स्क्वाड हरा भरा है, हालांकि इसमें कई की खिलाड़ियों को बेंच पर ही बिठाया गया, ब्रूनो गिमारेस, विक्टर ग्योकरेस ये सब नहीं खेल पाए, फिर भी आर्सेनल एकदम धुआंधार तरीके से ये मैच जीत गया। नई टीम कोवेंट्री सिटी 25 साल बाद प्रीमियर लीग में वापस आया अपने पुराने कोच, अपने कोच फ्रैंक लैम्पर्ट के साथ, और जिसने कहा कि मैच के बाद हार्डवर्क अभी करना बाकी है, लेकिन कोवेंट्री का ये पहला मैच था और सामने था चैंपियन आर्सेनल, जिसने कल जीत हासिल की 3-0 से। सो आज और कल प्रीमियर लीग का ये पहला सप्ताह जारी रखा जाएगा। आज शाम 3:30 बजे अर्ली किक ऑफ, पहला मैच, आज का पहला मैच 3:30 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लाल भूत एवे जाएंगे हल सिटी के मैदान पे 3:30 बजे। द रेड डेविल्स अपना ये सीजन हल सिटी का सामना करते हुए शुरू कर रहे हैं, वे अभी भी अपने पहले मैच में एक न्यूली प्रमोटेड टीम के खिलाफ हारे नहीं है, वैसे भी दिलवाले कभी हारते नहीं। आज योगी चेलमांस और सैंटोस आदि आज खेल पाएंगे नई टीम, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बालेबा को भी साइन कर लिया, इस बारे में सुनते रहिए। 6:00 बजे आज एवर्टन का मुकाबला क्रिस्टल पैलेस से है, इप्सविच टाउन का मुकाबला सन्डरलैंड से, नॉटिंगहम फॉरेस्ट वर्सेस लीड्स यूनाइटेड, और आज का आखिरी मुकाबला 8:30 बजे ब्रेंटफोर्ड वर्सेस टोटेनहम हॉटस्पर। कल रविवार की 5:00 बजे ब्राइटन का मुकाबला एस्टन विला से, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बोर्नमुथ कल ये मैच खेला जाएगा कल 5:00 बजे। एंजो, कोच एंजो मारेस्का पर दबाव है, उन्हें जांचा जाएगा, तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा और उसकी तुलना भी की जाएगी, कंपेयर किया जाएगा। सो चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला बोर्नमुथ से कल 5:00 बजे, और कल रात 7:30 बजे 7:30 PM न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। एंडोनी इराउला के लाल सिपाही अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, पिछली 9 मुलाकातों में हालांकि लिवरपूल सेंट जेम्स पार्क में कभी नहीं हारा है, और इस बीच ब्रैडली बाकुला के इंतजार में विंगर यानकुबा मिंटे के लिए ब्राइटन ने लिवरपूल का एक दूसरा इम्प्रूव्ड 60 मिलियन पाउंड का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, किंतु बातचीत जारी है। पाकिस्तान जर्मन का इब्राहिम एम्बाए भी लिवरपूल के रडार में है, किंतु ब्रैडली बाकुला अभी तक प्रमुख टारगेट बना हुआ है। जेरेमी जाके, विक्टर मुनोज और रोनाल्ड अरोहो आ गए हैं, तो मोहम्मद सलाह, एंडी रॉबर्टसन, इब्राहिम अकुनाते और आज कल ही कर्टिस जोन भी 35 मिलियन यूरो में चला गया इंटर मिलान में, यानी कि एक युग बीत गया, एक नया युग आरंभ होने जा रहा है लिवरपूल में। और इस बीच ट्रांसफर बाजार में ब्राइटन का 22 वर्षीय मिडफील्डर कार्लोस बालेबा मैनचेस्टर यूनाइटेड का हो गया, कल ही 70 मिलियन पाउंड में ये सौदा तय हो पाया, यानी द रेड डेविल्स का मिडफील्ड अब पूरा हो गया योगी चेलमांस और सांतोस को हासिल करने के बाद। आर्सेनल ने इधर एस्टन विला के डिफेंडर एजरी कोंजा को 55 मिलियन पाउंड में साइन किया, द गनर्स की भूख जारी है, वे हर हालत में फिर से ये ट्रॉफी हासिल करना चाहते हैं, खासतौर पे जब मैनचेस्टर सिटी के साथ अब कोई पेप गार्डियोला नहीं है। स्पेन की ला लीगा में कल रियल बेटिस और रियल सोसिएदाद के बीच जो मैच खेला गया उसमें बेटिस ने सोसिएदाद को 1-0 से हराया। आज रात रियल मैड्रिड अपना मैच खेलने वाली है स्पानियोल के मैदान पे, फिर कल रविवार की 11:00 एल्चे वर्सेस एफसी बार्सिलोना। फ्रांस का लीग भी कल आरंभ हुआ,
ओलंपिक दे मासेई ने फोड़ ही डाला। स्ट्रासबुर्ग को 4-0 से पछाड़ा। एट गुरी का एक डबल अब्दाला और होइबर्ग के बाकी गोल। मासेई 4 स्ट्रासबुर्ग 0 बाकी

0: सभी मैच इस सप्ताहांत खेले जाएंगे। इटली का सेरिया भी आज से ही आरंभ हो रहा है। चैंपियन टीम इंटर मिलान खेलेगी मोंजा के विरुद्ध। और मॉरिशस में आईसीई क्रिकेट में आईसीई सीजन 4 का चौथा सप्ताह आज दिन के 1 बजे आरंभ हो रहा है। मापू एसएसओ क्रिकेट ग्राउंड में कैंपस अब्रोड लायंस का मुकाबला आज दिन के 1 बजे एपीपी लेपर्ड से है। फिर कल सुबह 9 बजे एएमजी पैंथर्स का मुकाबला कंटिनेंटल चीता से, और कल ही दिन के 1 बजे कैंपस अब्रोड लायंस खेलेंगे वन हेल्थ जागवर्स के विरुद्ध। क्षेत्रीय फुटबॉल में पिची गाफवई में कल एक वीकेंड फुटबॉल उत्सव मनाया जा रहा है। यंग टाइगर्स वर्सेस टीबीएस एफसी कल शाम 3 बजे और 4:30 बजे पिची गाफवई वेटरन का मुकाबला सैटरडे रोवर्स से। रोशनवा दुदलाबीमा सुवेनिया कप कल शाम 3:30 बजे स्काईलॉग एफसी वर्सेस सिलेक्शन कोटेज। तो गाड़ी चल पड़ी है इंग्लिश प्रीमियर लीग की, और इधर किमले कुक का पहिया भी चल पड़ा है। सबको हार्दिक बधाई। सुनते रहिए और आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बा नू थावाई नू लाविनिया। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आसिया इंजीनियरिंग एंड इंटीरियर डेको लिमिटेड जुन वालोंचिना फिनिक्स में पावल जाला 4 बरिस के लिक्स पेयॉन्स होला कैबिनेट मेकर के तलाश में बा। जस्ती जानकारी खातिन 5775-5933 पर कॉल करिए जा। अपन एप्लीकेशन mimranbokus@gmail.com पर भेजिया जा। द क्यूबिकल लॉट रॉयल रोड फिनिक्स के बूलवर्थ मॉरिशस लिमिटेड कास्कावेल के आउटलेट खातिर शॉप असिस्टेंट के तलाश करत बा। जेकर SC बा जस्ती जानकारी खातिर कॉल करिए 404-6090 पर, और नहीं तर 5798-9536 पर। अंतिम तारीख बा 31 अगस्त क्लोवेल फिनिक्स और वालोंचिना में हाउसमेड और करियर के जरूरत बा। टेलीफोने करिए 6964031 और नहीं तो 6976458 पर। बेलवी मोगेल में एगो माली या गार्डनर के जरूरत बा 4126925 पर कॉल करिया। कुंगुमा में प्राइवेट कार चालक माली के जरूरत बा, कॉल करिया 2614524 या 2701122 पर। गुडलैंड्स में हाउसमेड के जरूरत बा, जस्ती जानकारी खातिर टेलीफोने करिया 2825917 या 2825918 पर कॉल करिया। मैकेनिक के सेक्टर में स्कूल लेन पिचिगाफ्टे के सुदेश टायर सेंटर लिमिटेड 2 बरिस के तजुर्बा होला टायर मैन और व्हील अलाइनमेंट टेक्नीशियन के खोज करत बा। जस्ती जानकारी खातिर 5787124 पर कॉल करिया। अंतिम तारीख है 1 सितंबर 2026। जॉब कॉन्ट्रैक्टर के सेक्टर में प्लॉट नंबर 6 बेल सूस पॉम्पलिमूस के AM इलेक्ट्रिकल एंड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड एगो इलेक्ट्रिशियन के खोज करत बा। जस्ती जानकारी खातिर कॉल करिए 5751-0599 पर। डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ जनरल मौशोजीज के सेक्टिया में मामजल जानी गुडलैंड्स के सुपर प्रोफाइल लिमिटेड 2 बरिस के अनुभव होला लॉरी ड्राइवर और हेल्पर के खोज करत बा। जस्ती जानकारी खातिर 5255-0391 पर कॉल करिया। अंतिम तारीख है 6 सितंबर 2026। मैकेनिक के सिक्तिया में रिजर्वोयर रोड गुडलैंड्स के इको डिजाइन कंसल्टिंग लिमिटेड एगो वर्कशॉप एडमिन के खोज में बा। जेकर HSC बा और 3 बरिस के लेक्सपेयंस बा सकी

0: कॉल करें 5735-7750 पर। अंतिम तारीख है 30 अगस्त 2026। जॉब कॉन्ट्रैक्टर के सेक्टिया में महादेव रोड मामजल रानी गुडलैंड्स के BCM एक्सकावेशन वर्क्स लिमिटेड एगो एडमिन क्लर्क के खोज करता जेकर HSC बा सकी टेलीफोन करे 580-32-986 पर। न्यू रोड रोशनुआ के गाराज पुल लिमिटेड 3 बरिस के तजुर्बा के साथ होला एगो कार पेंटर के और संगे पैनल बीटर के तलाश करता। जस्ती जानकारी खातिर टेलीफोने करिया 5757-2905 पर और सकी हौजा सीधा जाए के रॉयल रोड नुवेल फ्रांस के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से करल एगो सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन के खोज करत बा। जस्ती जानकारी खातिर टेलीफोने करिया 5291-1881 पर। अंतिम तारीख है 31 अगस्त 2026। प्लेजांस शॉपिंग रोजबेल के पानाहोची मॉरिशस से प्राप्त करल कैंडिडेट लोग के वेटर कैशियर और किचन हेल्पर के नौकरी खातिर आमंत्रित करल बा। जस्ती जानकारी खातिर टेलीफोने करिया 4549603 और नहीं तो 5421-9327 पर और नहीं तो खुद सके हौजा पर जाकर अपना अर्जी देवे के। कंस्ट्रक्शन की सेक्टिया में हाईवेक पार्टनर्स लिमिटेड जुन लॉट 22A साइबर सिटी हाईवेक हाउस में पावल जाला एगो मासों खो जाता जेकर 2 बरी स्किल एक्सपीरियंस बा। साथ में एगो इलेक्ट्रीशियन एगो कॉर्पेंटर एगो वेल्डर और एगो कुक सबके चाहिला 2 बरी स्किल एक्सपीरियंस हो के। एप्लीकेशन करे खातिर फोन करिए 4648600 पर। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 24 अगस्त 2026। जॉब कॉन्ट्रैक्टर के सेक्टिया में पॉम्प्लेमुसेस मोटर व्हीकल्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जुन रॉयल रोड सीजीएम मिल कालबास मौसलमा रिपाई में पावल जाला एगो सोफिया खो जाता 12 व्हील्स लॉरी 35 टन्स खातिर जेकर 4 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। साथ में ट्रक मैकेनिक जिनकर 4 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एगो ट्रक एक्सकेवेटर ऑपरेटर जेकर 4 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एगो GCB एंड बैकहो लोडर ऑपरेटर जेकर 4 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और एगो वेल्डर जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर फोन करिए 2439437 और नहीं तो 5729076 पर। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 20 अगस्त 2026। तो ई रहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस तथा MBC के मिलल जुलल सहयोग से नू थावाई नू लाविनिय।
1: रत्ना को धन्यवाद देते हैं नुताबाई नुलावेनिया सेगमेंट के लिए। सुबह के 7 बजे के केस में न छोड़े अभी जी सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ। कोची मिलिटेयर, जी हाँ कोची मिलिटेयर फीलिंग स्टेशन इंजन वायर रोड कोची मिलिटेयर रेजिडेंस रावातो बनवेन रोड सेंट लियोन रोड और बिचुअल रोड के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 23 अगस्त को सुबह के 11:30 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी और पिचित रिवियर रू ला जूलियट मार्क नामारा ओल्ड ट्राफोर्ड लाफूश और रूट रॉयल के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 22 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और सेंट क्रॉ रूट दे पॉम्प्लेमूस पोल्टोरो के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 22 अगस्त को सुबह के 6:30 बजे से शाम के सुबह के फिर से सुन लीजिए अभिव्यक्ति।

0: Sainte-Croix, route des pamplemousses, sur Paul Toroke Nivasionko, Soutit Kiajata, Kiach Niva Bais and Escus, Bakisariat Bedise, Din Cake Bedike Bizikapulti, Mekatoti, Laija Egi. Or Royal Road Soutis, Royal Road Mafkidje, Fils et Sunizi, Havigeti, The Veil. Royal Road, Sotis Road, or Bamboo Road, Kenivation Co, Sutit Kiajata, Kiachinivar Baisagasco, Bakisari, Arbidisi, Dupair Barki, Hibajigi Beach, Bizikapurti, Mekatoti, Laijaigi, or Lalmati, Lalmati, Nehru Road, Branch Road, Jehodi Road, Mahatma Gandhi Road, or Basde Bisundia Road, Police Station Kipas, Jitne Lokreti, आपको बता देते हैं कि कल रविवार 23 अगस्त को सुबह के 8:15 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. और वालिता रोड, रॉयल शिवाला रोड, मोरी रोड, सवाना रोड, मादुराई रोड, जमाल रोड और आसपास में जो छोटी छोटी गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 22 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर बाद के 2:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. फॉरेस्ट साइड, जी हाँ, फॉरेस्ट साइड देवयन मुन्ये लुमिना और आसपास में जो छोटी छोटी गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 23 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर बाद के 2:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. Chebel, résidence Chebel, Mavkidi, fils et Sunidi, objectif Chebel, résidence Chebec, centre municipal, Sagaïton Duval, résidence Lotus, MWMA Chebec, Oraspas Medjugaliahe, Mohanke Logunko Sujit Kiajatahe, Kiachinva Baïs Agusko, Subakisari Adbese, Shamkitin Bajike Beach, Bizdi Kapurtime. कटौती लाई जाएगी और जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी. सेबी इन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है. तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ.
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस.

0: मंदिर में माथा टेकने से या गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलता है। अगर आपने किसी को रुलाया है तो एक दिन आपको भी रोना पड़ेगा। इसी को कर्म कहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सांसद के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, देवी और सज्जनों, आप सभी को और जी प्रताप सिंह का सुप्रेम नमस्कार। और आप हमें सुन रहे हैं MBC रेडियो मॉरिशस पर, AM मोड पर। जी हाँ, रेडियो मॉरिशस MBC का म्यूजिकल चैनल। साथ में आप हमें देख रहे हैं रेडियो मॉरिशस के TikTok पेज पर भी। सभी का हम स्वागत करते हैं, सुस्वागतम, वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मॉरिशस। ये है आपका मस्त मॉर्निंग शो, सुबह का नजराना। अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक 2 घंटे का म्यूजिकल प्रोग्राम है। हम करेंगे मीठी मीठी बातें, प्यारे प्यारे गीत, दिलचस्प म्यूज़िक और बहुत कुछ हम इस प्रोग्राम में लाए हैं केवल आप लोगों के लिए। सो एक नया दिन है आज। जी हाँ, आज है शनिवार, शनिवार 22 अगस्त साल 2026। अगर आज आपका जन्मदिन है तो आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारा आशीर्वाद है। आशा करते हैं कि जन्मदिवस, ये जन्मदिन आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार और खुशियाँ लाए। तो चलिए सुबह का नजराना प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज के चिंतन के साथ।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं होता है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती।

जीवन में कभी ये मत सोचिए कि कौन, कब, कैसे, कहाँ बदल गया। केवल इतना देखिए कि वह आपको क्या सिखा गया। यही जीवन का ज्ञान है। दुख केवल दर्द नहीं देता है, ज्ञान भी देता है।

इंसानियत है सबसे पहला धर्म है इंसान का, कि आज का इंसान अपना धर्म निभा रहा है और अगर अपना धर्म निभा रहे हैं तो अच्छी बात है, पर आज का इंसान कभी कभी शैतान का रूप भी ले लेता है। समझने वाली बात है कि भगवान ने इंसान को संसार में भेजा है कुछ करने के लिए, कुछ अच्छे कर्म करने के लिए। सो इंसान को इंसान ही बनकर रहना चाहिए, ना कि शैतान, है कि नहीं। सुबह के 7:35 हो रहे हैं, जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं सभी का स्वागत करते हैं। मॉर्निंग टाइम जस्ट चिल एंड रिलैक्स। जी हाँ, शनिवार का दिन है, यू आर ऑन वीकेंड मोड, क्या बात है। अभी अगस्त का महीना भी समाप्त होने को आया, और एक सप्ताह और अगस्त का महीना भी समाप्त हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सैटरडे मॉर्निंग है, सो देर से आप जागेंगे क्योंकि सप्ताह भर आपने काम किया। पर कुछ लोग शनिवार को भी सुबह जल्दी जागते हैं और बहुत से लोग समय काम पे है, ड्यूटी पे है। बॉन्को आज कहते हैं आप लोगों को, मेहनत लगन से काम कीजिएगा और हमारा साथ देते रहिए रेडियो मॉर्शल्स की लहरों पे। और दोस्तों, कहते हैं कि एक बहुत ही प्यारी सी कहावत है, घर उसके जाओ जो प्रेम से बुलाए, घर उसके जाओ जो प्रेम से बुलाए, जहाँ प्रेम ना हो वहाँ जाओ मत, और जो पचे ना वो खाओ मत। सो बहुत ही प्यारी सी कहावत है ये, और सच्ची बात है कि आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ आपका स्वागत होता है, जहाँ आपका मान सम्मान होता है, है कि नहीं। तो चलिए इसी में हम सुनते हैं एक प्यारा सा गाना, फिल्म का नाम है प्यार के दो पल। जी हाँ, और बहुत ही प्यारा सा गाना है, टाइटल ट्रैक, शीर्षक गीत बेबी मुन्नी और शबीर कुमार की आवाज़ों में।

बेशक प्यार के दो पल कहीं खो ना जाएं, और इस प्यार के दो पल की तलाश में सभी लोग रहते हैं, और जहां प्यार मिलता है इंसान वहीं जाता है। अगर ज़िंदगी में हम दो मीठे बोल किसे कह दे तो हमारा क्या जाता है दोस्तों। सो जब भी आप कहीं जा रहे हो तो किसी ने आपको राम सलाम किया है तो आप भी राम सलाम कीजिएगा। जैसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहने से किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती है, प्यार आ सकता है, बाहर आ सकती है कि नहीं। सो ऑलवेज बी गुड, बी स्वीट, बी लविंग, बी काइंड, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और इंसान के नाते वी हैव टू हेल्प ईच अदर। जी हाँ, जहाँ तक हो सके इंसान होने के नाते हर एक इंसान को दूसरे इंसान की सहायता, उसकी मदद करनी चाहिए। इसी को इंसानियत कहते हैं, है कि नहीं। और ऐसे में हो जाए एक और एक प्यारा सा गाना, फिल्म है सोनी महिवाल, चलिए एक साथ सुनते हैं गाना।

इस गीत के साथ ही सुबह का नजाना पॉटवान यहीं पर समाप्त होता है। कुछ ही क्षण में आप सुनेंगे हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से ज्ञान सर्वर कार्यक्रम, और ये लिए हमें निकल जाएगा सुबह के 8 बजे के समाचारों की ओर। समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी इसी चैनल पर। सुनते रहिए प्यार से MBC रेडियो मॉरिशस।

0: श्रोताओं, हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा संचालित ज्ञान सरोवर के साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति का भार मैं डॉक्टर तनुजा पदारत बिहारी संभाल रही हूँ और इस सप्ताह हमारा सौभाग्य है कि हिंदी स्पीकिंग यूनियन की अध्यक्षा डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी से कुछ बातचीत हो पाएगी। डॉक्टर अंजलि इस समय महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग की वरिष्ठ व्याख्याता के पद पर है। पिछले साल से वे हिंदी स्पीकिंग यूनियन की अध्यक्षा नियुक्त हुई। डॉक्टर अंजलि, इस महीने हिंदी स्पीकिंग यूनियन की अध्यक्षा के रूप में आपके कार्यकाल को पूरा एक साल हो जाएगा। आपको बधाई देते हुए हम कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद तनुजा जी, और सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: डॉक्टर अंजलि, हिंदी स्पीकिंग यूनियन की अध्यक्षता संभालते हुए लगभग एक साल बीत गया है। बड़े सक्रिय रूप से यह अध्यक्षता आप संभालती आ रही हैं। इस एक वर्ष की यात्रा को आप किस रूप में देखती हैं? आपके लिए यह अनुभव कैसा रहा? हमारे साथ अपने अनुभव और अपनी बातें साझा कीजिए।
1: जी तनुजा जी, वास्तव में यह एक वर्ष मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, चुनौतीपूर्ण और सीखने वाला अनुभव रहा है।
0: जी,
1: हिंदी स्पीकिंग यूनियन की अध्यक्षा के रूप में जिम्मेदारी निभाना या संभालना मेरे लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति की सेवा करने का एक अवसर है। और इसके अंतर्गत मेरा यही प्रयास रहा कि हिंदी स्पीकिंग यूनियन की गतिविधियां केवल पारंपरिक कार्यक्रमों तक सीमित ना रहे, बल्कि विद्यार्थियों, युवाओं, शिक्षकों, साहित्यकारों, कलाकारों और यहाँ तक कि आम जनता को भी हिंदी से जोड़ा जाए। जब मैं पीछे मुड़कर देखती

0: हूँ यह जो एक साल बीता, तो संतोष होता है कि हमने वर्ष भर निरंतर गतिविधियों के माध्यम से हिंदी को शिक्षा, साहित्य, रंगमंच और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जोड़ने का प्रयास किया।
1: जी धन्यवाद अंजलि जी, आपने मुझे लगता है थोड़ा सा सार ही दे दिया है कि पिछले साल आपने क्या क्या किया।
0: जी
1: तो थोड़ा सा हम शायद विस्तार से पूछना चाहेंगे कि संगठन ने इस एक वर्ष के दौरान किन किन गतिविधियों का आयोजन किया। कुछ हमारे श्रोता जानते होंगे लेकिन आप जरा विस्तार से बताएंगे तो शायद याद आएगा कि कौन कौन से कार्यक्रम हुए हैं।
0: जी जी ज़रूर। वैसे इस एक वर्ष में हमने विभिन्न आयु वर्गों और रुचियों को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों का आयोजन किया। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक छात्रों के लिए कहानी कथन प्रतियोगिता, माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए हमने भाषण प्रतियोगिता रखी थी
1: जी।
0: और साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए आप्रवासी घाट में कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ था। पिछले दिसंबर को पाम्पलेमूसेस का जो बाग है वहाँ पर बैठकाओं के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए हमने एक हिंदी का उत्सव रखा था जहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था
1: जी हाँ।
0: साथ में समय के साथ साथ हमने विभिन्न संस्थाओं और सभाओं में जो लोग हिंदी में कार्य संचालन करते हैं, मतलब कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, विशेषकर उनके लिए हिंदी में मास्टर ऑफ सेरेमनी स्किल्स, मन संचालन कौशल की कार्यशाला रखी, जिसमें खुशी है सभी को बताते हुए कि लगभग 220 लोगों ने भाग लिया और इसका लाभ उठाया। मुझे खुशी है तनुजा जी आपने भी अपना कौशल बांटा हमारे
1: जी,
0: साथ।
1: जी धन्यवाद।
0: और साथ ही में ऐसे अन्य गतिविधियों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने आम जनता के लिए एक कविता प्रतियोगिता रखी थी जो इस देश के या इस वर्ष की थीम के साथ मेल खाती थी
1: जी हाँ।
0: जो कि है इन पीस जस्टिस एंड लिबर्टी, मतलब हिंदी में कविताएं हाँ। लोगों ने लिखी। और पिछले ही महीने हमने प्रेमचंद दिवस का बड़े जोश के साथ आयोजन किया जहां उनकी एक कहानी बूढ़ी काकी का मंचन भी हुआ। तो ऐसे करके गतिविधियां जारी है, मतलब काफ़ी गतिविधियों का आयोजन हुआ ताकि अधिक से अधिक लोग हिंदी के साथ जुड़ सकें।
1: अंजलि जी जब आप ये पूरी सूची बता रहे हैं हमें लग रहा है कि बहुत कम समय था और इतने कम समय में आपने एक गतिविधियों की पूरी एक कतार बिछा दी है हमारे सामने। तो एक और बात मैं जानना चाहूँगी कि इन गतिविधियों के प्रति आपको लोगों से या फिर विशेषकर विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी से कैसी प्रतिक्रिया मिली?
0: जी मैं तो कहूँगी कि जो फीडबैक है, जो प्रतिक्रिया आई वह बड़ी ही उत्साहवर्धक रही, क्योंकि विशेष रूप से विद्यार्थी और जो हमारे युवा हैं उनकी भागीदारी हर एक प्रतियोगिता, हर एक गतिविधि में रही। और जब हम देखते हैं कि विद्यार्थी मंच पर आकर हिंदी में आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं या कहानी सुनाते हैं या कोई कविता प्रस्तुत करते हैं और इन साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा प्रयास एक तरह से सार्थक हुआ। और जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रेमचंद जो जयंती मनाई गई, तो बूढ़ी काकी के मंचन में भी दर्शकों को बड़ा अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला, हॉल खचाखच भरा हुआ था और काफ़ी युवाओं ने भी कलाकार के रूप में उस नाटक में भाग लिया था
1: जी। इसके बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँगी। मैंने सुना है कि केवल एक मंचन से आप सभी लोग संतुष्ट नहीं हुए थे, उसके बारे में बताइए ऐसा क्या हुआ?
0: जी वैसे माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री भी उस दिन उपस्थित थे, तो उन्होंने देखा कि कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हुआ लेकिन काफ़ी लोग खड़े थे क्योंकि हॉल खचाखच भरा था और कुछ लोगों को लौटना भी पड़ा।
1: अच्छा।
0: तब एक तरह से एक निवेदन हुआ कि जब लोगों में इतनी जिज्ञासा है कि वे और देखना चाहते हैं, तो मंत्रालय के अनुरोध पर हमने एक दूसरा शो रखा जहां पर दूसरी बार के लिए उसी कहानी का एक तरह से मंचन हुआ पुनः हाँ। और अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए उस कार्यक्रम
1: तो से। यही बात हुई ना कि वंस मोर वाली प्रतिक्रिया थी।
0: जी हाँ।
1: जी जी अच्छा अंजलि जी मैं जानना चाहूंगी कि आप इतने व्यापक स्तर पर इतनी सारी गतिविधियों का आयोजन कर रही हैं, तो इसके दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
0: जी देखिए, जब भी कोई कार्य होता है तो जो चुनौतियां होती हैं वो तो हर रचनात्मक कार्य का हिस्सा होती हैं
1: जी हाँ।
0: और लगातार नए कार्यक्रमों की योजना बनाना, प्रतिभागियों को आपके अपने साथ जोड़ना, विभिन्न संस्थाओं के साथ समन्वय करना और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्सेज या जो भी उपलब्ध संसाधन हैं उसके भीतर ही रहकर कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करना, यह अपने आप में एक चुनौती है
1: जी जरूर।
0: और जानते हैं कई बार जब आप छात्रों से विषय

0: इश्क कर काम करते हैं तो कभी हमें सोचना पड़ता है, बहुत पहले से सोचना पड़ता है कि ऐसे समय में हम गतिविधि नहीं रख सकते जहां पर पढ़ाई चल रही है या हाँ। स्कूल में उनकी परीक्षाएं चल रही है हाँ। ताकि एक्स्ट्रा करिकुलर तो अच्छा है कि आप अन्य गतिविधियों में भाग लें, आपका सर्वांगीण विकास हो, लेकिन एक तरह से क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर योजना सही हो, अच्छी प्लानिंग हो, प्रबंधन ठीक से सब चले, तो इन चुनौतियों को पार किया जा सकता है।
1: जी जी, धन्यवाद अंजलि जी। एक और चीज़ हमने देखी कि आप लगभग हर 2 महीने के अंतराल में किसी न किसी गतिविधि को लेकर सामने आ रही हैं, तो इस बार कोई ऐसी योजना है, क्या आप कोई गतिविधि तैयार कर रही हैं हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से?
0: जी जी, ज़रूर। तनुजा जी, मैं छोटी सी बात एक जोड़ना चाहूँगी, जो प्रश्न आपने पहले पूछा चुनौतियों को लेकर। मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं अपने श्रोताओं को बताऊँ, मेरा यह विश्वास है कि किसी संस्था की सफलता वह केवल एक व्यक्ति से नहीं होती है।
1: जी अवश्य।
0: उस व्यक्ति के साथ उसकी एक पूरी टीम होती है, काउंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के सारे सदस्य हैं, जब सभी आपके साथ हैं और एक ही दिशा में सभी सोच कर आगे बढ़ रहे हैं, साथ में कलाकार, शिक्षक, विद्यार्थी, जो सहयोगी संस्थाएं हैं, जब एक साथ जुड़ती हैं तभी काम महत्वपूर्ण होता है और चुनौतियों को पार किया जाता
1: जी, जरूर,
0: है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो हाँ। मैं कहना चाहूंगी। और रही बात इस महीने की, जब आपने पूछा कि इस बार क्या आयोजन किया गया है, तो इस बार हमने एक गतिविधि रखी है, एक विशेष कार्यक्रम जो 29 अगस्त को, मतलब 2 सप्ताह में लगभग, हम IGCIC में 1:30 बजे, शनिवार का दिन है, IGCIC में 1:30 बजे हिंदी प्रेरणा के सुर, इंग्लिश में हम कह सकते हैं हिंदी मेलोडीज ऑफ इंस्पिरेशन के नाम से, इस थीम पर एक कार्यक्रम रख रहे हैं जो मूल रूप से संगीत और हिंदी भाषा को जोड़ती हैं।
1: अच्छा, विषय तो काफ़ी रोचक है, लेकिन हिंदी प्रेरणा के सुर, इतना सुंदर विषय आपने किस उद्देश्य से रखा है? मैं जानना चाहूंगी कि विषय इतना हाँ। सुंदर क्यों है?
0: जी, सुनने, अब सोचिए, सुनने में ही अगर अच्छा लगे तो जब उसका कार्यान्वयन होगा तो कितना अच्छा लगेगा।
1: तो आप इसका उद्देश्य बताइए हाँ। कि क्यों?
0: वैसे देखिए, हिंदी प्रेरणा के सुर, ये जो 2 शब्द हैं, इसमें प्रेरणा, इंस्पिरेशन, अगर आपके मन में सकारात्मक कार्य के लिए एक उत्साह और ऊर्जा जागे, तभी लोग, सभी लोग आपके साथ, मतलब जुड़ते हैं। और साथ में सुर तो संगीत का सूचक है
1: जी।
0: तो भारत की 80वीं जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत मधुरता और भावात्मकता के साथ साथ संगीत के माध्यम से हिंदी भाषा की सुंदरता को दर्शाया जाएगा।
1: तो इस प्रकार से आप एक तीर से 2 शिकार कर रही
0: हैं। जी जी, मतलब हिंदी भाषा का प्रचार तो कर ही रहे हैं
1: जी,
0: लेकिन इस बार कुछ नया संगीत के माध्यम से हम उसे आगे बढ़ाएंगे। और साथ में इसका जो, जिस उद्देश्य की बात आपने की, जानते हैं मॉरिशस में ऐसे अनेक स्थानीय कलाकार हैं मॉरिशस के, जो गानों के माध्यम से हिंदी में, चाहे वह अलग अलग उत्सवों में जाते हैं, शादी के अवसर पर जहां आनंद मनाया जाता हाँ है हाँ। कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो वे लोग हिंदी के गाने गाते हैं
1: जी, जरूर।
0: तो उन लोगों का जो योगदान है वह सर्वोपरि है हमारे देश में, क्योंकि कई लोग हिंदी भाषा पढ़ते तो नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन गानों के माध्यम से सुनकर हिंदी भाषा की ओर रुचि रखते हैं। तो ये विशेषकर मंच उनको प्रदान किया जा रहा है कि लोग आए, गीत सुने, और गीतों के माध्यम से, उन गीतों में जो एक, मैं कहूँगी, प्रेरणा, या फिर जो उन गीतों में एक संदेश है, उसको वे ग्रहण करें।
1: तो इस प्रकार से मैं समझ पा रही हूँ कि आप अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही रूपों से सभी लोगों को आमंत्रित कर रही है IGCIC में 29 अगस्त को, 1:30 बजे,
0: 1:30 से 3 बजे तक है
1: जी।
0: और एंट्री फ्री है, ओपन है सभी के लिए, पूरी जनता वहाँ आ सकती है। आप आइए, गानों को सुनिए, संगीत के प्रति आपकी रुचि चाहे हो ना हो, कम से कम हिंदी सुनने आइए
1: जी, जी,
0: भाषा को सुनिए और उसका संदेश ग्रहण कीजिए
1: जी। चूंकि हम आमंत्रण तो ही दे ही रहे हैं, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि उनमें कलाकार कौन से होंगे, क्या वो राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय, या किस रूप में आप यह आयोजित कर रहे हैं?
0: जी, वैसे मूल रूप से स्थानीय कलाकारों को यह मंच प्रदान किया गया है, और यह मेरा सौभाग्य है कि हिंदी संगठन के साथ बहुत विशेष और खास मंजे हुए कलाकार इस बार जुड़े हुए हैं
1: जी,
0: जिन्होंने संगीत में दक्षता भी प्राप्त की है। तो उसमें जानी मानी वर्षा रानी बिसेसर दुलवा है, साथ में विशाल मंगरू जी हैं, ऋषि रापू जी हैं, किशोर खिमिया हैं, संगीत

0: अध्यापोल नितुषा राम प्रोगश राजकमल चिंतामणि अक्षय जुरन राज दुलवा रणधीर सेवान और ऐसे करके काफी कलाकार जुड़े हुए हैं तो काफी दिलचस्प कार्यक्रम होने वाला है।
1: जी जी बहुत मैं पहले से ही आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ इस कार्यक्रम के लिए।
0: बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद।
1: आपको पता है समय कितना सीमित रहता हमारे पास। आप हमारे श्रोताओं को जाते जाते कौन सा संदेश देना चाहेंगे?
0: एक तो इस मंच का लाभ उठाते हुए मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। देखिए, हिंदी स्पीकिंग यूनियन जो भी कार्यक्रम आयोजित करता है वह सभी के लिए करता है। आप आएं, हिंदी बोलें, हिंदी सीखें, हिंदी भाषा को सुनें। और जो हमारी नई पीढ़ी है, मैं उनसे पुनः मांग करूँगी, नई पीढ़ी के साथ साथ बाकी लोग भी हिंदी संगठन से जुड़ें। आप उनके सदस्य बन सकते हैं, लाइफ टाइम मेंबर बन सकते हैं, आजीवन सदस्यता भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको फोन करना है ऑफिस और वहां से हम आपको प्रोसीजर समझा देंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े क्योंकि सहयोग के साथ ही मॉरिशस भर में हिंदी का प्रचार हो पाएगा।
1: जी जरूर, जी जरूर। चलिए अंजलि जी, इस ज्ञानवर्धक वार्ता के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। हमें पता है कि इतनी गतिविधियों के आयोजन के पीछे बहुत परिश्रम लगता है, इसलिए हमारी ओर से आपको और हिंदी स्पीकिंग यूनियन की आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई एवं प्रोत्साहन।
0: बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, भारत के अलावा हिंदी का परचम मॉरिशस में सबसे ऊंचा लहराता है, ये आप सभी जानते हैं। इसमें अनेक संस्थाओं का योगदान है और हिंदी स्पीकिंग यूनियन उनमें से एक है। डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी के सकुशल निर्देशन में हो रही गतिविधियों का स्वागत करते हुए हम उनको भावी कार्यक्रमों के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे।
0: बहुत धन्यवाद।
1: आपके अथक प्रयासों को बहुत बहुत साधुवाद जाता है। तो इसी के साथ श्रोताओं, आज के ज्ञान सरोवर कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर अंजलि चिंतामणि जी को पुनः धन्यवाद देते हुए हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से और डॉक्टर तनुजा पदारत बिहारी की ओर से सप्रेम नमस्ते, शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: 8 बजे बाद सब लोगन के नमस्ते, पेशबा भोजपुरी समाचार। सब लोगन के फिर से नमस्ते। आज फजीर से भंजन ग्रुप के सब 37 को पेट्रोल स्टेशन पर एगो नवा नाम और नवा लोगो नजर आए। फिलिन ब्रांड के ई नवा पहचान के अनावरण काल सुख के 21 अगस्त के बोपलाव में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के उपस्थिति में करल गल। गौरतलब है कि भंजन ग्रुप ईंधन वितरण करे होला प्रथम 100% मॉरिशन डल है। समूह नवंबर 2025 में अपन सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल के जरिए इंजन पेट्रोलियम मॉरिशस के अधिग्रहण करके ईंधन वितरण क्षेत्र में प्रवेश कर ले रहा। भंजन ग्रुप के सीईओ विक्रम भंजन विशेष रूप से मॉरिशस के कंपनी की क्षमता पर जोर देलन। वो बोलन कि स्थानीय कंपनी में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार और विभिन्न क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करे के क्षमता बाते। भंजन ग्रुप ऊर्जा क्षेत्र में अपन निवेश जारी रखता। फिलहाल 5 गो नवा भंडारण टैंक के निर्माण करल जाता, जिकर पर लगभग 1 बिलियन रुपया के निवेश करल जाबा। अपन संबोधन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम पेट्रोलियम क्षेत्र में भारत संगे कयन बरी से विकसित करल गल सहयोग और साझेदारी के उल्लेख करलन। उ इ बात पर जोर देलन कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति लगातार अनिश्चित हो ले जातबा, इही खातिर मॉरिशस के अपन ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखे खातिर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाए के जरूरत बाती। गौरतलब है कि मॉरिशस के ग्लोबल बायोफ्यूअल्स अलायंस के बायोफ्यूअल्स पॉलिसी फ्रेमवर्क खातिर पहला पायलट देश चुनल गलबा। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी बीफे से मॉरिशस के डुडिन के आधिकारिक यात्रा पर रहलन।

प्रधानमंत्री डॉक्टर विनाम गुलाम और हरदीप सिंह पुरी के बीच एगो एमओयू के आदान प्रदान भी होल। एकर तहत इंडियन ऑयल लिमिटेड के माध्यम से 5 बरिस के अवधि खातिर मॉरिशस के ईंधन के आपूर्ति करल जाए। मॉरिशस अपन कोयला के खपत के 15% हिस्सा बायोमास से बदले के लक्ष्य तय कर

0: भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी संगे एगो एमओयू पर हस्ताक्षर करला के बाद दिलन इस समझौता खास तौर पर जैव ईंधन यानी बायोफ्यूअल्स और नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ल सहयोग पर आधारित है। हज यात्री के व्यवस्था करे होला प्रत्येक ऑपरेटर खातिर न्यूनतम तीर्थयात्री के संख्या 50 से बढ़ा के 100 कर देवल जाए। नवा प्रावधान के तहत इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड देने से परमिट जारी करे जाए से अक्टे ऑपरेटर के जमा कराए होला गारंटी राशि से संबंधित नियम भी निर्धारित करल गल बा। इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड पिलग्रिमेज अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 22 अगस्त 2026 यानी कि आज से लागू हुई मंत्रिमंडल के बैठक में ई नवा नियम के जायजा लेवल गल। एकर अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन अपन वेबसाइट पर एगो सार्वजनिक चेतावनी जारी कर ले बा। एकर में मॉरिशस में डिस्ट्रीब्यूटेक्स नामक संस्था द्वारा करल जाय होला क्रिप्टो करेंसी से जुड़ल गतिविधि के प्रति लोगन के आगाह करल गल बा। FSC के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटेक्स वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन मौजूदगी बनाई ले बाती और मॉरिशस में कई गो स्थान से भी अपन गतिविधि संचालित करता। FSC ई मामला की जानकारी पुलिस के भी दे दिले बा जिमें जाँच करल जा सके। आशंका बाते कि डिस्ट्रीब्यूटेक्स पंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम संचालित कर सकी। मंत्रिमंडल ई मामला के जायजा लीलक। मॉरिशस में जल संसाधन की स्थिति अभी चिंताजनक बाते कई गो जलाशय में पानी के स्तर कमती होइला के बावजूद CWA लोगन तक पानी की आपूर्ति बनाए रखे के कोशिश जारी रखता। देश की जरूरत के पूरा करे खातिर नदी सहित पानी के कई गो स्रोत के इस्तेमाल करल जाबा साथ ही उपलब्ध जल संसाधन के मजबूत करे के और मौजूदा स्थिति के बेहतर तरीका से निपटे खातिर नवा परियोजना पर भी विचार करल जाबा। मंत्रालय देने से इस संबंध में जल्द ही नवा घोषणा करल जाए के उम्मीद बाती। मॉरिशस सरकार खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाए खातिर एगो व्यापक योजना पर काम करता। योजना में स्थानीय स्तर पर बीज उत्पादन स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल नवा किस्म के विकास शिक्षा और प्रशिक्षण शामिल बा। फेगिना जिकरा नोआ कांसें के नाम से भी जानल जाला ऐसन ही एगो नवा बीन्स के किस्म है। एकर अच्छा उपज और जस्ती लौह मात्रा यानी आयरन के मात्रा खातिर चुनल गलबा। सरकार इस किस्म के बीज पर 75% सब्सिडी दे के व्यवस्था कर ले बाते। इस बीज के IMB में 130 रुपया प्रति किलो के कीमत पर उपलब्ध बाते। और दूसरे देश के समाचार में यूक्रेन के मध्यवर्ती शहर क्रिवी रिह में एगो शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमला में कम से कम 15 जना की मौत हो गल बा। हमला में 130 जना घायल होल हवन सा जेकर में 23 गो लड़का शामिल बा। मलबा में अभी भी और लोगन फंसल बाते। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोडिमिर जेलेंस्की ई हमला के निंदनीय और घृणित बतैलन। उनकर अनुसार दिन में होल ई हमला के दुगो चरण में अंजाम देवल गल। दूसर हमला में घटनास्थल पर मौजूद आपातकालीन और बचाव कर्मी के निशाना बनावल गलबा। एकरी संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल। धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
0: शोक समाचार सुना जा। एम्पास जोनी बॉल अक्वाजे पेचित रिवियर में 74 बरिस के श्वसन कातोजों के श्रीमती कुंती बिकू पैदाशी नाम अकालू जिनकरा लोग मैडम वियाई से जानत रलंजा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर मकान एम्पास जोनी बॉल लाख्वाजे पेचित रिवियर से उठा के दाह संस्कार खातिर शबेल के शमशान भूमि ले जाल जाए। दीनदयाल स्ट्रीट रिवियर जोरांपा कोकैम्बो में 85 बरिस के 85 के श्रीमती सावित्री वायापुरी पैदाइश नाम तौंड रायन जिनकर आलोक सावित्री से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल।

बा अर्थी आज दिन के डुबच के आधा इनकर बेटा मानन वायापुरी के मकान दिंडोयाल स्ट्रीट रिव्या जवाप को कैबू से उठा के दाह संस्कार खातिर पितों के शमशान भूमि ले जाल जाए मोफैसिल युगोव में 77 बरिस के श्वासन जिसे तो के श्री तिरभुहन तैंग श्री तिरभुहन तैंग जिनका लोग सुकरात से जानत रलिन जा के मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के अर्थी जिन बाते काल दिन के 11 बजे इनकर पत्नी श्रीमती लीलावती किरण तैंगा के मकान मुफैचिल न्यूगोव से उठावल गल और दास संस्कार खाते मोडालबे के स्मशान भूमि ले जाल गल तो इकर अर्थी काल दिन के 11 बजे उठा देवल गल चंपित लेन मैडम लुलू रोजबेल में 49 बरिस के कागौतनीवों के श्रीमती की सुनती शाम श्रीमती की सुनती शाम पैदाइश नाम कुंती राम जिनकरा लोग आरती से जानत रलिंजा के मृत्यु हो गलबा अर्थी जन बातें आज दिन के डुबच के आधान कर पति संजय शाम के मकान चंपित लेन मैडम लुलू रोजबेल से उठा के दाह संस्कार खातिर मागी जानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जाल जाए गोटवायाल आमोगी में 21 बरिस के वैतनों के श्री निमालेन मुनिसोमी जिनकरा लोग नेलविन से जानत रलंजा के मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर पिता श्री विशालेन मुनिसोमी के मकान गोटवायाल आमोगी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आमोगी के ही शमशान भूमि ले जाल जाए नंबर 224 ए बेनाडे सेंट पियर वाली डिप्रेट में 60 बरिस के स्वासंतों के श्री चंद्रनाथ बुलका जिनकरा लोग राजेश से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर मकान नंबर 224 ए बेनाडे सेंट पियर वाली डिप्रेट से उठा के दाह संस्कार खातिर सिपाही बोइले के स्मशान भूमि ले जल जाए वाल्मीकि गली बोआमांग प्लैंडे पपाई में 30 बरिस के थौतों के श्री थंद्रशेखर रंगलोल जिनका रलो किलान से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा अर्थी आज फजीर के 9 बजे इनकर पिता देवानंद रंगलोल के मकान वाल्मीकि गली बोआमांग प्लैंडे पपाई से उठा के दाह संस्कार खातिर पिटों के शमशान भूमि ले जाल जाए वक्स होलेन मोफ्लेरी सियाकोस्तान सेंट पियर में 82 बरिस के 90 के श्रीमती नीलामा नीलाडू पैदाइशी नाम ढाला पा जिनकरा लोग सेलिया से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर बेटा नीलाडू कृष्णा पुलो के मकान वक्स होलेन मोफ्लेरी सियाकोस्तान सेंट पियर से उठा के अंतिम संस्कार खाते सियाकोस्तांस के ही शमशान भूमि ले जाल जाए डालियालिन बेलव्यू मोरेल में 66 बरिस के श्वासन सीजों के श्री सत्यदेव सिदोनी जिनकरा लोग सत्यदेव मासों से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर बेटा रवि अखिलेश सिदोनी के मकान डालियालेन बेलवी मोरेल से उठा के दाह संस्कार खातिर लामोगी के शमशान भूमि ले जाल जाए नंबर 185 रूट दे पॉम्प्लेमूस ला क्वाजे वाले दे प्रेत पोटवी में 60 बरिस के स्वासंतों के श्री दुर्गा लक्ष्मण जिनकरा लोग पाको से जानत रलंजा के मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर भाई विक्रम लक्ष्मण के मकान नंबर 185 रूट दे पॉम्प्लेमूस ला क्वाजे वाले दे प्रेत पोटवी से उठा के दाह संस्कार खातिर सिपाही ब्रुले वाले दे प्रेत के ही स्मशान भूमि ले जाल जाए रूट रॉयाल फों दु साक में 73 बरिस के 73 के श्री लक्ष्मी प्रसाद हीरा जिनकरा लोग उंगली से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकर बेटा श्री अमित हीरा के मकान गोटवायाल फोंजिसाक से उठा के
दाह संस्कार।

खातिर फौजी साहब के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। बैठ कागली यूनियन पार्क में 88 बरिस के काथो वीतों के श्री मोहरलाल सिंह राम खिलावन श्री मोहरलाल सिंह राम खिलावन जिनका रा लोग महेश से जानत रलन जा के मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकर बेटा कैलाश राम खिलावन के मकान बैठ कागली यूनियन पार्क से उठा के दाह संस्कार खातिर मागीजानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जाल जाए। बुस्के गली शिमेग्रीनिय में 77 बरिस के स्वासंजी सेताओं के श्रीमती सुभद्रा भवन श्रीमती सुभद्रा भवन पैदाइशी नाम हीरा जिनकरा लोग सांता से जानत रलिंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकर मकान बुस्के गली शिमेग्रीनिय से उठा के दाह संस्कार खातिर पैनमानियों के शमशान भूमि ले जाल जाए। गोत्या नंबर 1 अविनी पालमा काठोबोर्ड में 76 बरिस के श्वासन सेजों के श्रीमती रेवती गनौरी श्रीमती रेवती गनौरी पैदाइशी नाम नूरजादिक जिनकरा लोग आंटी से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 1 बज के आधान कर बेटी विदाउटी पामचन के मकान गोत्या नंबर 1 अविनी पालमा काठोबोर्ड से उठा के दाह संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 20 अविनी विल्सन बेलगोज में 75 बरिस के श्वासन कैजों के श्री केशवराव पडू श्री केशवराव पडू जिनका लोग कृष्णा गौ सुताय से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज सांझ के 4 बजे एलियन सन्स ला शापेल ऑडाउंट पॉइंट साबल से उठा के दाह संस्कार खातिर कौलिव्य के शमशान भूमि ले जाल जाए। रोशकुतलेन प्लैन डे पापाए में 86 बरिस के काथोवें सीजों के श्री मोहित खेडन जिनकरा लोग मोहित से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2 बजे कर बेटा किशन खेडन के मकान रोशकुतलेन प्लैन डे पापाए से उठा के दाह संस्कार खातिर प्लैन डे पापाए के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 4 कारिकल स्ट्रीट पोट्री में 83 बरिस के काथोवैत वाजों के बेगम जय बुनेसा गुलामाली जिनकरा लोग बल्कि पैदाइश नाम मूली के इंतकाल कर गल हमन। जनाजा आज दिन के 12 बज के अध्ययन कर शौहर उस्मान गुलामाली के मकान नंबर 4 कारिकल स्ट्रीट पोट्री से निकाल के अक्ते अल अक्सा मस्जिद ले जाल जाए फिर दफनाई खातिर गिश्तिया के कब्रिस्तान। और क्रिमेशन रोड रिश्माओं में 81 बरिस के काथोवैनों के श्रीमती द्रौपदी भुजियावन पैदाइश नाम तेंगो जिनका लोग राधा से जानत रलंजा और जिनकी पंडित श्रद्धानंद भुजियावन के पत्नी रहलन की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज सांझ के 3 बजे इनकर मकान क्रिमेशन रोड रिश्माओं से उठा के दाह संस्कार खाते क्रिमेशन रोड रिश्माओं के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। दशोक में डुबल इस सब परिवार लोगन के प्रति हमने के गहरा सहानुभूति बातें।

समय किसी का नहीं होता, अगर आज वो आपके पास है तो कल वो किसी और के पास था और आने वाले कल में वो किसी और का होगा। इसीलिए अपने हालत पर घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि वक्त बदलने में देरी नहीं लगती। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, देवी और सज्जनों, आप सभी को जय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम इन द थर्ड आवर। जी हाँ, सुबह का नजराना, और सुबह का नजराना चल रहा है लाइव रेडियो मॉरिशस की लहरों पे ऑन 819 किलोहर्ट्ज़ एएम मोड पर हमारा प्रसारण चल रहा है। साथ में आप हमें टिकटॉक पेज पर भी देख रहे हैं, टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस। सुबह 11:19 अभी से लेकर 9 तक कुछ प्यारे प्यारे गाने, फिल्म कामचोर, सत्यमेव जयते, शान, टार्ज़न लव 86, कोहली और कोहली, फिर तोहफा मोहब्बत का फिल्मों के गीत है हमारे पास। इन गीतों पर अपनों के नाम करना चाहते हैं मैसेजेस, सो डू कॉल मी इन 4028085 या हमारे टिकटॉक पेज पर SMS करें और बेशक हम आपके नाम चलाएंगे ये प्यारे प्यारे गाने। ये पहला गाना फ्रॉम द मूवी शान, प्यार करने वाले जीते हैं शान से। ये गीत हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं नर्मदा, हेलो नर्मदा, वेरी गुड मॉर्निंग, हाय रोजलिन। फिर डायन गास्पो हमारा साथ दे रहे, दिलवंती सुनात, परवीन, तोशीना और लेनी यंकाना, हाय वर्षा, यह गीत आपके नाम भी। यही गीत हम चलाएंगे कमल स्था, अधिनादन मारती, स्टेला कुमारी, रेखा मल्होत्रा, वर्ष, ये गीत आपके नाम, दुषिका, जेनी, प्रीति, संगीता, दिलवंती सनातन जी, यह गीत आपके नाती सोनू के नाम। यह गीत लवली एंजल, नेहा लोचन, जोनाथन जोनास, वनेसा सिदम्बा के नाम भी। और ये गीत जो है हम चला रहे हैं फिनिक्स के रेहाना हासनानी के लिए, उन्हें ये प्रोग्राम बहुत पसंद है, हमारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। सो स्वीट एंड लवली रेहाना हासनानी के नाम ये पहला गाना, प्यार करने वाले जीते हैं शान से। और जितने रेडियो मॉरिशस और जितने रेडियो मॉरिशस के हमारे फैंस हैं, हमारे लिसनर्स हैं जो हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, टिकटॉक पर देख रहे हैं, सो यही प्यारा सा गीत आपके नाम हम करेंगे। ये गीत जाएगा साइलेंट की ओर से, उनके नेफ्यू माधव के नाम, और माधव अपने चाचू से बहुत प्यार करते हैं, सो चाचू भतीजा, चाचा भतीजा के प्यार कायम रहे। और यही गीत कवि की ओर से जाएगा उसकी पत्नी टीना, मामा माला, बहन रीना और सब बैरो परिवार के नाम। यह गीत माता जी रीता के नाम भी हम चला रहे हैं। और यह गीत जाएगा विश्वानी बाबूलाल के नाम, अपने तेरागोजा, उनके पति, उनके बच्चों, सब बाबूलाल परिवार के नाम। चलिए एक साथ सुनते हैं प्यारा सा गाना, प्यार करने वाले जीते हैं शान से।

0: सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। अभी सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी व्यक्ति शेबेल रेजिडेंस शेबेक सेंट म्युनिसिपल सगाइटन चुवाल रेजिडेंस लोटस WMA शेबेक और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 22 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबीन सभी सुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
0: कहते हैं कि पति पैसे छापने वाला मशीन नहीं होता, वो भी इंसान है, वो भी थकता है, परेशान होता है, पर वो किसी को दिखाता नहीं, वो अपना दर्द किसी को बताता नहीं। कभी उसके पास बैठकर उनसे जरूर कहिएगा, पति जी आप जितना करते हैं इस परिवार के लिए शुक्रिया, हम हैं ना आपके साथ। जी हाँ, अगर ऐसी बात हर पत्नी अपने पति से करे तो क्या बात है। और अगला गाना मिट्टी बन जाए सोना, मिट्टी और सोना फिल्म का गाना है, 1989 में बनी थी ये फिल्म, और चंकी पांडे सोनम ये लोग इस फिल्म में थे। और मिट्टी बन जाए सोना ये गीत हम चलाएंगे नेहा लोचन के नाम, लवली एंजल जोनाथन जोनास, फिर ये गीत अनिशा के नाम, वशिष्ठ बुधन, उमेश जयपाल गुड मॉर्निंग, और परवेज करुणा इंदिरा जी ये गीत आपके नाम, और राजेश उगर के नाम, रोशनी जी ये गीत आपके नाम भी, बबीता नीमन ये गीत आपके नाम हम करेंगे, करुणा जी ये गीत हम चलाएंगे आपके पति क्लागर के नाम, और सलीम जी हमारा साथ दे रहे, ललिता चरण जी नमस्ते। अगला गाना आपके पति धनराज चरण के नाम, गेट वेल सून हैप्पी रिकवरी। आप कहते हैं कि वो अस्पताल से वापस घर लौटे तो हम दुआ करते हैं ललिता जी कि आपका पति का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ठीक है। और ये गीत करुणा के और सेम के भाई के नाम हम चलाएंगे ज़रूर, लेडी जागो वेरी गुड मॉर्निंग। देवेन नदीवाला कैसे हो दोस्त, आप फिजी से है और हमें सुन रही है, थैंक यू देवेन नदीवाला। अगला गाना आपके नाम हम करेंगे मिट्टी बन जाए सोना, और चलिए यही प्यारा सा गीत हम चलाएंगे संजय बिहारी के ओसन की पत्नी सुरेखा और पूरे परिवार के लिए, और प्रताप के ओसन के बेस्ट फ्रेंड हरीश नारायण के नाम, हरीश नारायण है मिडलैंड से। सुचरी के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गाना मिट्टी बन जाए सोना।

0: तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया।
1: मिट्टी और सोना का गाना हम नहीं चला पाए, उसमें खराबी आ गई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। तो इसके बदले हम आपको सुनवाते हैं अगला गाना, चंद्र आत्मा की आवाज़ में, तुमसे बढ़कर दुनिया में।

सुबह के 8:35 मिनट हो रही है और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ. एमबीसी रेडियो मॉरिशस आप ही लोगों का नंबर वन रेडियो स्टेशन. घमंड मत करो, वक्त सभी को झुकाना जानता है. घमंड मत करो, वक्त सभी को झुकाना जानता है. आज जो ऊपर है कल वो नीचे भी आ सकता है. जिंदगी अपना हिसाब चुपचाप बराबर करती है. इसीलिए किसी भी बात पर घमंड मत कीजिएगा दोस्तों. जो लोग घमंडी होते हैं वो

कहीं ना कहीं जाकर उन्हें ठोकर लग ही जाता है, है कि नहीं? हाँ, सो बी हम्बल, बी काइंड एंड बी स्वीट। और अगला गाना, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर। जगजीत सिंह की प्यारी सी मधुर आवाज़ में ये गीत आप सुनेंगे और यह गाना हम चलाएंगे करुणा के ओर से, उनके भैया के नाम लेडी जागो। यह गीत आपके नाम भी मिस्टर लामा माला जी। और दिव्य नदी वाला वैनकूवर में है, समय वहाँ पर रात का समय है और एंजॉय कर रहे हैं और मैं सुन रहे। सो दिव्य नदी वाला, नेक्स्ट गाना फॉर यू अनीता राल जी, हेलो। और माला बोबासे से है और हमें सुन रही है क्या बात है। बीना पादू, यह गीत जाएगा आपके नाम सभी आपादू परिवार के लिए जो रॉसबेल से है। थैंक यू देवन नदी वाला। एंड प्रीति भी हमारा साथ है, हेलो प्रीति। और यही गाना हम चलाएंगे इन सब लोगों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप है महावीर परिवार मोताबा से और साइलेश महावीर अक्सर हमें सुनते हैं। हाय साइलेश, साइलेश महावीर, यह गीत आपके नाम, आपकी पत्नी, आपके बच्चों के नाम और आपके पूरे परिवार के लिए। और टीना जी हमें याद करिए, राधे राधे टीना जी, जय श्री कृष्णा। ये गीत आपके नाम भी टीना जाएगा, बहुत ही प्यारा सा गीत। और यही गाना हम चलाएंगे स्नेहा के नाम, इंदिरा मेबक से है, इंदिरा लाउतन। यह गीत आपके नाम भी, वीना कुबुसामी मेबक से, उनके पति, उनके बच्चों के नाम, बेटी बहू, बेटा बहू, बेटी दामाद और बच्चों के नाम, सुलमान दुखी मेबक से है। और मानिक जी वाला साधे अनिल ग्रोव से, सुबान भाई, यह गीत आपके नाम भी हम चलाएंगे। और यही गाना हम चलाएंगे सभी दोस्तों के नाम जो बीमार है, घर पे है या अस्पताल में, या अभी अभी अस्पताल से घर लौटे हैं, आराम फरमा रहे हैं, सो गीत आपके नाम। और जो लोग अनाथ आश्रम में, तो बस हम कहेंगे जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। और राइट, और ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचे, जब हम आशावादी होते हैं, अच्छे अच्छे विचार हमारे जीवन में आता है तो सब कुछ अच्छा चलता है, ठीक है। सो नेवर लूज होप इन लाइफ, डोंट लूज हार्ट इन लाइफ। जिंदगी में होता है कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ पर हम घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, बट दैट इज़ ऑनली पार्ट ऑफ लाइफ। इसके बाद जो है, दुख के बाद सुख ज़रूर आता है, सो बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑलराइट, सो चलिए एक साथ सुनते हैं जगजीत सिंह का ये प्यारा सा तराना, होठों से छू लो तुम।

दोस्तों, जिंदगी में इन चार बातों से कभी कभी दूर मत रहना। वो है पुराने कपड़े, गरीब दोस्तों से, अपने बूढ़े माँ बाप से और मेहनत वाले काम से। इन बातों को कभी मत भूलिएगा, इनसे दूर मत रहिएगा। और कहते हैं कि कभी कभी दूसरों की बातों से जीवन में मन दुखी मत कीजिएगा। लोग क्या सोचते हैं ये उनका काम है, आप क्या करते हैं ये आपका धर्म है, है कि नहीं। लोग तो बातें करते रहेंगे कि उसने ये किया, उसने वो किया, पर आपको अपने काम पर ध्यान देना है और अपने काम को अंजाम देना है। बी रियलिस्टिक इन लाइफ, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। गॉसिप्स पर ध्यान ना दें कि उसने क्या कहा आपके बारे में या उसने क्या सुना आपके बारे में। डोंट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट वरी अबाउट योर वर्क। अगर आप अपना काम अच्छी तरह से करते हैं, अपने परिवार का देखभाल अच्छी तरह से करते हैं, बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से करते हैं, इफ़ यू आर गुड हस्बैंड, अ गुड फादर, अ गुड सन, इट्स ओके। चलिए इसे सुनते हैं एक प्यारा सा गाना, दिल में हो तुम आँखों में तुम, बापी लहरी साहब की आवाज़ में। अगर बापी लहरी डिस्को के किंग थे, सो रोमांटिक दुनिया के भी किंग थे और बहुत से रोमांटिक गीतों में उन्हें प्लेबैक का सहारा दिया, जैसे कि इन दिस मूवी सत्यमेव जयते। दैट मूवी वॉज रिलीज इन 1987। सो चलिए यह गीत हम चलाएंगे बापी लहरी की आवाज़ में। सूरज गंगा ये गीत आपके नाम, आपके पत्नी और बच्चों के नाम। मुकेश गंगा ये गीत आपके नाम भी, और यही का नाम चलाएंगे सत्यम सोनू के नाम, सब शिव रतन परिवार के लिए। और यही गाना जाएगा सैतोबे SSS कॉलेज के सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ के रेक्टर और सभी स्टूडेंट्स दोस्तों के लिए, और रेडियो मॉरिशस के जितने भी फैंस हैं, जितने लिसनर्स हैं जो रोज़ रेडियो सुनते हैं और आज भी हमें सुन रहे हैं, सो गीत आपके नाम भी। और ये गीत जाएगा आशा जानू के लिए, कॉटेज से है, और ज्ञान विश्राम उनके पत्नी चित्रा है मादल वैसे, कमला जीनू मोहताबाद से, उनकी प्यारी सी बिटिया है आरोही। और यही प्यारा सा गाना हम चलाएंगे आफेज के नाम, आप है लावेनिया सैंपिया से। उमिला जोदा जी हेलो नमस्ते, यह गीत

आपके नाम भी संजय कुनाई, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्त। यह गीत आपके नाम, आपके बच्चे और आपके पूरे परिवार के, सब कुनाई परिवार के नाम भी यह गीत जाता है बहुत प्यार से। सत्यमेव जयते का गाना, दिल में हो तुम आँखों में हो तुम।

इस दुनिया में दिल तोड़ने वाली बहुत है, पर दिल जोड़ने वाली बहुत कम। अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके दिल को अच्छा लगे, तो उस इंसान से दोस्ती कीजिएगा ज़रूर, और उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। वो इंसान जो हमेशा आपका ख्याल रखता है, जो हमेशा आपके बारे में सोचता रहता है, जो हमेशा आपको SMS करता रहता है, ऐसे शख्स ऐसे इंसान को कभी ना भूलें। और एक अंतिम गाना इस शो को अंत करने के लिए, सुबह का नजाना प्रोग्राम का जो हिस्सा है यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है, विद दिस लवली ट्रैक, ईमानदार फिल्म का गाना, और इस दिल में क्या रखा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या गाना है। ये गीत हम चलाएंगे रेजा जी के नाम, रेजा की ओर से सुलमा के नाम, और भाई आबू है वाकवा से, हाय भाई आबू, गीत आपके नाम, इब्राहिम साहब है पोर्टवी से, मैं सबीन प्लेनवेद से, और रोजीदा हाईलैंड से, और रोजीदा इस गीत को बहुत पसंद करती है क्योंकि इस गीत के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी है ना रोजीदा जी, आपको याद है। चलिए एक साथ सुनते हैं प्यारा सा गाना, और इसी गीत के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। सुबह के 6 बजे से अभी तक रेडियो मॉरिशस पर आपने हमें सुना, हमारे टिकटॉक पेज पर आपने हमें देखा, SMS किया, आपके SMS फ़ोन कॉल्स के लिए शुक्रिया। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल संडे की शाम को 3 से 4 बजे और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर, प्रोग्रामों का हिस्सा भी होता है। टिल देन इज़ गुड बाय फ्रॉम मी और जय प्रताप सिंह से तालू की ओर से, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्ते, बॉन वीकेंड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।

0: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं करुणा लालू। नमस्कार करुणा।
1: नमस्कार किरण, सभी को नमस्कार। आज सुबह बंजन ग्रुप के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर एक नया नाम और नया लोगो नजर आ रहा है। फिलिन ब्रांड की इस नई पहचान का अनावरण कल शुक्रवार 21 अगस्त को बोपलो में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया। गौरतलब है कि बंजन ग्रुप ईंधन वितरण करने वाला प्रथम शत प्रतिशत मॉर्शन समूह है। समूह ने नवंबर 2025 में अपनी सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल के जरिए इंजन पेट्रोलियम मॉरिशस का अधिग्रहण कर ईंधन वितरण क्षेत्र में प्रवेश किया था। बंजन ग्रुप के सीईओ विक्रम बंजन ने विशेष रूप से मॉरिशस की कंपनियों की क्षमता पर जोर दिया। उनका ये कहना रहा कि स्थानीय कंपनियों में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। बंजन ग्रुप ऊर्जा क्षेत्र में अपने विशेष निवेश को भी जारी रखे हुए हैं। फिलहाल 5 नए भंडारण टैंक का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर लगभग 1 बिलियन रुपए का निवेश किया जा रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेट्रोलियम क्षेत्र में भारत के साथ वर्षों से विकसित किए जा रहे सहयोग और साझेदारी का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां लगातार अनिश्चित होती जा रही हैं, इसलिए मॉरिशस को अपनी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। और तलब है कि मॉरिशस को ग्लोबल बायोफ्यूअल्स अलायंस के बायोफ्यूअल्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए पहला पायलट देश चुना गया है। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरुवार से मॉरिशस के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और हरदीप सिंह पुरी के बीच एक एमओयू का आदान प्रदान भी हुआ। इसके

तहत इंडियन ऑयल लिमिटेड के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि के लिए मॉरिशस को ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। मॉरिशस कोयले की जगह बायोमास का इस्तेमाल बढ़ाएगा। मॉरिशस ने अपने कोयले की खपत का 15% हिस्सा बायोमास से बदलने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो भारत की विशेषज्ञता की सहायता लेगा।

0: दी। और विदेश में यूक्रेन के मध्यवर्ती शहर क्रिवीसडी हमें एक शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। हमले में 130 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 23 बच्चे शामिल हैं। मलबे में अभी भी और लोगों के फंसे होने की खबर है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को निंदनीय और घृणित बताया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आप सब कोई के स्वागत बा। आज हमनी के दुगो मेहमान हवन जा आज के चर्चा कार्यक्रम में भाग लेवे खातिर। जे लोग हमनी के जो ई मौसम चलता सूखा के मौसम ओकर पर चर्चा करियन जा, और ई खातिर फारे के अधिकारी हमने संगे हवन प्रिंसिपल रिसर्च ऑफिसर श्री प्रताप नंद किशोर जी। प्रताप जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: और साथ में फारे जे लोग के सहायता करेलन जा उ में से एगो किसान हमने संगे हवन जे वाकवा से हवन श्री प्रेमचंद जीतन जी। प्रेमचंद जी नमस्ते।
2: नमस्ते।
0: तो ई दोनों हमने के मेहमान आज हमने के बतायन जा कैसे ई सूखा के जो मौसम चलता ओकर सामना करल जाए। सबसे आगे तो नंद किशोर प्रताप जी हमने ई जाने चाहब जा कि फागे जो अक्सर हमने के किसान लोग के प्लांटेशन रोपाई के सलाह देते रहेला, हमने टीवी पर आपके बहुत प्रोग्राम देखिला जा, तो अभी जब हमने के देश में एगो ड्राई सीजन सूखा के मौसम चलता सुखारी मारता, तो कैसे ये सब प्लांटेशन हुई बस की प्लांटेशन तो चाहिए होते रहे के, तब फागे के अब एकर में कौन भूमिका है?
1: हाँ, फागे के देखा हमने कैसे किसान लोग के हमने तो उन लोग के हित में काम करी लग
0: जा। जरूर।
1: हाँ, तो उन लोग रोपाई करी लग जा किसी फागे एक के खेती नहीं दिखी ला जा, पर हमने जितना सब्जी बा फल और फूल के ई के थी प्रचार करी ला जा, जानकारी दे ला जा खेत में दे, पर हमने के जितना खेती बाड़ी एगो चीज आवश्यक है पानी
0: जी।
1: पानी
0: सबसे
1: नहीं रही
0: आवश्यक,
1: सबसे आवश्यक पानी नहीं रही तो कैसे सकब जा रोपाई करे। हाँ। क्योंकि हमने जानी ला जा कितना हमली के सब्जी में रेखा उदाहरण के दौर पर हमने जब एथी रोपब जा कैसे हुआ था मेलन मूलंदू। हाँ। उमें लगभग 90% पानी है
0: जी।
1: तो ऐसे ही हमने के भाजी में सब देख 50-60% 80% तब पानी, तो पानी कहाँ से मिलेगा? हमने के माटी से मिली, माटी में जब बरसात होला। हाँ। बरसाती मौसम में तो हमने जानत है जा रेखा इस साल बोला था जा एल नीनो इफेक्ट बा।
0: जी हाँ।
1: तो उतना बरसात नहीं होता, और कोई सोचा था जा बरसात होता, पर देह देखा हमने के जलाशय नहीं भरा था, हमने के नदी में उतना पानी नहीं बा, और नीचे पानी बहोर में उतना पानी नहीं मिला था। तो इस सब से तब हमने समस्या होल बा, सरकार एगो पाबंदी डाल दिले बा जहाँ जहाँ इरीगेशन जोन है, इरीगेशन ऑथोरिटी है, हौजा जितना हमने के सिंचाई के दौर पर घटा दिले हो जा। हे देखा एगो उदाहरण देला सुरिचित में हौजा गुतागुत है, आगे 5 दिन पानी मिला था लुल के देवा था इंजा सिंचाई, अभी सिर्फ 3 दिन, 3 दिन 4 घंटा हो गल बा, तो घट गल बा। तब अब फागे कौन सलाह है देखा हमने के छा दे के तब हमने हे देखा कोनो किसान लोग 1 बीघा 2 बीघा कोनो 5-6-7 बीघा रोपाई करे लग जा, तो एगो चीज हमने बह देखा हमने के छाना वो प्लानिफिकेशन करे के सब वो 5 बीघा में नहीं सकब जा रोपे। हाँ। क्योंकि ये देखा पाबंदी दे अगर बा उतना पानी नहीं मिलता, नहीं मिलता सिंचाई नहीं होता, तो है जानत है जा अभी ढेर जना कदुआ रोप ले जा, बैगन रोपा अगर बा हो जा, अभी मूलंदो और कोई डाल दे लेवा माटी में, अभी बताया जा 2-3 बीघा एक को नहीं रोपे ऐसी कर दे, 1 बीघा इस ई मास, तब दूसरा मास में 2 बीघा तक लिया। तो ऐसे ही हमने खोजते जा जितना कमती पानी बा ओके चाहला इस्तेमाल करे के, और हो जा बोली गुतागुत दलागर बा। पर और जगह में जानी ना जा हमने के बेलमा इलाका में तो दुदूस बा पालमा हो जा ज्यादा लोग ओवरहेड इरीगेशन करे लंगा, माने कि पानी ऊपर से मिलेला, पर हम ही जानी ना जा पानी कहाँ चाहे ना, हमने के जड़ी के जड़ी द्वारा हौजा से आप सोबे होके हमने के सगरो पत्ता तना में सगरो जाला, तो यही खातिर हमने बोली ला जाहे देखा जहाँ पानी चाहिना थी विदा करे के हौजा हमने के जरिया, तो ये हमने के हरदम बोली ला जा। हाँ, है तो इरीगेशन जोन बा स्थापित भाई तो हौजा बोला जा गुतागुत इस्तेमाल करके, पर एगो दूसर चीज है देखा गुतागुत बा तो हमने के छाना कमती पानी एवापोरेट होके, तो ऊ से अथी करे खातिर हमने के छाना मल्चिंग, माने कि कोनो पत्ता घास मल्चिंग छाना डाल दे के, तब हमने के पानी ठंडा रही और उतना हमने के कैसे पानी
0: एवापोरेट नहीं हुई,
1: तो ई एगो दूसर अथी है। अब एगो तीसरा सलाह जोन बा हमने रेखा हमने के माटी में हरदम बोली ले जा फीमिया कुम्पोस डलते रहे के, उ तो बहुत अथी अच्छा अथी करेला हमने के माटी के, पर एगो चीज छाना जाने के इस सब कुम्पोस हम

0: ये फीमिया कौन सी वो एगो बोली ला जा अंग्रेजी में वो होता है होल्डिंग कैपेसिटी, माने कि वो ज्यादा पानी अपन में समा देवेला तब जस जस तब वो पनिया सकेला हमने के जरी द्वारा हमने के पत्ता बगल जाए तो ई हमने तब बोली ला जा देखा और कोई वजह नहीं मिला था कंपोज फीमिया आगे एथी होता ढेर गाय के पर जाने ला अब अन्य प्रकार के हमें कंपोज और फीमिया मिला था मुर्गी के घोड़ा के ये सब बा और ये हमने जानी ला जा सरकार हे रेखा हम यहाँ योजना है स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड जहाँ कारत अथी करे लंजा लिखाई उन लोग कंपोज देवे लंजा 75% वो अथी एगो प्लान दे था कि भाई ला जा सिर्फ 25% है ना चुकाए के ये हर साल मिला था तो यही बोलती जा जितना ज़्यादा यहाँ कारत बा अप्लाई करे ला जा मिले ला हमने जाए जाए ला खेत में बोले ला जा हाँ ये काम कर रहा था तो ये छाना रख ले रहे कि अभी को दूसरा चीज़ें देखा अभी तो खुला मैदान में हमने के भाई प्रेमचंद जीतन हवन तो उन लोग जाने ला जा 25 एक बीघा 2 बीघा अब घर पर हमने रोपाई करे ला जा घर पर छत पर ढेर जना रोपाई करे ला जा किचन गार्डनिंग करे ला जा तो हौजा भी हमने के जो एथी बा कंटेनर में चाहे ला फीमिया डाले के तो ई जाने ला जा बिक्री होला चारों बगल मिला था अब आगे बढ़ते जा नहीं मिला था अभी देखा जाए जा मिला था तो ऊ छाना इस्तेमाल करेगी अब एगो दूसर चीज एगो हमने के नवा अथी कैसे बोले प्रकार के वो कंपोस्ट नहीं है एगो हाइड्रोजेल और कोई बोले जाए लामूस आग्रोस्त को सो वो एगो कैसे बोले जाए दो तरह के है एगो है रासायनिक पदार्थ एगो पाउडर फॉर्म में है दूसरा है एगो अभी नवा बा और कोई ऑर्गेनिक करे लंजा माने कि रासायनिक पदार्थ नहीं इस्तेमाल करे लंजा तो एगो ई एफ पॉलीमर आल मॉरिशस में भारत से तो वो का करेला हमने जब वो में पानी डाल देला जाए वो पाउडर बा तो वो कैसे लामूस लिखन वो ज़्यादा लगभग 10-20% ज़्यादा वो में पानी समा जाला तब वो माटी में डाल देबा अपन कंपोस्ट में डाल देबा अपन कंटेनर में डाल देबा तो गते गते पनिया छोड़ेला तो हमने के हरदम नहीं चाहिए ना सिंचाई करके कैसे बोलते हैं पाबंदी दरा कर बा घर पर एथिकत हुआ तो वो सकेला एक सप्ताह में 2-3 दिन सिंचाई कर बा बस
1: और ये हाइड्रोजेल जो अभी बोल रहा लामूस ये कहाँ पर सकी जनता ये खरीदारी करे
0: नहीं जहाँ जहाँ बिक्री होला रासायनिक पदार्थ बा
1: वहाँ पर मिली
0: बा बा तो दो गो वर्षन में बताए एगो पाउडर फॉर्म में वो रासायनिक पदार्थ है अब हैला तनी ग्रानुलर लेखन बा जोन बोली ऑर्गेनिक है तो वो दोनों में मिला था तो हमें बोलती जा रेखा हैजा भी एगो आज की चर्चा में एगो प्रोग्राम कर ली जा तो बतलैली जा कैसे एगो डेमोन्स्ट्रेशन दे ली जा तो वो बा हमें बोल ली जा मम्मी के मंडी में बिक्री होता ज़्यादा तक ढेर जना जानते जा इस्तेमाल करते हो जा और कोई सकेला नहीं जाना था जा ये प्रोग्राम द्वारा
1: जरूर
0: हमने संगे संपर्क करिए जा हमने बोल दे अब जा सगरो मिले रहा है देखा जहाँ जहाँ बॉस बा कोऑपरेटिव के मॉरिशस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर फेडरेशन लग 20 से ज़्यादा शाखा बा मॉरिशस में अब जा मिला था और जहाँ जहाँ दुकान बा रासायनिक पदार्थ बिचाला हमी के खाद हौजा मिली
1: फार्मर सर्विस सेंटर सब में
0: हाँ हौजा मिली हौजा या हमने इसे संपर्क कर हमने बोल दियो अब जा कहाँ मिला था हाँ। सब बजा ओके खरीदारी करें
1: जरूर बहुत बढ़िया और अभी हमने के प्रताप जी बतावत हवन कौन कौन उपाय बा ई जो सूखा के मौसम चला था ओकर से निपटे खातिर आप कितने ऐसन कदम के ऐलान कर लो ओकर में बा कमती बीघा जमीन में प्लोटाशो करे के फिर आप बोल रहे की गुतागुत के चाहे सहयोग लेवे के कंपोस्ट के इस्तेमाल करे के और फिर अभी हाइड्रोजेल के भी आप चर्चा करत हवा और हमने संगे एगो किसान हवन श्री प्रेमचंद जीतन जी आप एगो किसान हवा हमने के बोला तो हर प्लोटाशो कौन ची पर होवेला कौन ची के रोपाई करत हवा कितना बीघा में आपके प्लोटाशो होवेला और अभी कैसे चला था आपके प्लोटाशो
2: हमारे एगो सुपरफिशी बस 50 PS 50 PS ओकर में सब लेगिम फैन बोलन से फाइन हर्ब्स सेलरी पोआरो बाजिलिक पेसी है सब लेगिम मन में चाहला पानी
1: हाँ पानी के बिना तो नहीं भी होई
2: रेगिली एगो सेलरी बोलनी प्रताप से बोलनी एगो सेलरी में जितना राशिन बा एगो पोआरो में जितना राशिन बा सब पानी खो

0: होगा, तब डेवलप हुई। तो अब है फासो है गुतागुत के फासो से बहुत इम्पोर्टेंट लगता हमने के कि गुतागुत पड़े भी बहुत बेनिफिक बा जो पनिया माटी में जाता और रासिनवा लेवता सींचता तो हमने के अच्छा फेई अच्छा सुंदर लेगिम देवता। और ये है सिंचाई नहीं हुई गुतागुत ये ओवर हेड इरीगेशन कर तो जो पानी गिरता पतुआ में और पत्ता के आबी में कर दी तो लेकिन माता नहीं छा रही। और हाई फासों में हमने के फारी कूद लग वीनी आवा जा सीख जा कैसे कर टेक्निक उकर राकोद उकर पानी कैसे जला कैसे उकर फेंक या शो होला ये सब तब बनाओ सिखावा था उकर पर प्लीज अभी हमने के सामुदायिक रुचि एगो ईद देवता टैंक दिलो सामुदायिक रुचि तो हमने के टैंक दिलो फागे तो हमने सब टेक्निक भी प्लांटे अच्छा चीज निकाली तो बोलो कि प्रोफी बोलो कि अच्छा चीज
1: जरूर चली जरूर। तो जैसे दिक्कत है जा जब हमने के खाली हमने के देश में नहीं बल्कि विश्व भर में ये जो सूखा के मौसम चलता मौसम परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव असर और विपरीत प्रभाव पड़ता ओकर से निपटे खातिर हमने के देश में किसानों के मदद करे खातिर एक तो फागे बा और फिर कितने ऐसा सुविधा देवल जाता जहाँ पर किसान लोग सकियन जा अपन प्लोतासियों करे और मॉरिशस के जनता के नियमित रूप से ओकर फल ओकर सब्जी ओकर फूल मिलते रही। इस विषय पर हमने के चर्चा अभी जारी रही, फिलहाल ले जा एगो छोटा सा विराम।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। आज हमनी चर्चा करत है जा कैसे सुखारी के मौसम में रोपाई यानी प्लांटेशन करल जाए, कौन कौन सलाह देवल जाता सरकार की ओर से, खास तौर पर फागे की ओर से। फागे मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन यूनिट। और हमने संगे हवन प्रताप नंद किशोर जी, और साथ में हमने संगे एगो किसान भी हवन भाई प्रेमचंद जीतन जी। हमने के थोड़ा नंद किशोर जी आप ये बोला कि अभी हमने के भाई नंद किशोर हमने के भाई प्रेमचंद जी बोलन कि फागे के ओर से उनका थोड़ा मदद मिलल बा, तो फागे कौन कौन रूप में किसानों के मदद करेला, कौन कौन ऐसा सहयोग देवत है वजह।
2: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल करलन, कितना सहयोग भाई हमने के प्रेमचंद जीतन बोलन कि एगो चीज़ हमने हरदम ले ला जा प्रशिक्षण ट्रेनिंग रोज देख बजा हमने के जहाँ जहाँ शाखा हो, मापू जेब फ्लाक जेब सैपिए प्लेजांस जैसा होगी। अभी उतन में हमने के जोन स्कूल बा वो खुला था, तो सगरो हमने प्रशिक्षण देला ट्रेनिंग। तो एगो पर अभी जोर देवत है जहाँ है जहाँ थे जब बरसात कमती आवता हमने के पाबंदी डराल बा, बस एगो चीज़ हम तब जोर देवत है पाबंदी नहीं डलाल बा, नहीं छैना सिंचाई करे के सब्जी के
1: जी।
2: नहीं डलाल बा, पर हमनी के छैना जाने के कमती पानी बा, चाहेला जो कमती पानी बा अच्छा से इस्तेमाल करे के
1: जी।
2: और एगो चीज़ हमने हरदम बोलीला जा पानी है देखा बोली जलाशय में अथी बा नदी में बा, तो सब अपन जो हाइड्रोपोनिक्स बा ग्रीन हाउस अपन घर पर कोई यहाँ अथी है वॉचमैन को गोदाम है, तो हौ से सकब जा रेन वाटर हार्वेस्टिंग माने कि पानी जमा करे, ई पानी सकब जमा करे अपन माटी में एगो सकब जा एगो टैंक लेकर कोट दे एगो नहीं दसन बगल मॉरिशस में हो गल बा ऐसे। अब दूसर चीज हमने के जो कैसे भाई जीतन बोलन हमने जितना सिस्टम है उमें है योजना माने कि 50% घुमा दे ला जा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कितना तो हर पाइप्स लगी कितना तो हर टैंक लगी ये सब 50% हमने घुमा दे ला जा। सिर्फ हम यहाँ चाहना आए कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने में ये है हमने के, और अभी बजट पारित होल है तो जितना हमने के पैसा और मिलल तो हमने कितना स्कीम बा लगभग 15 स्कीम में सहायता दे ला जा। तो ई बोलती जा हरदम से संपर्क करा जा, जितना हमके दफ्तर बा आव जा सब, और हम के वेबसाइट में सब जानकारी हमने प्रोग्राम देते रहला कैसे बोला माटी के मोल पर। एगो चीज़ अभी हम बोलती हे रेखा हमने के तुदोदूस इलाका में हमने के भाई जितन जिक्र करलन गुतागुत सीखलन अपनावत हुन ये अच्छा बा। एगो चीज हमने खोजनी से ई साल अपनाए के हो जा तू दोष में जाने ला हमने के हो जा खेती वाला प्याज, और हाँ। कौन प्याज है टूपी ढेर जना खोजे लन जाओ वो लगभग माँ 6 महीना जो फसल करने बढ़ रहा जला, तो हो जा एगो चीज हमें बोलनी अपनाए के गुताकुत काहे आगे वही प्याज के जो बीज बा ओकर हमने जब फसल करत हली जा जो ओवरहेड है ऊपर से पानी हाउ एगो दू गो खतरनाक बीमारी ट्विस्टर डिजीज ट्विस्ट माने कि ट्विस्ट हो जाला ओकर पत्ता। अब एगो दूसरा स्टैम्फिलियम ब्लाइट, तो ओ जे पानी ऊपर से दलब ओकर फूल में गिरी पत्ता में गिरी हवे बीमारी फैले लगे।
1: अच्छा,
2: पर इस साल हे देखा हाउ जो हमने के किसान हवन भाई बागेलू वो हमने के सुनलन एक साल आगे सिर्फ 5 लीबर बिया ओके मिलल बीमारी खतरनाक रह हमने गहने जा ओकर खेत में है सब सिस्टम डाल दे ली जा। इस साल 50 लीबर 25 किलो प्याज पैदा करी, ये बहुत अच्छा बा। और हमने क्या कर ली जाए देखा फागे तब हमने किसान लोग के हौजा लेके गई ली जा। देखा आज MBC द्वारा ये प्रचार करत है माटी के पोल।

0: में वो प्रोग्राम हो गल जल्द से जल्द। और हम लिखो रहते जहाँ हम लिखे अवसर बा चारों बगल सोलह गो अवसर बा उन लोग के भी ठहरा जाए कि देखे के गैलन जा देखे बोलत है जा ते सब हमें रेखा हरदम बोली ला जा एगो प्रशिक्षण से बजा एगो क्लास में आई एगो दूसर हमने के खेत में होला खेत में अनफर्म थायल बोली ला जा या हमने के जितना मॉडल फॉर्म बा मापू फ्लाक हौजा हमने के डिमॉन्स्ट्रेशन पलट बा हमने ज्यादा अभी ये ध्यान देव थे जा कैसे कमती पानी से हम सकब जा रोपाई करे
1: जरूर
0: तो ई हम के हरदम चाहना। अब एगो दूसरा चीज हम तो बहते चाहना सिंचाई करे के पर चाहना जाने के और जगह मॉरिशस में बा कैसे कुद्दो या मिताज बेलरीव इलाका में हो जा एको सिंचाई नहीं होला माने कि रेनफेड उ लोग अथी कर जा पानी आई तब उ लोग के आलू ढेर आलू रोपाला अभी देख बा सुसु ढेर रोपाल बा हो जा ऐसे गोभी फूल गोभी तो हो जा उ लोग ऐसा हमने के देखा लैंडस्कोप द्वारा दो साल होला एक बीघा नहीं दो बीघा उ लोग के 150 बीघा जमीन देवा अगल बा तो हमने खोजा था जा ऐसे ही और 50 बीघा भी अथी बा लीस हो वाला बा तो सब से हमने के चाहना किसान के का करे के हम यहाँ आए जा माटी बा हरदम बोली ला जा एप्लीकेशन फॉर्म करा जा सकब जा कुछ ना कुछ और हो जा बिना सिंचाई द्वारा सकब जा रोपाई करे होता इस साल फसल हो जा ही शुरू हो गया बा आलू अभी फसल होता गाजर के फसल होता तो हम ही देखा था जा और इलाका कैसे लालुआ में बा मालेगा में नुवेल दे कुवैत में उतना सिंचाई नहीं छाना करे के जहाँ छाना सिंचाई करे के हौजा किसी ने पाबंदी नहीं डराल बा पर कम थी छाना इस्तेमाल करे के। अब एक दूसरा चीज अभी लीची के अथी फुलाई होता पोलिनाइजेशन होता तो एगो चीज़ हमने जानी ला जा पानी आवश्यक है तो ओके जितना जाना स्थापित करे लन जा हमने के बगीचा एगो चीज़ हमें सलाह हरदम दे ला जा चारों बगल कुछ ना कुछ विंड ब्रेक सगवा या कटहर रोप दे कसिया रोप दे फिलाओ रोप दे ये सब रोप दे बा तब का होला कैसे बोली एवापोवे जब अथी हमी के हवा होला तो वो पानी नहीं एवापे हो और हमी के बगीचा में ऐसा सलाह देव अब जा हाँ जानी ना जा घास वो भी पानी चाहना तो हौजा बोली ना जा है देखा अब तब बिक्री होता हमी के स्कीम में बा ब्रश कहते माने वो घास सक बजा काट दे जब काट दे ब्रश करते से वही का हो कोपोस हो लगी तब तोहर जितना बगीचा में तोहर गांची के जरी द्वारा खाना मिला था इमिद रही और एगो कोवा और एगो चीज तब बोला है घास हाँ घास हरदम बोला जा हाँ पानी घीते हुआ पर कब कभी कभार है ना हो जाए छोड़ दे के और घास हमी के अच्छा माने कि पर्यावरण के जानी ला जा बुलावे ला जा अच्छा जो हमी के कीड़ा है मधुमक्खी सियाफी अन्य प्रकार के हमी के जो अच्छा कीड़ा है जो अच्छा काम करे ला जा तो हरदम चाहे नहीं बोले थे जाए के रोपे के चारों बगल सकब जा रोप दे तब एगो चीज ढेर जना करत हो जा बोले थे जा नहीं छाना करे के ओकर चारों बगल हरदम हेरे का कछिया बोलनी ये थी सब के गांछी है पल्हा उल्हा के गांछी है तो और कोई क्या करे वो काट के जरा देवे लन जा यह विषय ते ही नहीं अच्छा तो हाउ छाना रखले रहे के
1: ओकर फूल में मधुमक्खी आवेला
0: मधुमक्खी तो ई छाना एथी और ये हमने हेरे का भाई प्रेमचंद एगो स्कीम में अवन चांबा वाग कछ
1: जी अभी चर्चा कर लन
0: चर्चा कर लन वो हम भी रली हैं उजा शुरुआत में शुरुआत में जब हमने के बाहर से रीयूनियन आइलैंड फ्रांस से लोग गैलन जा सिखैलन जा खेत में गैली जा देखे हाउ जो रिलेशन बा तोहर कौन चीज रोपले हवा और भीतर कौन चीज बा और एगो चीज बा है देखा घास कैसे बोली हमें के हरदम छा सोचे के देखा मिनिमम तिलेज बोली जा करे के हरदम नहीं सोचा जाए वो बगीचा बा स्थापित करके जेबा जा मशीन डाल दे नहीं जड़ी हमने के केला के गांछी जानी ला जा हौजा कोट द हवे गड़िया और चारों बगल नहीं छाना कोरे के जी कोट दे बता माटी सकबा जा लाल माटी लौकेला तो लाल माटी लौकी तो उ ज्यादा पानी खोजेला
1: अच्छा।
0: और पानी है बापो हुए उजाला यही बोलती जा हाई वाला सोच समझ के मशीन छाना डाले के सोच समझ के चाहे ना डाले के तो उ लोग हरदम बोली ला जा हम यहाँ आइए जा हम बोल देव अब जा कैसे छाना दरी काटे के कहाँ काटे के ताकि तू लोग के जो काम बा आसान हो जाए
1: जरूर। और अभी

0: प्रेमचंद जी, आप चर्चा करत रहला कि आपके थोड़ा सहयोग मिलल बा, फागे के ओर से जन सहयोग आपके मिलल, कैसन सहयोग मिलल, थोड़ा विस्तार से हमी के बताओ।
1: ओकर तकनीक सिंचाई के 100% एफिकास। और जैसे बोला था, पनिया जाए जाए राकोदमा में और गुता गुद जब आवा था तो पनिया बहुत बेनिफिक बहुत प्लोंगा के। और स्कीम बा कौन एगो मशीन किन बताए ओकर में ओकर टेबिया घुमावेला। अभी भाई पता बोलन है कि 50% ग्रांट मिलेला, ऐ सब फैसिलिटीवन है। हमके जो फैसिलिटी मिलल बाटे मुझे थोड़ से बोलनी कि एगो टैंक मिलल पानी के कि ओकर से अब ओकर राकोदमा करे के बहुत फैसिल हो गल। एगो लावांताज जला बहुत मुझे अब एगो प्लांटे के बोलवा जा के एगो टैंक पान एगो टैंक दिलो खोज ओकर मोते खोज ओकर राकोदम खोजे देखवा दे आलो दस हई फसों में बहुत अंकवाज में मिलल हमिके फागे बगल से अभी सामना एक लिचिया बगल से ऊपर बगल से ढेर अंकवाज में मिलता था। आर जो कु टेक्निक मिलेला
0: तो कु स्वीव कर ले हवा।
1: हाँ हाँ ए हो जो कु टेक्निक में मिलला अभी जो टेक्निक मिलता था वैतों तौतों में ये सब नहीं जानते नहीं था। अब जो टेक्निक मिला था नुवो नुवो नुवो नुवो नुवो दफे और हमने एग्रीकल्चर में हरदम चाहिए अडाप्टे रहे कि नुवो नुवो टेक्निक कौन से। नहीं तो प्लांटे जी करते रही जो आगे
0: करते
1: तो वो नहीं अच्छा
0: रिजल्ट नहीं अच्छा रही
1: नहीं अच्छा रही।
0: और अभी मौसम भी देखा था, मौसम बदल ले जाता आगे ऐसा मौसम कहाँ रहा।
1: एगो एग्जाम दे रखते ना एगो तौतों में वाकवा में दिन ओकर टेम्परेचर हट ठंडा ओकर टेम्परेचर ठंडा पानी तो बरसे लेकिन तो हो अभी टेम्परेचर एकदम सांझ हो अभी नहीं बहुत ठंडा फजीर के उतना ठंडा नहीं बा हो पानी के गिलिए मिला था नहीं मिला था। अब तो है अब चाहिए वो अल्टरनेटिव खोजे कैसे अल्टरनेटिव खोज फागे हमने की टेक्निक दे होता कैसे कैसे क्या करके।
0: और आप जो खुद फागे से ये टेक्निक सीखला को लेला और बोला था कैसे कैसे आपके सहयोग मिले आवता हर तरफ से, आप किसान लोग के कौन सलाह देबा किसान भाई लोग के ये सूखा के मौसम में
1: कौन से ही दूलों के देवा हम पहुँचते हैं भाई लोग फागे हमने के कू देवता ग्राचुई जाके लावताज निकाले के
0: इको ग्राचुई है कुछ पे करके नहीं
1: बा कुछ पे करके नहीं है वहाँ पर जाइए रेजुए बा कबू कबू उतन में मिलेला बहुत इंटरेस्टिंग एगो तिलेतन निकाल के जब जाइबा वहाँ कुछ सीख कर अबा वहाँ अप्लीके कर अपन कारू में तो हर कातिर बहुत बेनिफिट है बहुत बेनिफिट है। और हम पाते लोग अंकुआज करब जा टेक्निक सीख टेक्निक अप्लीके कर उपगाइ।
0: आजकल बोलल जला कि मेहनत चाहिए करके जीवन में लेकिन चाहिए स्मार्ट रह के, इतना ऐसा मेहनत करा जहाँ पर आप उतना थकबा भी नहीं ढेर नहीं परी कपार फाचिगे करके लेकिन आपके काम भी बहुत अज्जोली से हो जाए। तो इस विषय में हमने के चर्चा अभी जारी रही। हमने संगे हवन श्री प्रेमचंद जीतन जी और श्री नंद किशोर प्रताप जी, आप फागे के प्रिंसिपल रिसर्च ऑफिसर हवा और आप एगो किसान हवा जे फागे से जितना सहयोग मिलता ओकर से लाभ उठावत हवा। और इस विषय में हमने की चर्चा अभी थोड़ा देरी में जारी रही। फिलहाल ले जा एक छोटा सा ब्रेक।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सब कोई के एक बार फिर स्वागत बा। आज का हमी के देश में सूखा मारा था और ऐसन में पानी के कटौती लागू कर देवल गल बा। हमनी के सौभाग्य बा कि ई थोड़ा दिन में थोड़ा बहुत पानी मिलने आवता, लेकिन आगे चल के सखी जस्ती सूखा हो जाए, सूखा पड़े लगी। और ई विषय पर बात करे खातिर कि कैसे प्लौतिया लोग के, कैसे किसान लोग के मदद करल जाए, उन लोग के कौन कौन टिप्स देवल जाता फागे के ओर से, हमने संगे हवन श्री नंदकिशोर प्रताप जी फागे के ओर से, और फिर एगो किसान जे फागे के जितना भी सलाह बा, जितना भी ओकर प्रशिक्षण बा कु देवल जाता, ओकर से लाभ उठा के हमनी के बतावत हवन कैसे उनकरा सुविधा हुआ था। तो अभी प्रेमचंद जी थोड़ा घरी आगे हमनी के फागे के अफसर श्री प्रताप जी बोलत रहलन कि कौन कौन कदम चाहिए उठाए के, और उकर में कॉम्पोस्टास के भी चर्चा होल। गुतागुत के बाद तो आप करला, अब एक कॉम्पोस्टास के बारे में थोड़ा बोला, आप कैसे एक एप्लीमेंट करेला, कॉम्पोस्टास के बारे में कौन सलाह देबा हमने के किसान भाई लोग के, एक किसान के हैसियत से।
2: कृषि भाई प्रताप जी बोलन, कॉम्पोस्ट कितना एपोता होगा भाभी, और जो पत्ता सूखल बा, जो गाछी काटा जाए या जो घास के बाद सब डाल देबा एगो एगो बीन में, हो कॉम्पोस्टवा बहुत रिस ऑर्गेनिक हो जाए, रिस ऑर्गेनिक। और ओकरा लेके जब दलबा माटी में तो मटिया तो आर रिस पोजिशन आर अच्छा रही। अब जैसे हमने के कौसे मिलल बा कि जीरो बजट, जीरो बजट का बोले चाहता कि ओकर में जी फीमिये गाय के गोबर डालब से, गाय के गोबर दलब ओकर में फैचिलीजा सकब से नहीं डाले, सहमति सुन जस्ती लेता ले, जस्ती नहीं मन लेगी मिली। और कहाँ मिली, कहाँ मिली गोबर, अभी तो जिस बिगा में मिलेला चाहे जाके आने के, तो अभी वो प्लान बा फागे बगल से कि कैसे करके प्लीटर वो डिस्ट्रीब्यूट करी प्लान तेल के कौन कौन पॉइंट में, तो ये तो बहुत अच्छा रही कि हमने के आपात फैसिलिटीज नहीं सेवी करब से, आपात पेस्टिसाइड नहीं सेवी कर।

0: तरफ से जीरो बजट से डिगिंग खूब अच्छा रही। और
1: जीरो बजट और डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब आपके कुछ किन्हीं कहने चाहिए आपके ऐसे मुफ्त में मिली ये बोले कुछ था
0: जे फागे जे जिस पोजिशन लोग आके डिस्ट्रीब्यूट करके सब जे को पॉइंट रही कहाँ पर हमने सबसे जाके ले कि हमने के परिया के बिगा ने के और प्लाते है कुत्ता लेनो बा लोग जिप्सी रही तनी ले सीधे बोलते अब जे फागे जे है जिस पोजिशन ले जाके यहाँ पर तेल तेल में डिस्ट्रीब्यूट गई तो ये तो बहुत लाभवान बा हमने तो वाकवा से बिगा ढेर दूर नहीं बाटे नुक हमने तो सबसे जाके लाने में हर जो इनिशिएटिव ले के बा लोग बहुत अच्छा बा हम ऐसे कहते हैं फागे के जे ऐसे रही जो पेस्टिसाइडों कमती रही फर्टिलाइजरों कमती रही लेगिम्स अच्छा रही
1: जरूर।
2: हाँ कैसे भाई जीतन बोलन है जो कॉन्सेप्ट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हमने मुफ्त में हाउ जो कैसे बोलते हैं हमने के पीमिया नहीं मिला था गोबर ये हमने आना था जा हमने शुरुआत कर दे रहे हैं जहाँ मापू उधर फार्म में हो जा उत्तर प्रांत में एक बगल हम ही जाए ला जा छोड़ दे ले जा हो जा सिर्फ किसान लोग अपन एथी आने ला जा कंटेनर लेके चल जा ला जा हर तीन चार सप्ताह में अभी चालू फिर से करब जाए क्योंकि देखते जा सुखारी मौसम में बाहर जाए वो दूसर ग्रुप बा दागुछिया में उ लोग भी हम के अथी संपर्क कर ला जा हौजा भी बारह गो किसान बा बारह गो किसान के सहायता देवत है जा तो ऐसे ही जो सेवा है देवत है जा मुफ्त में। अब बोलती कब छैला सिंचाई करके ढेर
1: हाँ।
2: जना देखबा दस ग्यारह बजे बारह बजे हो जाते जाने ना जाए वापस हो ज़्यादा तो दो बखत सकबा जा सिंचाई करे सवेरे लगभग नौ से आके और शाम के तीन बजे से बाद में और हम के रोपाई अब नहीं जब जा हमने ट्रांसप्लांटे करे जो पौधा थी दिन के हम के छाला शाम के ज़्यादा जस्सी अच्छा शाम
1: जब ठंडा रही हाँ ठंडा रही
2: तब वो जल से जल सकी अथी बढ़े लगी। और एगो चीज़ बा हमने हरदम ये तो बहुत प्रशिक्षण दिली जा जाना था जा हमने के जितना किसान बा पकड़ लन जा जितना बोली जा आगे हमने जाते नहीं जा दरी काट के फीमिया में हो जा बिया गिरा देवत हैं जा तो बहुत हमने जोरदार प्रशिक्षण कर ली जा आज नर्सरी स्थापित होकर बा कोई घर पर सीतरे में अति करे लन जा तब बीज हौजा गिरा के तब ट्रांसप्लांटे करे लन जा हैजा काहे बोझा थे जा एगो ट्रांसप्लांटेशन शॉक मिल जाला गाँचा के है एगो अथी लताप के जो बोल जा हौजा हमने डालत हैं जा बीज बड़ा हो जाए तो हौजा हमें कबाड़ के दूसरा बगल जाते अब नहीं सीतरे में बा सिर घिंच द अपन अथी जरी में डाल दा तो हई टेक्निक जानते हैं जा अपना दे बच्चा ये तो बहुत प्रशिक्षण कर दी जाए तो इसम भे देखा हमने के हमने चर्चा करी ला जा आर्थिक चर्चा माटी के मोल लगेला हमें प्रशिक्षण दे ला जा खेत में जाए ला जा पर हई जितना चीज बोलत है जा लिखित रूप में डाल दे ले जा तो ये हमने एगो पॉम्फले हमने के दफ्तर में बा सकबा जा जो पॉम्फलेट बा यह एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर माने कि कैसे चाहे ना हमने के कमती पानी से और जितना टेक्निक अभी चर्चा कर ली जा ये सब ई में बा तो हम बोलती जा जितना जाना हमने के दफ्तर से संपर्क जाते जा हम शुरुआत ही से बोली पानी आवश्यक हाँ आवश्यक है तो जितना कमती पानी बा हमने सकब जा जितना नवा नवा टेक्निक बा हमने सकब जा इस्तेमाल करे वो कमती पानी तो यही बोलती जा हरदम हमने फागे हरदम है जा है जा हम के दफ्तर में या जा हम के मॉडल फॉर्म में या जा ये देखा हम के मॉडल फॉर्म जितना टेक्निक बा ड्रिप इरीगेशन मल्चिंग कॉम्पोस्टर सगरो ये देखा हमने के जो फ्लैक मॉडल फॉर्म में ढेर जाना आवत हो जा बोलती जा है देखा सिर्फ एगो फोन कर दे बा सकबा जा आई देखे एगो सिर्फ बोलबा जा
1: फागे के फोन करके
2: हाँ
1: तब एगो दात चाहिए लेवे के एगो बखत चाहिए
2: हाँ, हाँ, हाँ, बोल दे बाब जा आरू कैसे बोल रहे जा ओपन है कभी भी सोचबा जा आई के सिर्फ एगो कैसे बोल रहे जा एगो अपॉइंटमेंट ले लिया हमने के कर्मचारी हम जा बा सगरो लेके चल जितना टेक्निक बा जितना अभी बतलावत है जा हम के मोबाइल फॉर्म में बा। और एगो दूसर चीज हमें तो जानते हैं जा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्मार्ट एग्रीकल्चर अथी करते हैं जा सस्टेनेबल माने कि बिजली छाए ना हमने के जो अथी बा वाटर पंप चला के अब हमने के जो नीति बा सोलर वाटर पंप होगल बा हमने के जहाँ जहाँ मॉडल फॉर्म में बा हमने के रिसर्च

0: स्टेशन में मैं वैज्ञानिक जो नैति बा हो जा सगरू इस सब तरह के निदाल दिल जा अब जाना था जा सगरू बिजली नहीं चला हम के ग्रीन हाउस बा अब तब जब नाम बोल देनी ग्रीन हाउस हमने शेल्टर फार्मिंग करी ला जा जाने जा एफिशियंस वाटर एफिशिएंसी इरिगेशन एफिशिएंसी हमने खुला मैदान में करब जा गुता गुत पर हमने जब ग्रीन हाउस बने के ढाक देव जा प्लास्टिक डाल देव जा हौजा हमने के जितना पानी बा कैसे हमने इस्तेमाल माने की ढेर अथी जान नहीं होला तो ई हा वाटर यूज एफिशिएंसी हौजा 40-50% से हमने कम पानी इस्तेमाल करी ला जा एक बीघा जमीन हौजा रोब खुला मैदान में शेल्टर फार्मिंग करब हाइड्रोपोनिक करब कोनो चीज करब हौजा जो कम थी पानी बा वो 40-50% हमने जो पनिया बा एफिशिएंस बढ़ जा रहा तो यही बोलती जा है अब एगो दूसरा बड़ा स्कीम अभी लॉन्च हला हमने के मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद बुलेल मंगलवार के प्रेसिजन फार्मिंग वो आर हमने जाते जा कमती पानी से ना इस्तेमाल करके ऐसा ना ऐसा टेक्निक है देखा माटी में डाल दे जा एगो उपकरण बा 300 मीटर जान जाब जा कब पानी कमती बा कब छाना पानी डाले के और वो डिजिटल है हमने एथी नहीं बा एआई भी इस्तेमाल करब जा जहाँ तक हमी एआई तो वो नवा स्कीम ई बजट में आला 2 मिलियन रुपी एक जना के सोसाइटी बा तो कोऑपरेटिव बा अकेले आवा जा सकबा जा वो योजना पर प्राप्त करे तो ई होता जाना था जा और बगल ई पर काम करत हुआ जा ज्यादा लालुआ गई जा हो जा हमने के नौजवान है देखा और कोई बोल रहा नौजवान नहीं बा हमने देख ली जा ट्रेनिंग दे ली जा पर उन लोग हाउ जितना उन लोग के सिस्टम बा डिजिटलाइज कर दे लो जा तो ई अच्छा बा उन लोग हाँ सब जितना टेम्परेचर तापमान ह्यूमिडिटी मिल जाता है जा सिर्फ एनालिजे करके तब दिखाते हुए जा पानी छाया डाले के कब छाया डाले के कितना छाया डाले के खाद भी तो ये सब हमने कैसे बोल दिया जा चाहे ना हमने के आगे जाके प्रेसिजन फार्मिंग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब हमने सकब जा और हमने के कौन सी बात कम थी पानी से ज़्यादा चाहे ना हमने के पैदावार करेंगे
1: ज़रूर तो जैसे सुना था वजह आज भले ही हमने के देश एगो संकट के ओर बढ़ाता सूखा के ओर बढ़ाता लेकिन फागे के ओर से कृषि मंत्रालय के ओर से उस सब सुविधा देवल जाता उस सब तकनीक अपनावल जाता जेकर से कमती पानी से सकल जाए प्लांटेशन करे और ये बात पर कितने गतिविधि चलता प्रशिक्षण चलता और MBC तक यहाँ बाही आप लोग के जो काम होता ओके जनता तक पहुँचावे के एगो जो जागरूकता अभियान बा उ चलावे के कहे कि जैसे पानी के कटौती के घोषणा होल त सब कोई सोचे लगल कि अब प्लांटेशन कैसे हुई एगो धरला एगो बेचैनी हो गल किसान लोग में जनता लोग में भी कि अब लेगिम कमती रही तो अब कौन दशा रही आगे चल के लेकिन देखत है जा ये कार्यक्रम में आप जो बात बोला था वह और हमने के भाई किसान श्री प्रेमचंद जी भी बतावा था कैसे ये सब टेक्निक के अपनाते हुए प्लांटेशन सुचारू रूप से जारी रही भले ही थोड़ा संकट बा लेकिन ओकर उपाय भी आप लोग बहुत अच्छा से ढूंढत हुआ जा अब हमने के थोड़ा अंत तक पहुँचत है जा हमने के बोला प्रताप जी कि कैसे आपके बुझाता ये जो संकट के समय सूखा के समय बा ई जस्ती लंबा जाए कैसे चली और एक सामना करे खातिर आप लोग पूरा तैयार हो जा
0: हाँ लगभग देखा था जाओ 3 महीना से गला जाए बहुत एल नीनो इफेक्ट तो अभी अगस्त में है जा सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ई 3 महीना अभी ज़्यादा हमने के छाना ध्यान दे के जितना पानी बा कमती पानी बा ओके कैसे छाना ज़्यादा देर लेके जाएके नहीं देखा जलाशय कमती पानी होता पानी आवा था कभी कभार पर उतना नहीं भरा था तो यही बोल दिया जा बहुत ध्यान दे के हमने के जो एथी बा कमती पानी हाँ सकब जा जन जन टेक्निक बोल दी जा चाहे ला अपनाए कि अपनाई बा जाए देखा अभी जाते हैं जा 2-3 महीना से उतना बरसात नहीं होता पर मंडी में हमने के जाना जाए सब्जी बा फूल गोभी बा गोभी मिला था, सुसु मिला था, बैगन मिला था, ये सब मिला था। तो हमने तब हमी के किसान लोग जितना हम सलाह देवत है जहाँ प्रशिक्षण

0: पकड़त हुआ जा ई हमने चाहना हरदम हमी संगे संपर्क कर बजा हमने तुलो के आगे लेके जाप जा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई प्रेमचंद जी, आपको कैसे बुझाता, कैसे बा भविष्य अभी आगे चल के?
2: जैसे तू बोला फागे विजिट रेंकोंट बनावेला, जे कोई रीजन फ्लाक में बा एगो सेंट बा रिसेस कांगारो ओलो पॉइंट पर बा सिस्टम सोलर सिस्टम ला पंप अवेक सो इरीगेशन। आलो हम जन बोलती आदमी लोग के जे लोकाजो में जा के आल विजिटे ओकर से लाभ लिखा उठावा जा, इतना फासिल बा सिस्टम सोले एगो इन्वेस्टमेंट बा बेगो प्लांटे एगो इन्वेस्टमेंट ऊपर फे एगो इन्वेस्टमेंट एगो लॉन्ग टर्म के
1: राइट।
2: काल पानी कमते रही काल पानी जैसे रही उकोने इन्फिनी फैन इन्वेस्टमेंट
1: तैयार रहा, कोनो भी मुश्किल आए ओकर सामना करे खातिर तैयार रहा।
2: प्लांटेशन तो होती रही जहाँ जहाँ लामोता चाहिए लामोता द्वारा मिलता ओकर से लामोता निकालेगी।
1: और आपको कैसे बुझाता ये जो सूखा के समय चलता आगे चल के एगो किसान के हैसियत से आपके कैसे बुझाता, कैसे रही आगे के दिन?
2: ये सुखाड़ी कोची नहीं रही ओकर सोल्यूशन मिलते होता
1: जी।
2: तो हमने चाहिए लाभ निकाले कि जब जब जब हमने के जब कौन से मिला था टेक्निक मिला था फागे बगल से उन लोग के रिसर्च बगल से तो हमने कहीं लगातार निकलते रहे कि अब हमने सोचते अब चाहे यू पानी नहीं बढ़ सकता हाथ जो नहीं था उसी तरह नहीं छावे और लिस्ट वाला अपनी नुवो टेक्निक हमने नुपुर गाँव से करी थी।
1: जे सब कदम के पालन कर उठाई सब कदम तो आगे के भविष्य के धरला हमने के एगो ये बात के आश्वासन बा कि कोनो समस्या ऐसा नहीं खड़ा हुई।
2: ऐसा समस्या ही तनी गपशप से पास करे
1: जरूर
2: किसी भाई तपता बोलन किसी लोग की रिसर्च हुई थी बटे।
1: और प्रोग्राम के आखिर में जाते जा श्री नंदकिशोर प्रताप जी कौन सलाह देबा आप अंत में?
0: हाँ अंत में हेरे का हम बोला टेक्निक बा बहुत से टेक्निक अभी चर्चा कर ली जा बा कमती पानी इस्तेमाल करब जा हमने के जितना कुछ बा उजाई के माने कि फसल अच्छा सकेला होई हमने चाहना हमने अब जा हमने हरदम बोली ला जा हे देखा पानी हाँ आवश्यक पर हमने के चाहना ऐसा टेक्निक हमने यहाँ बा सकब जा आई हे देखा भाई जितन अच्छा बोलन अलन हमने के जो फ्लाक मॉडल पर ढेर जना आवत हो जा जाए क्योंकि एगो मॉडल बा सच्चे की जितना चीज बोलत हैं अभी कॉम्पोस्टाज मल्चिंग सोलर ड्रिप इरीगेशन कितना चीज हो जा बा सक बजा देखे और बिक्री होला है नहीं नहीं सोच बजा जा सिर्फ इबर जा सिर्फ देखे कि नहीं हो जा से बिक्री और एगो चीज बा हो जा रासायनिक पदार्थ नहीं इस्तेमाल करी ला जा
1: केमिकल्स नहीं बा
0: जी। चार साल हो गल हो जा रासायनिक पदार्थ पर सब चीज जितना बा हमने के किचन गार्डन बा हो जा हमने के अरुई बा हमने के बतात बा हमने के मयोग बा हमने के रोजेल बा हमने के एथी शेल्टर फार्मिंग बा पिताया बा सब बा हो जा मिला था। तो ऐसे बोलती जा हमने नहीं सोचा जा पानी नहीं बा था नहीं सकब जा अथी करे हमने के सकब जा फसल जो बा बरकरार सकेला रहे ई सकब जा बोले पर टेक्निक छैना अपना के
1: जरूर। और अंत में कुछ जोड़ बा जीतन जी
2: कुछ प्लांटे लोग कि हाई नुवो टेक्निकन से एप्लीकेशन करा जा और प्लांटे के तरह प्लांटे के हमने के तरह काम हो प्लांटे के प्लांटअप से हाँ नवा नवा टेक्निक चाहिए एप्लीके करके
1: जरूर। और जैसे सुनत हवा भले ही सूखा के समय आवता चलाल बा पानी के कटौती शुरू हो गल बा फिर भी फागे आप सब किसान लोग के सहयोग देवता कदम कदम पर नवा नवा टेक्निक आपके प्रस्तावित करता और आप एगो स्मार्ट फार्मिंग की ओर सकबा बढ़े और हर एगो जो नवा टेक्नोलॉजी बा ओके आप लोग अपनावत हवा जा और एकर मॉडल भी रखत हवा जा जेकर से आप लोग सकबा जा प्रेरणा लेवे और इस सूखा के जो मौसम बा ओकर अच्छा सकबा जा सामना करे। आज के इस कार्यक्रम में फजीर फजीर भाई प्रताप जी आप अइला बहुत बहुत धन्यवाद, भाई जीतन जी आपके भी बहुत धन्यवाद और हमने के जितना भी श्रोता लोग हवा जा और टीवी पर जितना कोई हमने के अभी लाइव देखत हवा जा आप सबको के आपके ध्यान खातिर धन्यवाद। आशा करत है जा ई कार्यक्रम से आपके लाभ जरूर होल होई और आप सकबा फागे जाके ई पॉम्फले भी ले लेवे और ई पॉम्फले में आप लोग के टिप्स देवल करबा कैसे इस सूखा के मौसम के सामना करेंगे।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं करुणा जी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। मॉरिशस ने जैव ईंधन और नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए एक नया रणनीतिक ढांचा तैयार किया है। इस पहल के तहत गन्ने की खोई यानी कि बागास, बायोमास, जैविक कचरे और इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल जैसी कई स्रोतों से अपनी ऊर्जा पैदा करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर मॉरिशस की निर्भरता कम करना है। इस रणनीतिक ढांचे की शुरुआत कल पोर्टवी में भारत के सहयोग से की गई। ये पहल उस फैसले के बाद सामने आई जिसके तहत मॉरिशस को बायोफ्यूल्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए पहला पायलट देश चुना गया है। हज यात्रियों की व्यवस्था करने वाले प्रत्येक ऑपरेटर के लिए न्यूनतम तीर्थयात्रियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी। नए प्रावधानों के तहत इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड की ओर से परमिट जारी किए जाने से पहले ऑपरेटरों को जमा कराने वाली गारंटी राशि से संबंधित नियम भी निर्धारित किए गए हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन अपनी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। इसमें मॉरिशस में डिस्ट्रीब्यूटेक्स नामक संस्था द्वारा की जा रही क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी गतिविधियों के प्रति लोगों को सतर्क किया गया है। एफएससी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटेक्स वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन मौजूदगी बनाए हुए हैं और मॉरिशस में कई स्थानों में भी अपनी गतिविधियां संचालित कर रही हैं। एफएससी ने मामले की जांच पुलिस को भी दे दी है ताकि इस पर तहकीकात की जा सके। आशंका है कि डिस्ट्रीब्यूटेक्स पंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम संचालित कर सकती हैं। मॉरिशस में जल संसाधनों की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। कई जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के बावजूद सेंट्रल वाटर अथॉरिटी लोगों तक पानी की आपूर्ति बनाए रखने के प्रयास जारी रखे हुए हैं। देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नदियों सहित पानी के विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में जल्द ही नई घोषणाएं किए जाने की उम्मीद है। मॉरिशस सरकार खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है। इस योजना में स्थानीय स्तर पर बीज उत्पादन, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों का विकास और शिक्षा तथा प्रशिक्षण शामिल हैं। फेगिना, जिसे नुआ 45 के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे ही एक नई बीन्स की किस्म है। इससे इसके अच्छी उपज और अधिक लौह यानी आयरन मात्रा के लिए

चुना गया है। सरकार ने इस किस्म के बीज पर 75% सब्सिडी देने की व्यवस्था की है। इसके बीज एएमबी में 130 रुपये प्रति किलो की कीमत पर उपलब्ध हैं। और विदेश में शनिवार आधी रात से कनाडा के कई सामानों पर अमेरिका

0: साथ शोक समाचार। Un passé, Johnny Ball a croisé Petite Rivière, mais 74 साल की 74-year-old श्रीमती कुंती बिकू, श्रीमती कुंती बिकू पैदाइश नाम अकालू जो मैडम व्यई से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान एम पास जोनी बॉल आ क्वाजे पेचित रिवियर से उठाकर दाह संस्कार के लिए शिबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

हो तो जरूर तुझे मालूम होगा। तालमु माफी नफसी, तू जानता है जो मेरे जी में है। वला आलमु माफी नफसिक, और मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है। इन्नक अंत अल्लामुल गुयूब, बेशक तू ही है सब गैबों का खूब जानने वाला। हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने इल्म की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की और मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया और अजमत इलाही के सामने अपनी मिस्कीनी का इजहार किया। ये हजरत ईसा अलैहि सलाम की शान अदब है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, मैंने तो इनसे न कहा मगर वही जो तूने मुझे हुक्म दिया था। यानी ए मालिक, मैंने तो इनसे वही बात कही जिसका तूने मुझे हुक्म दिया। अनेबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। यानी ए मालिक, मैंने तो इनसे ये कहा था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। वकुंतु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, और मैं इन पर मुत्तले था जब तक मैं इन में रहा। फलम्मा तवफ्फैतनी कुंत अंतर रकीब अलैहिम, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इन पर निगाह रखता था। वअंत अला कुल्लि शैइन शहीद, और हर चीज तेरे सामने हाजिर है। यहां पर अल्फाज हैं फलम्मा तवफ्फैतनी, फिर जब तूने मुझे उठा लिया। बाज लोग मसलन कादियानी, जो मिर्जा गुलाम कादियानी को मानते हैं, परवेजी जो मिर्जा गुलाम परवेज को मानते हैं, और सर सैयद अहमद खान के जो नेचरी थे, और बहुत सारी चीजों का और कुरान और हदीस की बहुत सारी बातों का इन्होंने इनकार किया। सर सैयद अहमद खान ने जो तफसीर लिखी है, तफसीर कुरान, उसे आप देखें, उन्होंने फरिश्तों का इनकार किया, जिन्नात का इनकार किया, और उन्होंने लिखा कि फरिश्ते भी इंसान हैं, जिन्नात भी इंसान हैं, जो शरीर इंसान होते हैं उन्हें जिन्नात कहते हैं, और जो शरीफ इंसान होते हैं उन्हें फरिश्ते कहते हैं। इन्होंने जन्नत और जहन्नम का इनकार किया, नबियों के मौजजात का इनकार किया, बहुत सारी चीजों का उन्होंने इनकार किया। तो इसी तरह सर सैयद अहमद खान ने और मिर्जा गुलाम कादियानी ने और मिर्जा गुलाम परवेज ने हजरत ईसा अलैहि सलाम के जिंदा आसमान की तरफ उठाए जाने का भी इनकार किया। और ये फलम्मा तवफ़ई तनी से दलील लाने की कोशिश करते हैं। तो हजरत सदुल अफादिल अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन मुराद आबादी अलैहि रहमा लिखते हैं, तवफ़ैतनी के लफ्ज़ से हजरत ईसा अलैहि सलाम की मौत पर दलील लाना सही नहीं, क्योंकि अव्वल तो लफ्ज तवफ़ा मौत के लिए खास नहीं, यानी तवफ़ैतनी का हकीकी माना यह नहीं है कि जब तूने मुझे मौत दी, ये मौत के माना के लिए खास नहीं। किसी शय के पूरे तौर पर लेने को कहते हैं, चाहे वो मौत के जरिए ली जाए या बगैर मौत के ली जाए, किसी शय को पूरे तौर पर उठा लेने को तवफ़ा कहते हैं। जैसा कि कुरान करीम में इशाद हुआ, अल्लाहु यतवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, अल्लाह ताला रूहों को उठा लेता है, पूरे तौर पर उठा लेता है उनके मौत के वक्त, और जिन्हें मौत ना आई फी मनामिहा उनकी नींद के अंदर। तो नींद में रूहें उठा ली जाती हैं। तो आप देखें यतवफ़ा ये यहां पर पूरे तौर पर उठाने के और लेने के माना में है। दूसरी बात ये कि जब ये सवाल और जवाब कयामत के दिन होंगे,

तो कयामत में जब हजरत ईसा अलैहि सलाम हाजिर होंगे तो उस वक्त तो वो वफात पा चुके होंगे, क्योंकि कुर्बे कयामत में हजरत ईसा अलैहि सलाम का नुजूल होगा और फिर नुजूल के बाद 40 साल दुनिया में रहेंगे और फिर वफात पाएंगे और फिर कल बरोज़े कयामत अल्लाह के हुजूर आप हाजिर होंगे। तो अगर लफ्ज़े तवफ़ा मौत के माना में भी फर्ज कर लिया जाए, जब भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत नुजूल से पहले इससे साबित न हो सकेगी, ये मानना पड़ेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत कयामत से पहले हुई। और ये तो हर मुसलमान का अकीदा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के तहत हर नबी ने मौत का मजा चखना है और एक आन के लिए वो मौत का मजा चखना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी मौत का मजा चखा नहीं, कुर्ब कयामत में वो नाजिल होंगे, 40 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पैगाम आम करेंगे और फिर आपका विसाल होगा। वह अंत आला कुल्ली शहीन शहीद, और हर चीज तेरे सामने हाजिर है। हजरत ईसा अलैहि सलात व सलाम बखूबी जानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हर चीज को जानने वाला है। आप अर्ज करेंगे, ए मालिक, मेरा और इनका किसी का हाल तुझसे पोशीदा नहीं। आगे फरमाया, इन तो अज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, अगर तू उन्हें अजाब करे तो वो तेरे बंदे हैं। व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मालूम है कि कौम में बाज लोग कुफर पर इसरार करते रहे और बाज लोग ईमान के शर्फ से मुशर्रफ हुए, इसलिए आपकी बारगाह इलाही में ये अर्ज है कि इनमें से जो कुफर पर कायम रहे और जिनका खात्मा कुफर पर हुआ, इन पर तू अजाब फरमाए तो बिल्कुल हक और बजा है और अदलो इंसाफ है, क्योंकि उन्होंने हुज्जत पूरी होने के बाद कुफर इख्तियार किया। और जो ईमान लाए, ए अल्लाह, अगर तू इन्हें बख्श दे तो ये तेरा फजल व करम है और तेरा हर काम हिकमत है। इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, अगर तू इन्हें अजाब करे तो वो तेरे बंदे हैं, यानी जिनका खात्मा कुफर पर हुआ, उन्हें अजाब देना ये बिल्कुल हक बजा और अदलो इंसाफ है। वइन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर तू उन्हें बख्श दे यानी जो ईमान लाए, तो बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है और ये बख्शना तेरा फजल व करम है। قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये है वो दिन जिसमें सच्चों को इनका सच काम आएगा, यानी ये कयामत का दिन है। जो दुनिया में सच्चाई पर रहे इनको इनका सच काम आएगा, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया सच्चाई पर कायम रहे, इनका सच आज कयामत के मैदान में यकीनन काम आएगा। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें रवा दवा हैं, हमेशा हमेशा इनमें रहेंगे। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है बड़ी कामयाबी। जो सच्चे हैं और सच पर कायम रहते हैं उनके लिए दुनिया में भी कामयाबी की बिशारतें हैं और आखरत में जन्नत की बिशारतें हैं और बहुत बड़ी कामयाबी की बिशारत है। फरमाया, अल्लाह इनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सब को ये कामयाबी नसीब फरमाए। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा फीहिन्ना, अल्लाह ही के

0: ये है आसमानों और जमीन और जो कुछ इनमें है सबकी सल्तनत। आसमान और जमीन की सल्तनत और जो कुछ आसमान और जमीन में है उसकी बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वहुवा अला कुल्ली शयइन कदीर और वो हर चीज पर कादिर है। सच्चे को सवाब देने पर भी कादिर है, झूठे को अजाब फरमाने पर भी कादिर है। मसला समझ लें कि अल्लाह ताला की कुदरत का ताल्लुक मुमकिनात से होता है, कुदरत मुमकिनात से मुताल्लिक होती है। जो चीजें वाजिबात हैं और जो चीजें नामुमकिनात हैं उनसे कुदरत ताल्लुक रखने वाली नहीं होती। तो आयत के माना ये हैं कि अल्लाह ताला हर अमर मुमकिनुल वजूद पर कादिर है। झूठ बोलना और इस तरह के दीगर उयूब और बुराइयां अल्लाह ताला के लिए मुहाल हैं, नामुमकिन है। इनको तहते कुदरत बताना और इस आयत से दलील लाना गलत और बातिल है। खुलासा आसान अल्फाज में ये है कि अल्लाह ताला हर चाहत पर कादिर है। इस आयत करीमा से ये समझ लेना कि अल्लाह ताला झूठ भी बोल सकता है और दीगर इस तरह के उयूब अल्लाह ताला से मुमकिन है, तो इस तरह का ख्याल गलत है। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। जिन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्होंने बहुत बड़ी खता की। वो कुरान मजीद, फुकान हमीद और अहदीस तैयबा को न समझ सके। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती नसीब फरमाए। सूरतुल माईदा मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला इस सूरत के नूर से हमारे कुलूब को रोशन फरमाए। जो नसीहतें हमने समात की, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।
1: सामीन, इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से मुखातिब हैं। गोशे नूरी में आपको हम पेश कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत कलाम।

सुबह तेबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर मक्कतुल मुकर्रमा में फैली, सरदार अब्दुल मुतल्लिब सैयदा आमिना के घर में दाखिल होते हैं। ऐसी भीनी भीनी खुशबू उनका इस्तकबाल करती है जिससे वो आज तक नाशना थी, बेखबर थे। वो इस कमरे में बाहर ही रुक जाते हैं जिसमें सैयदा आमिना पलंग पर दराज हैं। उन्हें बूढ़े सरदार के आने की इतला मिलती है तो बरका के ज़रिए मुबारकबाद का पैगाम भेजती हैं और साथ ही अंदर आने के लिए कहती हैं। जनाब अब्दुल मुतल्लिब कमरे के अंदर कदम रखते हैं। नहायत खूबसूरत चेहरा, चमकती हुई पेशानी और मुअत्तर बदन देखकर खुशी से झूम उठते हैं। फरते मोहब्बत से बच्चे की पेशानी पर बोसा देते हैं, फिर सीने से लगाए हुए बैतुल्लाह में आ जाते हैं और वहाँ थोड़ी देर तक दुआ मांगने के बाद वापस

बेशुमार नाम आए और गुजर गए, मगर एक नाम ऐसा है जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने खुद बुलंद फरमाया, वरअफाना लका ज़िक्रक, और हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। आज 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद दुनिया के हर ख़त्ते में अजान की आवाज़ बुलंद होती है, मस्जिदों में दरूद पढ़ा जाता है, घरों में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान होती है, और करोड़ों दिल एक ही नाम पर धड़कते हैं, और वो है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नाम नहीं, ये ईमान की पहचान, मोहब्बत की ज़बान और दिलों

हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिसल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। सामीन, गुलह अकीदत प्रोग्राम का मुकर्रर वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनवर को रुख्सत की इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।

0: MBC रेडियो 24 आवर्स अ डे।
1: आइए सुनते हैं कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सीबी रिश्ते के रहने वालों को विशेषकर रिश्ते रोड, सुशील लेन, शिवाला रोड, मुस्लिम सिमेट्री रोड, स्कूल लेन तथा रेजिडेंस रोमा के रहने वालों को सूचित करता है कि रविवार 23 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ सीबी सेंथक्वा के रहने वालों को विशेषकर रुई निकोले, देबुशे रोड, मारियामेन टेम्पल, आलेता मारें और रेजिडेंस पोल टोरो के रहने वालों को सूचित करता है कि रविवार 23 अगस्त 2026 को दिन के 12:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ सीबी

0: बानान और क्लूनी के रहने वालों को सूचित करता है, विशेषकर ओब्ले, ओब्ले पोल्ट्री CWA, ओब्ले टोस्टे MTS बानान, CWA पंपिंग क्लूनी डोमेन डे ला ग्राव हाइड्रोपोनिक बीमानिक और रूट रॉयल क्लूनी के आसपास के रहने वालों को सूचित करता है कि मंगलवार 25 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सभी मरम्मत कार्यों के बाद बिना किसी पूर्व सूचना की बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग
2: बाला नंदन
1: MVC रेडियो।

संगीत प्रेमी श्रोत्यानो, चला आज का शनिवार अधिक मनोरंजक करो या झगामगा या अप्रतिम मधुर गाण्यांनी।

2:15 बज चुके हैं। जहाँ सैटरडे है 22 अगस्त, शनिवार का दिन 22 अगस्त 2026। नमस्कार जी, प्रणाम, गुड आफ्टरनून, आदाब आप सभी को। शनिवार की इस खूबसूरत दोपहर में आपका दिल से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा संगीत कार्यक्रम आपकी पसंद में। और मैं हूँ देविना और आज फिर लेकर आई हूँ ढेर सारी मोहब्बत, मुस्कुराहटें, यादें और सबसे बढ़कर आपकी पसंद के खूबसूरत नगमे। कहते हैं ना, संगीत वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल की बात कह जाता है। तो आज की दोपहर रखिए अपने नाम, अपनों के नाम, क्योंकि गीत होंगे आपकी पसंद के, यादें होंगी आपकी और आवाज़ होगी आपकी अपनी रेडियो की साथी की, देविना

और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस पर। तो चलिए मुस्कुराइए, आवाज थोड़ी बढ़ाइए और शुरू करते हैं आपकी पसंद प्रोग्राम इस बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। आजकल ये गाना बहुत ट्रेंडिंग है क्योंकि फिल्म है आवारापन, और आवारापन डो हाल ही में रिलीज हुआ है और लोगों को बहुत पसंद आया, तो लोग इस आवारापन नंबर वन को बहुत याद कर रहे हैं। और गाना ही कुछ ऐसा है, तेरा मेरा रिश्ता है पुराना, ये आप सभी लिसनर्स के लिए आपकी पसंद प्रोग्राम आप जानते हैं 4028085 पर आप कॉल कर सकेंगे और 5251700 पर आप अपने मैसेजेस भेज

जो बेशक आपका और हमारा रिश्ता तो पुराना ही है, दिल का है, संगीत का है, और जहाँ प्यार ही प्यार हो वहाँ है हमारा रिश्ता। बस आपके साथ के लिए धन्यवाद। और बहुत से लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, एक एक करके हम सभी के कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, और बाद में देखेंगे बहुत से मैसेजेस भी आ गए हैं। और वैसे दोस्तों, आज है शनिवार का दिन और बहुत से लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, गाड़ियाँ हैं चारों ओर, बसें हैं, और साथ में आजकल तो श्रावणी की पूजा हो रही है, सो बहुत से लोग गंगा तालाब की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ लोग पोर्ट्रेस की ओर। तो आप जहाँ भी हो, कुछ लोग मॉल्स में जा रहे हैं, तो बस आप जहाँ भी हो, आपका जो शनिवार है, सैटरडे, हमारे साथ अच्छी तरह से बिताए, यही हमारी है दिली तमन्ना। और बहुत से लोग मूड शॉपिंग कर रहे हैं, मूड में आ गए हैं, क्यों? क्योंकि शॉपिंग कर रहे हैं राखी के लिए। तो रक्षाबंधन वाला जो त्यौहार है ना, वो मना रहे हैं नेक्स्ट वीक को, और अभी से ही सभी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, उपहार की खोज में, भेंट की खोज में, क्या क्या बनाना है भैया के लिए, क्या क्या बनाना है दीदी के लिए। तो बस सभी लोग मस्ती में मूड में छाए हुए हैं। सो बस रक्षाबंधन वाले जो गाने हैं, इनकी मांग आ रही है अभी से ही, सो हम एक दो गाने चलाएंगे आपके लिए। और ऐसे में ये गाना जो है, अगला गाना जो है, ठियोले के धीरज जी के लिए, और अदालत मूवी का गाना है, आप सुनना चाहते हैं। और ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं अपनी बहन खुशबू के लिए, जो फ्रांस में है, उनको बहुत याद कर रहे हैं। आप राखी नहीं मना पाएंगे उनके साथ, मगर वो जो है आपके दिल में है, आपकी अब हमेशा आप उनके लिए दुआ मांगे या प्रार्थना कीजिएगा, उनके लिए हमेशा प्यार भेजिएगा, उनको फ़ोन कीजिएगा, उनको कॉल कीजिएगा। बस भाई बहन का प्यार जो है हमेशा हमेशा बनी रहे। और जितने लोग रक्षाबंधन मनाने वाले हैं या अपने भैया को याद कर रहे हैं अभी से ही, सो बस आपके लिए ये गाना, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ हम भेज रहे हैं। हालाँकि वो कुछ दिन है जब ये त्यौहार मनाने वाले हैं, तो बस ये गाना आप सबों के लिए, गुड़िया जैसी बहना है, जी हाँ, यशदास जी की आवाज़ में, साथ में है उषा मंगेशकर।

जहाँ सभी भाई बहन जो हैं सलामत रहे, उनका प्यार हमेशा बनी रहे बस, और आशीर्वाद आप सभी को, प्यार है आप सभी को। तो बस रेडियो मॉरिशस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। और शनिवार की दोपहर है, न कोई जल्दी न कोई भागदौड़, बस थोड़ा सा सुकून और ढेर सारा संगीत। और किसी के लिए कोई गीत प्यार की याद में, किसी के लिए दोस्ती की निशानी, तो किसी के लिए बीते हुए सुनहरे दिनों की तस्वीर। और यही तो खूबसूरती है हिंदी फिल्मों की, जो गाने हैं हर गीत के साथ एक कहानी जुड़ी होती है। तो आइए आपकी फरमा

0: ख्वाहिशों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक खूबसूरत नगमा, और जैसे कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, और ये जो गाना है फिल्म है खान दोस्त 1976 की मूवी मन्ना दी जी की आवाज़ में मेरी जिंदगी मुझ पर रोई, और ये गाना मांग रहे हैं यहाँ पर रेस्कालिया के अली जी, आपको आदाब, और गाना जाएगा उनके खास दोस्त बलराज, हाँ जी बलराज के लिए, बेलगोज के हैं, और सभी जो सीनियर सिटीजन हैं उन सबों के लिए।
1: मेरी जिंदगी मुझ पे रोए।
0: एक्चुअली ये होगा बालचंद जी के लिए।

जहाँ 2:34 हुए हैं और अगले गाने की ओर बढ़ते हैं और अब बारी है उन गीतों की जिन्हें सुनते ही दिल कहता है काश ये पल यहीं ठहर जाए। वैसे जिंदगी तो इम्तिहान लेती ही है, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत दुखी होते हैं, कभी कुछ पा जाते हैं, कभी कुछ खो देते हैं, बस यही तो ज़िंदगी है। और प्यार जो है कभी शब्दों में नहीं समाता, क्योंकि कभी आँखों में दिखाई देता है और कभी किसी गीत में सुनाई देता है। अगर आज का कोई गीत आपके दिल के बेहद करीब है तो समझ लीजिए ये गीत सिर्फ गीत नहीं, आपकी कहानी का एक खूबसूरत पन्ना है और गाना आपके लिए। तो चलिए सुनते हैं इब्राहिम जी की फरमाइश पर, इब्राहिम जी जो पोट्री से हैं और बस हमारा साथ देते रहते हैं हमेशा। तो डॉक्टर कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन कल्याणपुर और साथी कलाकारों की आवाज़ में सुनते हैं जिंदगी इम्तिहान लेती है फ्रॉम द मूवी नसीब।

एक्चुअली जो गाना बजाए इससे पहले मुबारक हो तो बस यहाँ पर डेडिकेट कर रहे हैं विश्वानी दुमन जी की ओर से, वाकवा से है, उनके जो पोते हैं अवतार, उनका जन्मदिन है, शुभकामनाएं मामा दीपा, भाई आहान, नानी विश्वानी, गीता, इंदिरा, शारदा, नीला, प्रतिभा, साथ ही शोभा, अमृता और सभी परिवार और सभी फ्रेंड्स की ओर से बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, एक गीत हम ये चलाया, तो हैप्पी बर्थडे एंड बी हैप्पी ऑलवेज़।

हाँ जी, आप सबों की फरमाइश पर कुछ गाने हम ढूंढ रहे थे, बस अभी के लिए हरियाली और रास्ता मूवी का गाना महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में, और इस गाने की मांग की है नुवेल फ्रांस के कुल एन जी, और ये गाना सा जाएगा जो उनके जो परिवार के लिए और साथ में जितने लोग उनके साथ काम करते हैं रात को, सिक्योरिटी गार्ड सभी को आपको है सलाम, आपको है नमस्कार, आपको है बोंकुहाश। तो कुलेन जी की ओर से आप सबों के लिए, सभी लिसनर्स के लिए।

जहाँ दिखाने के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के समाचार की ओर और इसके बाद फिर से आपके डेडिकेशन, आपके रिक्वेस्ट हम यहाँ पर जारी रखेंगे। तब तक के लिए कहीं मत जाइए, अगर चाय पी रहे हैं या कुछ बिजी होंगे तो बस हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद और एंजॉय दिस आपकी पसंद प्रोग्राम।

0: गीता जी से सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आइए उनको सुनते हैं। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को हमारा नमस्कार। आज सुबह से भंजन ग्रुप के 37 फिलिंग स्टेशनों पर नया लोगो फिलिन दिखाई दे रहा है। ब्रांड की नई पहचान का अनावरण कल मापू स्थित लावोचो जिसिखो में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया। भंजन ग्रुप ईंधन वितरण नेटवर्क का स्वामित्व रखने वाली पहली 100% मॉरिशन कंपनी है। इसने अपनी सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल के माध्यम से नवंबर 2025 में इंडियन पेट्रोलियम मॉरिशस का अधिग्रहण करके इस क्षेत्र में प्रवेश किया। आज रोजिल स्थित सर गायतोंजीवाल स्टेडियम में फायर फाइटर्स डे के अवसर पर 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों को सम्मानित किया गया। मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज द्वारा आयोजित एक समारोह में कई महानुभाव, दमकल विभाग के मुख्य अधिकारी और सम्मानित दमकल कर्मियों के परिवारों की उपस्थिति में उनकी वर्षों की सेवा, समर्पण और अनुकरणीय आचरण को मान्यता दी गई। इस शनिवार 22 अगस्त से हरेक संचालक के लिए हज यात्रा

0: यात्रियों की न्यूनतम संख्या 50 से बढ़कर 100 हो जाएगी। ये उपाय इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड बोर्ड की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद द्वारा कल अनुमोदित नए प्रावधानों में शामिल हैं। संचालकों को इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड से परमिट प्राप्त करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होगी। ये प्रावधान इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड पिलग्रिमेज अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026 में शामिल हैं। और विदेशी खबरों में, चीन ने इस साल विदेशी पर्वतारोहियों के लिए माउंट एवरेस्ट के उत्तरी हिस्से सहित तिब्बत की सबसे ऊंची चोटियों के रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए हैं। चीन द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध के कारण दुनिया भर के पर्वतारोहियों के अभियान और बुकिंग रद्द करनी पड़ी है। चीन द्वारा ये प्रतिबंध तिब्बत के शिगात्से के पास 52 सेकंड तक चले एक आतिशबाजी की घटना के बाद शुरू हुई जांच और विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को परमिट जारी करने में हुई भ्रष्टाचार की जांच के बाद लगाया गया है। इसके साथ है संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। पिछले में बेलिया में 84 साल की 84-year-old की श्रीमती देवंती रतिया पैदाइश नाम हलकोरी और जो कृष्णावती से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 उनके बेटे राजा राम रतिया के घर पिछले में बेलिया से उठाकर बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 9:30 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस।

दिन बजकर 3 मिनट हुए हैं, आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं। पर इससे पहले चलिए सीबी की ओर से कम्युनिके सुनिएगा। सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि जरूरी मरम्मत कार्य के चलते कल जो है रविवार 23 अगस्त 2026 को सवेरे के 8:30 बजे से लेकर सुपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। ये होगा पोर्ट्रिस के इन इलाकों में रू राहुल रिवे, डॉक्टर वन शिपो बोगोद, ला गेते, सेंट जेम्स, टेने, सेंट जॉन, हेनरी ले सिडाने और नाबाहू सुलीम, साथ में मेयर बॉटलेमी के इन इलाकों में।

चलिए देखते हैं और कहाँ पर ये होगा। और आज जो है शनिवार 22 अगस्त, वहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई गई थी वायाघोद, सुचिस होद और बोंबो होद में। सो जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे बिजली की सप्लाई फिर से जारी की जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो फिर से आपके पसंद प्रोग्राम को जारी रखते हैं। जितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं अभी से ही, और 2:15 से हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, हर रविवार को होता है 2:15 से लेकर 4 बजे तक। और आज है देवीना आपके संग और बहुत प्यारे प्यारे से गाने हम बजा रहे हैं, कुछ नए कुछ पुराने। अभी के लिए आपको ले चलते हैं दूर वहाँ पर जब आप प्यार ही प्यार हो, और इसके बाद अगली फरमाइश की ओर बढ़ेंगे। आप सभी को को हमारा प्यार भरा जो है गाना जो है पेश कर रहे हैं, यहाँ पर है अनुराधा पोडवाल साथ में हरिहरन साहब की आवाज़ में, और हमारा साथ देते रहें। बस फिर मिलते हैं अभी।

जी हाँ, लीला जी का फ़ोन आया था बाशरे से और वे शोक में डूबे हुए हैं। उन्होंने अपना जो नीफ्यू है खोया है और वे रिवेजपुर रहते थे और उनकी याद में उनकी जो माता जी हैं तारा जी, उनके जो पापा थे दानन हैं दानन जी, सो बस वे बेटे की याद में ये गाना मांग रहे हैं चकोरी परिवार की ओर से। साथ में लीला जी भी हैं, सो बस आप सभी को बों कुराज कहेंगे। और जितने लोगों ने किसी को खोया है हाल ही में या बहुत पहले, याद सता रही है बस ये गाना आप सबों के लिए।

जहाँ ये चुगाना है जिंदगी आ रहा हूँ मैं, इसमें नाम जोड़ेंगे यहाँ पर ट्रेवलर के दीदी ललिता और कुशला फैमिली के लिए। हाँ जी, सुदेवी है, वाकवा की है, ये मांग रही है दीदी सुनीता के लिए। शोभा है, देवीना, माला, बिंदु, मालेंगा के ऑल राम रतन परिवार जो है, साथ में राम गोलाम कुवारो रघुबर जालू फैमिली, और फिल्म था मशाल। और ये गाना आपको पसंद आया आई होप। और अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। अगला गाना वैसा जो है लता जी की आवाज़ में, फिल्म है गूंज उठी शहनाई, और इस गीत की मांग की है श्यामा रघुनंदन जी ने खोंगुप से हैं, खास तौर पर वीना रामफूल जी के लिए। उनको ये गाना बहुत पसंद आता है, साथ में उनकी जो दूसरी सहेली है विश्वानी दुखी, ऑल्सो फॉर नंदिनी ओकलू जी, साथ उनके जो भाई जयप्रकाश, उनकी जो भाभी है नम्रता, और उनके न्यू फ्यूज़ हैं, और सभी उनके जो परिवार हैं।

0: 819 kilohertz. This is Radio Marxist.
1: हरे कांच की चुड़िया इस फिल्म से लिया गया गाना मांग रही है सावित्री राम गुलाम और वाकवा वो खुशी की जो है ये गाना नहीं है यहाँ पर जो पंछी रे वो पंछी इसी फिल्म का गाना आपके लिए और सभी एमबीसी स्टाफ के लिए थैंक यू हमारे लिए स्पेशली थैंक यू और साथ में जितने लोग फ़ोन कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं मगर सभी के गाने हम तो नहीं चला पाएंगे क्योंकि समय की कमी होगी और नाम जोड़ते हमेशा की तरह साथ देती रहती है हमारा यहाँ पर है फिनिक्स से रेहाना जी ये गाना आपके लिए ऑल्सो ये गाना हम मोहताबा की कमला जीनू के लिए साथ में जो उनकी सहेली हैं सीता जी उनकी जो नाती हैं रायांश खास आरोही गुड़िया और दिनू रामधनी परिवार के लिए ये गाना

जी हाँ, जो गाना है अभी विद्यानंद जी की ओर से मेबर्ग से है, उमंग फिल्म का गाना है बाबुल कौन घरी, और सुहंती जी के लिए राजीव अमित शीतल, आशु कृतिका स्वीति हरवेश उनके खास दोस्त विष्णु कचाधर के लिए, साथ में बिंदु काली चयन आपके लिए। वैसे साढ़े तीन बज चुके हैं और 30 मिनट बाकी हैं हमारे प्रोग्राम में। हमारा जो प्लेलिस्ट है लगभग फुल हो चुका है, और अगर आप डेडिकेशन करना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स यू आर वेलकम।

लता जी की आवाज़ साथ में महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में ये जो गाना है गायत्री जी ऑफ सेंट पियर, और वे कह रही हैं चाह है भाई बहन की सबकी, बस कभी कभी भाई नहीं रहा, भाई बहन नहीं रही, फिर भी गायत्री जी आप अपने भाई की याद में, ये गाना दुल्हन एक रात की मूवी का है और ख़ास उनकी आपकी जो बहन है अमृता के लिए भी, उनके सभी बच्चों के लिए, भाभी है मीरा, गिरिशा मेधा, कमलेश, सुधा और सुधीर के लिए, और सभी जो लिसनर्स हैं भाई बहन को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं किसी अपने को, ये गाना आपके लिए है।

शमशाद बेगम और साथ में तरत महमूद साहब की आवाज़ें, और साथ में ये जो गाना है ना सैपिया की लावेनिया की, आफे जी आपके लिए आदाब जी, राइसा के लिए आपकी भाभी, और सबेरुन जो हैं ये गाना आप सबों के लिए।

हैप्पी बर्थडे टू आप सभी को जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं. आज सैटरडे 22 अगस्त. आपकी जिंदगी में प्यार ही प्यार हो. बेस्ट विशेस फ्रॉम द होल टीम ऑफ रेडियो मॉरिशस MBC. और साथ में ये गाना जाएगा मेरा भाई धर्मिया जी मोदालबिया की हैं, उनकी जो मानस वीत बाया रघु उनकी जो नातिन है उनका बर्थडे था हाल ही में. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटी. और साथ में ये गाना सभी की ओर से आशीर्वाद है, बधाइयाँ हैं फ्रॉम पाडिया एंड रघु फैमिली. साथ में खंबा की लीलो जी, आज है आप

कि बहन कालू का जन्मदिन। तो बस कालू जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से, साथ में कहेंगे कह रहे हैं आपको हैप्पी बर्थडे विशेस रेडवे फैमिली, रामदया फैमिली, साथ में कटवारू और कालीचरण फैमिली। नाम जोड़ते हैं बर्थडे में, आज है क्या है, हाँ जी पोए शहनाज, पुपा इसरा एंड सभी रिलेटिव्स की ओर से कौपा से हैं, वे विश कर रहे हैं निफ्यू इक्लास को हैप्पी बर्थडे। और जितने लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को, बी हैप्पी ऑलवेज, ये गाना आपके लिए।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ,
1: जहाँ 3:49 हुए हैं और ये रहा अगला गाना, वो देखा देखो जलाघर किसी का, फिल्म है अनबर और इस गीत की मांग की है गायत्री जी ऑफ नोवेल फॉन्स, जाएगा अजय के लिए, मामी कल्याणी मोहन के लिए, बोलेटिया मेबर्ग और साथ में शकुंतला, हाँ जी गीता बाई और मोताबा भाभी है शकुंतला, और सबके लिए साथ में ये गाना जाएगा ट्रियोले के बंधु फैमिली के लिए। और ऐसे ही एक और आखिरी गाना रह जाएगा, जितने लोग के कोर्स हमने ले पाए, कुछ मैसेजेस हम पढ़ रहे हैं, बस सबके गाने नहीं बजा पाएंगे, सो सॉरी, बगैर सबको आप हम याद करते हैं और ये जो सभी गाने हैं आपके नाम।

दिन भर का तिरमत तिरपन मिनट हुए हैं बस अभी एक अगला गाना अंतिम गाना रह चुका है. इससे पहले ये कम्युनिकी सुनिएगा सीबी की ओर से. ये होगा लालमाची के जो पेरीमेट में है, नेहरू रोड, ब्रांच रोड, जीरोडे रोड, महात्मा गांधी रोड, बस देव सुंदयाल रोड, स्टेशन दे पुलिस. वहाँ पर कल जो है 23 अगस्त 2026 को सवेरे के 8:15 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे फिर से बिजली की सप्लाई जारी कर दी जाएगी. ये था सीबी की ओर से एक कम्युनिके और सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है. वैसे समय कैसे हो गया पता ही नहीं चला. शनिवार की इस प्यारी दोपहर में हमने साथ सुने प्यार के गीत, यादों के नगमे और आपकी पसंद की धुने. लेकिन महफिल अभी खत्म नहीं हुए हैं मेरे दोस्त, क्योंकि जाते जाते एक और खूबसूरत गीत तो बनता ही है. मेरी तरफ से उन सभी श्रोताओं के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान रहे, आपके दिल में संगीत रहे और आपकी ज़िंदगी में हर दिन कोई ना कोई खूबसूरत धुन बजती रहे. और आपकी पसंद प्रोग्राम की महफिल को विराम देते हैं. याद रखिएगा, गीत खत्म हो सकता है संगीत नहीं, महफिल खत्म हो सकती है यादें नहीं. और आपका साथ यूं ही जुड़े रहे और शनिवार की इस खूबसूरत दोपहर को हमारे साथ बिताने के लिए दिल से शुक्रिया. मैं हूं देविना, फिर मुलाकात होगी कल और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर प्रोग्राम के दौरान. और हमारा आप बात करेंगे और ऑफकोर्स गीत सुनेंगे ही, 70s, 80s, 90s वाले गाने. तो नई फरमाइशों के साथ, नई यादों के साथ और ढेर सारी खूबसूरत गीतों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे. 4 बजे के समाचार के बाद आप सुन पाएंगे डॉक्टर श्रीमती अलका दनपत के साथ साहित्य दर्पण प्रोग्राम. और जाते जाते ये गाना हरीश बाबू, हमारे संगीत के हमसफर, आपके नाम बाजीगर मूवी का गाना है आपके खास अनु के लिए. साथ में ये गाना जाएगा ज्योति, जो है शत्रु बिनागस से हमेशा मैसेज करती हैं, हमेशा सुनती रहती हैं. थैंक यू सो सो मच. आशनी रेखा, सुरेखा और माधव फैमिली को डेडिकेट करती हैं. तो बस ऐ मेरे हम सफ़र, शुक्रिया मेहरबानी आपके साथ के लिए. बस ये गाना, ढेर सारा प्यार, लट्स ऑफ लव.

ओहो, ये गाना मैसेज हमने मिस कर दिया। बस आज जो है यहाँ पर एक एनिवर्सरी है यहाँ पर, जी हाँ, 22 अगस्त को 22 इयर्स हुए हैं वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ फरहानाज़ एंड राजा ऑफ वालेंटिना फिनिक्स। तो सनरायान डॉक्टर फदिया मितुआ और ऑल्सो मम रुजीदा पापा रिशाद फरदीन सुमाया फारिहा शयान और रिवेदांगी, आप सभी को जो है हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और ये गाना बनू फैमिली और मितुआ फैमिली की।

0: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण, प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की।
1: नमस्कार श्रोताओं, साहित्य दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप सब प्यारे प्यारे गाने सुनने के बाद हमसे जुड़ चुके होंगे और आज हम बात करेंगे तुलसी जयंती की। अभी पिछले सप्ताह आपने या इसी सप्ताह तुलसी जयंती मनाई और तुलसी जयंती जब हम मनाते हैं तो एक और महाकवि तुलसी को याद करते हैं। इतना बड़ा साहित्यकार कि लोगों के दिलों में ऐसा बैठा कि आपके पास किताब हो ना हो, मानस हो ना हो, फिर भी आप कम से कम 8-10 पंक्तियां तो सुना ही सकते हैं। तो श्रोताओं, ऐसे महाकवि को, इतने बड़े लेखक को, इतने बड़े रचनाकार को कैसे छोड़ा जा सकता है। और उनका महाकाव्य रामचरितमानस, यह तो अपने आप में मानो हमारे साहित्य का एक बहुत बड़ा मापदंड, मानदंड, जीवन दंड बन गया। जानते हैं ना, हमारे पूर्वज भी जब यहाँ पर आए तो क्या लेकर आए थे, यही सब कुछ पंक्तियाँ, कुछ गायन की चीज़ें, लेकिन ये मानस उनकी ताकत थी। और सबसे बड़ी बात, राम कथा जिसको तुलसीदास ने लिया इसमें, वह तो पूछिए।

यही मत, यहाँ तक कि वे इतना साधारणीकरण राम कथा से कर बैठे कि मॉरिशस को मारीच टापू कहते थे, कि जैसे मारीच ने धोखा दिया राम को, ऐसे ही हमको भी मारीच टापू पर धोखा देकर लाया गया है। ठीक मारीच भी स्वर्ण मृग बनकर आया था, ठीक ऐसे ही हमको भी कहा गया कि सोने का हिरन सोना मिलेगा पत्थर उल्टोगे तो बस वही लालच वही सब। और जैसे राम ने इतने वर्ष दुख में बिताए लेकिन लौटे ना अयोध्या, ठीक ऐसे ही हम भी अपना जो अनुबंध है इसको पूरा करके लौट सकेंगे। आप सोचिए, जिनके पास कुछ नहीं था, केवल एक गठरी थी अपनों से बिछड़कर, जिन्होंने पहली बार समुद्री जहाज की यात्रा की, और बिहार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने तो समुद्र कभी देखा भी नहीं होगा, पहली बार उन्होंने वे कठिन रातें समुद्र में समुद्री जहाज में बिताई होंगी, कितना भयंकर लगा होगा। तो श्रोताओं, तुलसीदास की रामचरितमानस न केवल भारत देश के लोगों की ताकत बल्कि उन सब गिरमिटियों की ताकत बनी जो फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, गयाना, त्रिनिदाद भी पहुँचे। और तो और, आज भी कोई दुख हो सुख हो भगवान राम का नाम ही याद आता है। तो तुलसी जयंती जब हम मनाते हैं तो एक और रामचरितमानस और तुलसी मानो दोनों एक साथ ही मिल जाते हैं। लेकिन तुलसीदास का जीवन भी कोई सहज नहीं था। बचपन में उनको माता पिता ने छोड़ दिया यह कहकर कि अशुभ नक्षत्र में ये पैदा हुआ है। बस ये नन्ना बालक मधुकरी मतलब भिक्षा मानकर सूखे रोटी के टुकड़े उसको जो मिलते थे उसी से अपना जीवन चला रहा था। पर जिसके जीवन में परिवर्तन आना होता है, जिसने कुछ विशेष करना होता है, उस पर ईश कृपा बनी ही रहती है। इस बालक को भी गुरु मिले और जब रामानुजाचार्य मिले इन्हें तो बस जीवन बदलने लगा, राम नाम मिल गया उनको। और उनके जीवन की बहुत सारी कहानियाँ भी मिलती हैं कि जब उनकी पत्नी रत्नावली बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी और तुलसीदास उससे बहुत प्रेम करते थे और प्रेम आकर्षण का था, और तुलसीदास की पत्नी अपने मायके गई थी और ये समय नहीं बिता पा रहे थे, तो दूसरे ही दिन इतनी बारिश इतने तूफान में उसके मायके पहुंच गए। इतना अंधेरा था, रात का समय था, लगा कि दरवाज़ा कौन खोलेगा, तो क्या किया, एक रस्सी सी लटक रही थी, सांप था बल्कि, रस्सी समझ के उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए। और जब वहां पहुंचे तो रत्नावली देख के हैरान हो गई। तब उसने कहा कि इस देह में इतनी प्रीति, अस्थि चर्ममय देह में तामे ऐसी प्रीति, जो यह प्रीति रघु

देह में तामे ऐसी प्रीति, जो ये प्रीति रघुवे कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा और रामचरित मानस तो मानो मुकुट पर सोने का सुहागा है। चलिए इस गीत के बाद हम आपसे फिर जुड़ेंगे।

0: श्रोताओं, सचमुच जब हाथ बढ़ाते हैं साथी तो बड़े बड़े सागर पर भी पुल बंध जाते हैं। कैसे ना याद करें, एक छोटी सी गिलहरी ने भी राम जी की मदद की थी और राम जी ने प्यार से उसके ऊपर जब हाथ फेरा तो कहते हैं कि वह तीन लाइन वही आशीर्वाद की उनके ऊपर है। हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ने लगे हैं, तो चलिए हम एक श्रोता को लेते हैं, देखते हैं वे हमें क्या कहना चाहते हैं। हेलो।
1: हाँ बेटी।
0: हाँ नमस्ते नानी जी, कैसी हैं?
1: नमस्ते अमर नातिन जी।
0: आपका रेडियो सेट ऑन है, कृपया उसे बंद करें।
1: हाँ,
0: आप बोलिए।
1: नातिन से और रामायण से
0: जी,
1: श्री गुरु से बहुत बहुत खुशी है।
0: हाँ बिल्कुल, आपके पास तो बहुत बातें हैं सुनाने के लिए।
1: अच्छा विषय रख ले, राम के विषय,
0: जी जी,
1: तुलसीदास के विषय।
0: जी
1: तुलसीदास जब रचना रचे लगलन तो सबले पहले श्री गुरु चरण सरोज रजा
0: निज मन मुकुर सुधारी,
1: तो ये पहला बोलन उनका पहला बोल के रामायण छापे के शुरू कैलन।
0: जी
1: रामायण नियर ग्रंथ बड़ा ग्रंथ तो नहीं बा, बहुत कुछ जितना हकीकत राम के रहल, राम लक्ष्मण सीता के जितना हकीकत सब चारों भाई के, उनका जन्म से शादी तक ले सब सब संभार दिलन
0: बिल्कुल
1: तुलसीदास। तुलसीदास ने कभी तो नहीं रहा।

0: हलकोई। तब
1: बहुत सुंदर।
0: जब राम और लक्ष्मण और सीता जब बन के जाई लगलन जा,
1: हाँ
0: हाँ जब बन के जाई लगलन जा, तब माथा से उनका कौशल्या माने जाना थलन जे बन के बनवास जाई के लोग के मिलल बा। तो गैलन माँ से दर्शन करे, जब माँ से दर्शन कैलन तब माँ तो बहुत रोदन कैलन सुन के। तब एगो भजन गैले हमन एके लाइन बोल दैला।
1: जी जी एक ही लाइन, बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: बन के चलेला रघुराय हमारे प्रभु, बन के चलेला रघुराय। ई कौशल्या माँ बोले हमन।
1: जी,
0: हाँ, के बन के चलेला रघुराय हमारे प्रभु, बन के चलेला रघुराय। के कर बिना मोरा सुना अजोधिया, के कर बिना चौपाई, के कर बिना मोरा सुना रसोइया, के मोरे भोजन बनाय हमारे प्रभु, बन के चलेला
1: बहुत
0: रघुराय।
1: सुंदर नानी जी, बहुत
0: राम
1: बहुत
0: बिना
1: धन्यवाद।
0: मोरे सुना अजोधिया, लक्ष्मण के बिना चौपाय, सीता के बिना मोरे सुना रसोइया, के मोरे भोजन बनाय हमारे प्रभु, बन के चलेला रघुराय।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नानी जी, इतना सुंदर आपने हमें सुनाया, बहुत सुंदर। सचमुच माँ का तो दर्द वही है कि मेरी रसोई कैसे चलेगी जब पुत्र ही मेरे पास नहीं होगा। तो हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं, उनको भी हम लेते हैं। हेलो,
0: हेलो अलका बहन,
1: नमस्ते
0: नमस्कार।
1: जी, नमस्ते, कैसी हैं मैडम?
0: हाँ मैं ठीक हूँ, बस आप फोन करो तो ठीक हो गई। जब
1: जी,
0: आज आती है तो मैं जानती हूँ विषय तो बहुत जबरदस्त होता है, रोचक
1: तुलसी
0: होता है।
1: जयंती मनाई तो कैसे
0: जी
1: छोड़
0: जी
1: दें
0: जी
1: तुलसीदास जी
0: जरूर।
1: को।
0: हाँ तो मैं जल्दी जल्दी अपने विचार रखती हूँ,
1: जरूर
0: संक्षेप में,
1: जरूर
0: बहुत
1: जरूर।
0: संक्षेप में रखूंगी क्योंकि सभी आएंगे। तो
1: हाँ
0: मुझे
1: बिल्कुल।
0: पता है मॉरिशस जो है रामायण का देश है, तो सभी
1: हाँ
0: इसका लाभ उठाएंगे
1: जी जी
0: रामायण सुनाने के लिए,
1: जी
0: रामचरितमानस के दोहे के वाले। लेकिन मैं उसके रत्नाकार के बारे में कुछ कहना
1: बहुत
0: चाहती
1: धन्यवाद, बहुत अच्छा सुनाइए।
0: हूँ। जी तो क्या है कि रामचरितमानस उन्होंने लिख कर, वो तो खुद अमर हो ही गए गोस्वामी तुलसीदास जी, लेकिन हमारे देश को भी अमर बना दिया है बहन जी।
1: हाँ, आज मॉरिशस पहचाना जाता है,
0: जी,
1: राम
0: पूरे
1: कथा
0: विश्व
1: होती है
0: में, सिर्फ
1: वहाँ।
0: मॉरिशस, सिर्फ मॉरिशस ही में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हम बोल सकते हैं कि मॉरिशस का नाम जो लिया जाता है तो रामचरितमानस की ही वजह से। और ये सब श्रेय जाता है हमारे पूर्वजों को,
1: जी
0: मैं उनको सत सत नमन करती हूँ। जब हमारे दादी नानी आए थे तो बगल में रामचरितमानस और हनुमान चालीसा आदि लेकर आए थे, इसकी
1: जी जी
0: बदौलत आज हम सब फल फूल रहे हैं और इसका इतना प्रचार प्रसार, घर घर में रामायण पाठ होता है। तो मैं
1: जी
0: जल्दी में शब्द सुनाती हूँ जो
1: हाँ
0: विषय
1: जरूर
0: में।
1: जरूर।
0: वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के जो जन्म है उनके मतलब वो तो मतभेद है कि जन्म कहा जाता है सन 1837 को और मृत्यु 1623 ईस्वी को हुआ था।
1: जी
0: ये इसमें भी मतभेद है। माता पिता आत्माराम थे और माता हुलसी।
1: जी
0: गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि है। उनका रामचरितमानस संसार के सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथों में अत्यंत ऊंचे स्थान का अधिकारी है। यह ग्रंथ प्रायः प्रत्येक हिंदू के घर में सम्मान से रखा और पढ़ा जाता है। हिंदू धर्म को उसका वर्तमान रूप देने में इस ग्रंथ का सबसे बहुत बड़ा भाग है। रामचरितमानस में वर्णित हिंदू धर्म ही आज हिंदुओं का धर्म माना जाता है। जो जो धर्म उसमें बताया गया है यही हम उसको मानते हैं।
1: जी
0: तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बहुत सरल सहज भाषा में, अवधि लोक भाषा में उन्होंने
1: हाँ, बहुत
0: लिखा
1: बड़ी
0: है।
1: चीज थी ये। जी
0: जी, क्योंकि संस्कृत में तो वाल्मीकि की रामायण की रचना हुई थी, लेकिन इन्होंने इसको लोक भाषा, जो भाषा वो अवधि लोग बोलते बोलते चालते थे उस समय अयोध्या में, उसी भाषा में। तभी तो ये अभी तो जगत में, ये सिरमौर में है ये जो ग्रंथ है।
1: एक बोली भाषा बन गई मानस लिखने के
0: जी,
1: बाद।
0: और इससे बड़ी बात ये है कि ये उनकी शादी हुई, फिर उनका प्रेम पति पत्नी से वे कितने
1: हाँ
0: आसक्त थे, ये सब तो एक दूसरी बात हो जाती है।
1: जी
0: फिर
1: जी
0: वो उनकी आसक्ति जो जाकर राम जी से लगा, तो वो

0: तो ऐसा अनन्य भक्त हो गए कि क्या कहे।
1: फिर तो दुनिया ही छूट गई,
0: हाँ,
1: केवल राम ही राम रह गए।
0: उनकी भक्ति जो थी ना, तो वो तो दास्य भाव की थी।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: एक वो दास्य भाव की भक्ति, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे अध्ययन काल में, तो ये सब हमारा किया पढ़ा हुआ है, तभी से तो पता है कि किस तरह से भक्ति की जाती है। भक्ति के जो स्वरूप है, नव प्रकार
1: नवधा भक्ति उन्होंने शबरी जी से कह,
0: जो दास्य भाव है उनका यही था। क्योंकि आप रामचरितमानस का जब अध्ययन पढ़ते हैं, तो उस बार उसमें हर बार आप आपको वो पता चले वो कितने विनम्र है, कितने मतलब झुके हुए हैं।
1: जी जी।
0: क्योंकि रामचरितमानस के अंत में उन्होंने ये कहा भी है, सिर्फ उनका ये चार जो दोहा, क्योंकि उनकी रचनाओं को भी हम लेंगे तो विनय पत्रिका है, दोहावली है, कवितावली है, गीतावली है, आदि आदि उन्होंने जो रचनाएं की, लेकिन जो प्रसिद्ध है तो विनय पत्रिका और जो रामचरितमानस है, ये तो संस्था हमारे हिंदुओं के कंठ में बसा हुआ
1: जी
0: है।
1: जी, बहुत धन्यवाद दीना जी।
0: और अंत में यही मैं बोलूंगी कि उन्होंने कहा है कि मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भव भीर, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम, क्यों रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहियाम।
1: क्या बात,
0: ये तो भक्ति की चरम सीमा है बहन।
1: जी जी बिल्कुल,
0: ये जो
1: राम नाम के सिवा कुछ है ही नहीं उनके जीवन में।
0: जी वैसे तो इनके विषय में अगर हम कहेंगे तो बहुत सारा कुछ कहने को है,
1: लेकिन फिर भी बहुत धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने मुझे बहुत धैर्य से सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं को भी, और मैं सभी को सुन रही हूँ,
1: बहुत धन्यवाद,
0: बहुत धन्यवाद,
1: बहुत सुंदर
0: शुभ संध्या,
1: सूचनाएं आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम एक और श्रोता को चलते चलते पकड़ते हैं। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्कार,
2: प्रणाम हमारी प्यारी सी डॉक्टर जी,
1: प्रणाम, बारे प्रणाम आपको भी, प्रणाम, कहिए सुनाइए कुछ।
2: मैं संगीता हूँ मोरालबेर।
1: जी संगीता जी, आपकी आवाज संगीतमय है, सुनाइए कुछ।
2: हाँ जी हाँ, हाँ ये तुलसीदास जी इतना बड़ा कवि, इतना बड़ा महान, कितना बड़ा, कितना बड़ा हमने के रामायण में लिखी है कथा हनुमान चालीसा, बहुत इसमें हम लोग पढ़ पढ़ कर
1: जीवन है, उसमें जीवन की
2: जीवन है, हाँ बहुत अच्छा लगता है। सब सब पक में अच्छी अच्छी बात है, सब दोहा दोहा में
1: शक्ति मिलती है उसको पढ़कर, सबसे बड़ी बात ये होता है,
2: कोई कोई नहीं जानते तो माने सुनते सुनते बोल रहे हैं।
1: हाँ बिल्कुल बोल, सही बोल रहे हैं।
2: हाँ वो हनुमान चालीसा ये तो आदमी सुनते सुनते सब लोग अच्छी तरह से बोल रहे हैं।
1: संगीता जी क्योंकि जो लिखने वाला था ना पूरी तरह से डूब कर हनुमान की भक्ति में उसने लिखा है, तो जो लिखने वाले की शक्ति और ऊर्जा है वो उसके शब्दों में है।
2: हाँ
1: जब हम पढ़ते हैं तो हम उसे महसूस करते हैं,
2: सच्चा मन सच्चा दिल से ये लिखा, सब कोई बहुत पसंद करते हैं।
1: बहुत धन्यवाद संगीता बहुत, जी
2: एक दो लाइन एक गाना गा,
1: चलिए दो लाइन सुनाइए
2: भगवान के,
1: सुनाइए।
2: रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, मंगल मूर्ति राधे श्याम, ईश्वर प्रभु जी तेरे नाम, सबको जन्म दिया भगवान, मंदिर देवल तेरे धाम, सबको सुमति दे भगवान, खट में तुलसी मुख में राम, जब बोलो तब सीताराम।
1: बहुत धन्यवाद संगीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी और सुंदर पंक्तियां आपने हमें सुनाई, तो चलिए हम एक और श्रोता की ओर बढ़ते हैं।
2: आपको डॉक्टर जी
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
3: हेलो
1: हेलो
3: अलका दीदी, प्रणाम
1: प्रणाम, कैसी हैं बहन जी?
3: जी मैं बहुत अच्छी हूँ दीदी, आप अच्छी हैं ना?
1: हाँ बिल्कुल, सुनाइए कुछ।
3: हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी पर आज आपका प्रोग्राम चल रहा है ना,
1: बिल्कुल।
3: तो गोस्वामी जी ने कहा है ना,

0: जावा
1: देखिए मूल मंत्र
0: राम।
1: दे दिया उन्होंने, कपट को छोड़कर, जो राम के चरित्र को पढ़ते, कपट को छोड़ना पड़ेगा
0: हाँ कपट,
1: तब
0: क्योंकि
1: राम
0: उन्हें
1: मिलते
0: इतना
1: हैं।
0: स्वयं उन्होंने ही ना लिखा है सुंदरकांड
1: हाँ
0: में, मोहि नहीं भाव छल छिद्र कपट, मोहि भावन नहीं
1: हाँ
0: भावा,
1: बिल्कुल,
0: निर्मल मन उन्हें उन्हें पसंद
1: निर्मल
0: है।
1: मन जन सो मोहि पावा,
0: हाँ
1: मोहि
0: मोहि
1: कपट
0: कपट छल
1: छल
0: छिद्र
1: छिद्र
0: न
1: न
0: भावा।
1: भावा।
0: हाँ
1: जी
0: तो ऐसे ही मन में राम जी वास करते हैं ना। और जैसे जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए तुलसीदास जी को सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि मानते हैं हम
1: शिरोमणि है
0: उनको।
1: जी,
0: हाँ
1: जो लोगों
0: शिरोमणि
1: के दिलों पर
0: हैं।
1: राज करे वो
0: हाँ
1: कभी मुकाबले में है ही नहीं।
0: नहीं है, उन्होंने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ हमें दिया है। देखिए
1: जी
0: जब हम वाल्मीकि के आश्रम में जब जाते हैं राम जी, और राम जी पूछते हैं वाल्मीकि जी से कि आप मुझे वह स्थान बताइए कि मैं कहाँ रहूं,
1: हाँ
0: तो वाल्मीकि जी उसे कहते हैं आप हमें ये मुझे ये बताइए कि आप कहाँ नहीं है,
1: राम का मतलब ये जो सब में रमण करता है,
0: सब में है। और
1: सब में
0: ऐसे
1: है।
0: ऐसे जगह उन्होंने बताई है बहन जी, वो रामचरितमानस जो
1: हाँ
0: पढ़ते हैं समझते
1: बहुत
0: हैं
1: सुंदर
0: कैसे
1: पढ़िए।
0: समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र के समान है,
1: हाँ
0: जिसके
1: बिल्कुल।
0: नयन कैसे हैं, जिसका हृदय वहां पर जाकर आप वास कीजिए।
1: बहुत
0: तो
1: सुंदर,
0: ये हमारे तुलसीदास जी ही हमको दे सकते हैं ऐसे,
1: बहुत
0: इसीलिए
1: धन्यवाद।
0: तो हाँ, क्योंकि बचपन में उनका नाम ही तो राम बोला था ना।
1: हाँ बिल्कुल,
0: हाँ
1: बहुत बहुत
0: हाँ
1: धन्यवाद आप हमारे साथ
0: हाँ बहुत
1: जुड़ी,
0: धन्यवाद दीदी, और शुभ संध्या,
1: और
0: बहुत अच्छा प्रोग्राम
1: आपका भी,
0: रखा
1: और
0: है
1: बहुत
0: आपने।
1: सुंदर ढंग से आपने सुनाया, बहुत धन्यवाद। चलिए हम एक और श्रोता को भी लेते हैं। हेलो
0: हेलो नमस्ते
1: नमस्ते
0: दीदी,
1: जी, नमस्ते, कैसी
0: प्रणाम
1: हैं?
0: दीदी, ठीक हूँ
1: प्रणाम, कैसी हैं कमला जी?
0: ठीक हूँ आप कैसी हैं? आप तो हंसा रही हैं, हमें भी हंसा रही हैं
1: आज
0: किचन
1: बहुत
0: में
1: दिनों बाद आपकी आवाज सुनाई दी।
0: हाँ थोड़ी बीमार थोड़ी ठीक, अभी तो ठीक
1: ओहो
0: हूँ।
1: चलिए
0: आरोही
1: बढ़िया,
0: आपसे बात करेगी, आरोही
1: बोलिए,
0: आपसे बात करेगी।
1: नमस्ते
0: उसके गुरुजी
1: बेटा,
0: ने, हाँ उसके गुरुजी ने उसे कुछ सिखाया है बेटा में, तो वो आपको बोलेगी।
1: जरूर। नमस्ते
0: हाँ
1: बेटा, प्रणाम
0: जय प्रणाम प्रणाम नानी।
1: मेरे बच्चा, प्रणाम। क्या सुनाएंगी आज आप?
2: मेरे आलू
1: हाँ आरोही आप हैं मुझे पता है, लेकिन आपने कुछ याद किया है ना, आपके गुरुजी ने कुछ सिखाया आपको? हाँ बेटा आप सुनाइए, आप सुनाइए।

0: शाबाश बेटा, बहुत
1: नानी।
0: सुंदर।
1: थैंक यू नानी।
0: नमस्ते बेटा, और आपकी नानी को भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद कि वे आपको गुरुजी के यहाँ सीखने के लिए भेजती हैं। बहुत धन्यवाद
1: हाँ दीदी दीदी,
0: जी।
1: मैं आपको दो लाइन बोलूंगी।
0: बोलिए। हाँ
1: हाँ, कहाँ छुपे हो राजा राम, राजा राम दीपक बुझा जला जा राम। आप तो हमारे दीपक जलाते जलाते आ जाते हैं दीदी।
0: अरे बस,
1: और
0: राम जी कृपा करें सब पर,
1: कहते
0: यही चाहिए।
1: हैं ना कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गई
0: बस
1: कालिदास।
0: बस वही
1: हो गई ना
0: चाहिए।
1: सुख
0: बहुत
1: संध्या आपको।
0: धन्यवाद,
1: बाय
0: आपको भी शुभ
1: बाय।
0: संध्या। तो हमारे ये श्रोता भी कुछ सुना गए, एक और श्रोता को ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, शायद फोन तक
1: हेलो
0: नहीं।
1: बहन जी, नमस्ते।
0: हाँ, कहाँ खो गई फोन मिलाकर।
1: मेरी बहन जी बात कर रही थी, उसी से बात कर रही थी। सुने
0: सुनाइए, क्या सुनाएंगी।
1: आप ठीक है ना? तो
0: हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल।
1: मैं भी रामचरित्र मानस के साथ साथ ही हूँ। आप जो सब शुभ बोल रहे हैं, मैं भी आपके पीछे पीछे हूँ।
0: क्या
1: तो
0: बात है अमृता जी, कुछ अमृत घोलिए।
1: मैं घोलना चाहती हूँ। हम लोग अभी अभी कृष्णा जन्माष्टमी मनाएंगे ना,
0: हाँ हाँ
1: तो राम और कृष्ण को दोनों साथ में मिलाकर आपको एक छोटी सी कीर्तन सुनाऊंगी।
0: चलिए सुनाइए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत प्यारा भजन आपने सुनाया, शुभ संध्या आपको। चलिए श्रोताओं, हम एक और श्रोता को भी ले लेते हैं। हेलो हेलो।
1: हाँ बहन जी नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते, कैसी हैं बहन जी?
1: कुछ अच्छी हूँ कुछ अच्छी नहीं हूँ।
0: चलिए चलता है, श्यामा जी जिंदगी ही इसका नाम है। लहरें हैं जिंदगी, कभी ऊंची उठती हैं तो कभी नीचे गिरती हैं, कभी शांत हो जाती हैं,
1: कभी थम जाती हैं,
0: हाँ तो कभी सुनामी भी आती है जिंदगी में।
1: सबको झेलना पड़ता है बहन,
0: बिल्कुल ये जिंदगी है।
1: तो मैं कहूँगी बहन जी, सबसे पहले
0: हाँ
1: आपको सच सच नमन है कि आपने अपने श्रोताओं के लिए साहित्य दर्पण जैसे मंच बचा कर रखा है।
0: ये आप लोगों ने बचा रखा है।
1: आप बहन जी, अगर आप न होती तो कैसे हम विचार विनिमय करते बहन जी?
0: आप सबसे मिलकर ही तो चल रहा है, मैं अकेले क्या कर सकती हूँ?
1: लेकिन शुरुआत किससे हुई, स्थापना किसने की? आपने की है ना?
0: कोई बात नहीं, ये तो चलता है जीवन।
1: तो यही तो, इसीलिए तो मैं कहती हूँ सच सच नमन आपको ना। तो सबसे पहले तो रत्नावली जी को नमन करते हैं बहन जी, जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन की सुख को त्याग कर हमें तुलसीदास जैसे युग पुरुष को दिया है।
0: तुलसीदास को ऐसा धक्का मारा कि वो राम की झोली में गिर गए।
1: अब सुनिए बहन जी, इसीलिए तो कहा गया है ना,
0: हाँ।
1: हे धन्य सुहागन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया, मैं हिंदी महावर रच कर भी सुख सपनों का सन्यास लिया।
0: बहुत सुंदर।
1: हाँ बहन, तो आपको पता है बदले में तुलसीदास जी ने क्या कहा?
0: हाँ बताइए जरा।
1: वो कहते हैं, रहूं कैसे मैं तुमको निहारे बिना, रे मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना, रे मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना। हाँ बहन जी, तो जो सुख त्याग तपस्या और भक्ति में है ना, वे और कहीं नहीं है बहन जी,
0: ये सच बात है।
1: हाँ, तुलसीदास ने जो यह ग्रंथ रच कर सबसे पहले सारे संसार को एक चेतावनी दिया है बहन जी,
0: शाश्वत मूल्य दिए हैं।
1: हाँ, ये कहाँ मिलेगा बहन जी? ये तो सबसे पहला हमारा धरोहर है बहन, हमारी धरोहर है
0: जी,
1: बहन जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो जो क्योंकि क्यों हम केवल वेद और रामायण गीता के बारे में कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इसी का पता, इसी से पता चला
0: तो
1: था ना।
0: उसमें जो ज्ञान है वो शाश्वत ज्ञान है, वो सनातन ज्ञान है।
1: हाँ,
0: वो काल से वक्त से मिटने वाला नहीं है। यदि राम मर्यादा में रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वह आदर्श सबके सामने है। आप कितना चल पाए यह आपकी क्षमता और योग्यता पर है, लेकिन हाँ, राम का वो मर्यादित रूप एक आदर्श आपके सामने तो है ना।
1: आदर्श पुरुष है बहन
0: जी।
1: तो मेरा यही कहना था आज के लिए बहन जी।
0: बहुत धन्यवाद बहन जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने भी राम कथा पर चर्चा की, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। तो श्रोताओं, सचमुच राम कथा का जादू है। कुछ सुंदर कांड में तुलसीदास लिखते हैं, प्रभिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। कि आप कुछ भी काम करना चाहें, एक बार मन में श्री राम को बिठा लीजिए, बस फिर कार्य के लिए आगे बढ़ जाइए। घर से निकल रहे हैं तो एक बार, जैसे बड़ों को कहते हैं ना कि मोपे आले, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, एक बार राम जी से कहे, राम जी मैं काम के लिए जा रहा हूँ, आप सब देखेंगे। बात करिए उनसे, तुलसी ने हमें ऐसे राम दिए कि हम उनसे बात कर सकते हैं। तो सचमुच तुलसीदास ने जो रामचरित मानस या अन्य ग्रंथ भी लिखे, अपने आप में वे सब मणि और माणिक्य की तरह चमकते हैं।

0: सीख का सदा स्वागत होता है। साहित्य में छुपा गुड़ रहस्य होता है, क्योंकि साहित्य सबका आईना होता है। साहित्य दर्पण ये साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम लेकर आ रही है अलका धनपत।
1: सचमुच श्रोताओं, तुलसीदास को छोड़कर किसी साहित्यिक रचना की बात करें तो बहुत छोटी हो जाती है। बालकर्ण को ही खोलकर देख लीजिए, उसमें तुलसीदास लिखते हैं साधु चरित शुभ चरित कपासु। पता नहीं आपने कपास का मतलब रुई, कॉटन, कॉटन का आपने फूल देखा है कि नहीं, उसमें कोई जूस नहीं होता, कोई विशेष कलर नहीं होता, बहुत ही ड्राई सा कॉटन उसके ऊपर लगी हुई होती है। तो तुलसीदास ने देखिए कहाँ से तुलना को ढूंढा कि जो साधु का चरित्र है वह कपास के फूल की तरह होता है, देखने में बड़ा ही नीरस लगता है, क्योंकि साधु आपको नाच गाने की तरफ नहीं डालता है, मजे की तरफ नहीं लेकर जाता है, वह तप और तपस्या की बात करता है। बिसद गुणमय फल जासु, नीरस है लेकिन उसका जो फल है उसका यश, दुनिया उसका यश बहुत ही ज्यादा है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेही जग जस पावा। मतलब देखिए, जब कपास से कपड़ा बनता है तो जब हम पहनते हैं तो उसको कितना सुई धागे से सीते हैं, बाजू लगा रहे हैं, गला बना रहे हैं, इधर कटिंग कर रहे हैं, लेकिन अंत में वो हमारे को ढकता है। तो यही बता रहे हैं तुलसीदास जी कि साधु का चरित्र कपास के फूल की तरह होता है, देखने में नीरस दिखता है, रंग नहीं, मज़ा नहीं, लेकिन जैसे वह खुद सुई से चुभने के बाद दूसरे के दोष को, शरीर को ढकता है, ऐसे ही साधु का चरित्र समाज में अच्छी चीज़ों को आगे लाने के लिए होता है, और इसीलिए सब लोग उसकी वंदना करते हैं। तो हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, उनको हम लेते हैं एक बार। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्ते जी।
2: नमस्ते बहन जी, नमस्ते।
1: कैसी हैं आप?
2: खुशी, अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: स्वस्थ हूँ, सुनाइए।
2: स्वस्थ स्वस्थ बहन जी, आपने ऐसा विषय रखा कि हमको रहा नहीं गया।
1: अरे हमें खुशी हुई कि आप हमसे जुड़ी।
2: मैं मोगू से बोल रही हूँ।
1: अच्छा,
2: नंदिनी नेपाल।
1: अच्छा नंदिनी जी, कैसी हैं? ठीक
2: ठीक ठीक।
1: सुनाइए, क्या सुनाएंगे?
2: मैं यह सुनाती हूँ कि तुलसीदास जी नहीं, उसकी पत्नी उनके पीछे नहीं होती बाद हम रामायण नहीं पढ़ते।
1: कहते हैं ना, महिला में बड़ी ताकत होती है, जिंदगी बदल देती है पुरुष की।
2: हाँ, बहुत ताकत, हर एक कामयाबी में शक्ति हमेशा साथ देती है।
1: बिल्कुल होती है, और यदि शक्ति कामयाब होती है तो शिव उसके साथ होते हैं।
2: शिव उसके साथ
1: जी।
2: हाँ बहन जी, मैं यह कहूंगी कि जब मैं विवाह कर आई अपने ससुराल, तो हमारे ददवा ससुर
1: जी,
2: उन्होंने कहा कि बेटी आप रामचरितमानस पढ़ो मेरे लिए। वो पढ़ने लिखने नहीं जानते थे।
1: अच्छा।
2: लेकिन जाकर सत्संग में वो धोती कुर्ता पहनते थे। हम मुझको
1: अच्छा।
2: बताया, अभी नहीं है, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ,
1: बिल्कुल
2: सोच रही हूँ, मैं बैठकर रो रही हूँ उनके लिए।
1: जो कुछ अच्छा करता है तो याद आता है ना, बुरा भी याद आता है, अच्छा भी याद आता है।
2: हाँ, उन्होंने कहा कि देखो ये सब मैं जानता हूँ। मैंने कहा हाँ दादाजी, क्यों नहीं, मैं भी छोटी उम्र में मेरी शादी हुई, फिर भी मैं बैठ का पढ़ाती थी।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ मैं पढ़ती थी, मेरे पिताजी मुझको भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन रामायण तो मैं नहीं छोड़ सकती। हाँ। ये तो हमारा जीवन है।
1: सही बात है।
2: हाँ, ये आज के युग में मृत्यु लोक में जब जन्म लिया तो जीने की राह बताते हैं।
1: हाँ।
2: रामायण में डुबकी लगाएंगे बहन जी तो हमें उबारने की रास्ता देते हैं।
1: सही कह रही है।
2: हाँ,
1: कोई पन्ना खोल लीजिए उसका,
2: कोई भी पन्ना,
1: आपका मन दुखी है, उदास
2: दुखी है,
1: खुश है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा,
2: नहीं मिल रहा,
1: पन्ना खोलिए आपको जवाब मिल जाता है,
2: जवाब मिल जाएगा।

0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: बहुत
1: बहन जी,
0: सुंदर
1: मैं
0: बहन जी।
1: अपने अपने दुख बोल रही हूँ। मेरे पति गुजर गए हैं, मैं अकेली हूँ बेटा,
0: अच्छा।
1: बच्चे लोग हैं,
0: हाँ,
1: लेकिन ये रामायण मेरे साथ है,
0: यही ताकत है हमारी,
1: यही हमारी
0: क्योंकि
1: ताकत,
0: बच्चे
1: कीर्तन
0: तो
1: भजन
0: आएंगे चले जाएंगे,
1: चले
0: उनके भी जीवन में
1: जाएंगे।
0: संघर्ष है,
1: हाँ
0: लेकिन
1: बहन
0: राम
1: जी,
0: कथा आपके साथ हमेशा रहेगी
1: आपके हमारे साथ, और मेरे
0: जी।
1: यहाँ मैं अपनी प्रशंसा आप ही बोल रही हूँ,
0: हाँ
1: फिर भी क्या करेंगे, जीवन में
0: हाँ
1: हमें किसी को सिखाना चाहिए।
0: हाँ
1: हमारे घर पे सब
0: हाँ
1: माताएं आती है
0: वाह
1: सीखने।
0: बहन जी, बहुत
1: हाँ
0: अच्छा,
1: मैं बताती हूँ,
0: बहुत बढ़िया काम कर रही हैं आप।
1: एक बहन जी हमारे गांव में है, वो
0: हाँ
1: पढ़ती, पढ़ना लिखना नहीं जानती,
0: अच्छा
1: सत्तर सत्तर से ऊपर है।
0: अच्छा
1: मुझको कहा कि बहन जी मुझे सिखाओगी, मैंने कहा हाँ
0: बहन जी, बड़ा
1: आओ,
0: पुण्य का काम है ये, पुण्य
1: हाँ
0: का काम
1: करना
0: है,
1: चाहिए करना चाहिए,
0: बहुत सुंदर
1: जब
0: बहन
1: तलक
0: जी।
1: हमारा जीवन है। बस माँ यही बोल रही हूँ, धन्यवाद
0: मैं
1: बहुत
0: आपको
1: आपके,
0: बहुत
1: आपने
0: बहुत दिल
1: समय
0: से
1: दिया,
0: बधाई देती हूँ कि आप इतना
1: धन्यवाद
0: सुंदर
1: माँ,
0: काम गांव में कर रही
1: आपको
0: हैं।
1: भी धन्यवाद। हाँ माँ बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, सचमुच इसे कहते हैं भक्ति का रस, जिसका आनंद वे ले रही हैं, अकेली होते हुए भी सभी के साथ हैं, यही है राम कथा का आनंद। तो हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं, उनको भी हम लेते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते धनेश्वर जी, क्या सुनाएंगे?
2: हाँ तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। और जैसे तो रामचरितमानस में जो मैंने देखा है तो 1074 दोहा है और चौपाई है 4608।
0: क्या बात है, बधाई हो, गिन के आए हैं आप।
2: मैं दे
0: बहुत
2: ढूंढा।
0: बढ़िया। हाँ जी
2: और हमारे महान विद्वान श्री राजेंद्र अरुण जी जो
0: जी हाँ,
2: कविता,
0: जिन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं राम कथा
2: तो
0: के
2: वही एक
0: ऊपर,
2: दो लाइन सुनाऊंगा।
0: सुनाइए।

इस पर सीता राम चले है, हर मानव को प्यारा है ज्ञान।

रामचरितमानस के भीतर भक्ति कमल निज खिलता है। अक्षर अक्षर रामायण का भक्ति ज्ञान रस धारा है। इस पर सीता राम चले है हर

0: आते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
0: धन्यवाद भैया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने सुनाया। तो धनेश्वर जी को हम धन्यवाद कहते हैं, हर बार वे बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें सुनाते हैं। और संत समाज जहाँ पर है, तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ पर भी संत समाज प्रसन्न है वहाँ प्रसन्नता और मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि मानो तुम्हारे आसपास तीर्थ राज चल के आ गया है। हम तो स्वयं जाते हैं ना तीर्थ पर, गंगा का जल लाते हैं, अपने ऊपर छिड़कते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि जिनको संत समाज मिल जाता है, जो सत्य की ओर ले जाने वाला समाज है, संसार का झूठा दिखावा नहीं, सच बात जो जीवन की, कि ये शरीर नश्वर है, अंततः वह प्रभु नाम ही सत्य है जो ये रास्ता दिखाते हैं, अगर वो मिल गए आपको तो समझो तुम्हारे साथ तीर्थ राज ही चल रहे हैं। चलिए श्रोताओं, एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: चलिए हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, हम जरा उनको भी सुन ले वे क्या सुनाना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कैसी हैं बहन जी?
1: मैं ठीक हूँ।
0: सुनाइए क्या सुनाएंगी? हाँ बसंती जी, क्या सुनाएंगी?
1: तो मैं शुरू करती हूँ।
0: हाँ जरूर, समय भाग रहा है।
1: जी जी, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1554 में हुआ था। हाँ। उसका मृत्यु 1680 में हुआ था। कोई इनका जन्म स्थान और कोई सोरों मानते हैं। इनका बचपन का जीवन संकट में बीता था। विवाह हाँ। होने के बाद वैराग्य होने पर इन्होंने घर बार छोड़ दिया और राम के भक्ति में ही जीवन लगा दिया। तो मैं दो लाइन
0: जरूर सुनाइए।
1: सुनाती
0: जी जी, सुनाइए।
1: मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। चौपाई। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोका, भय रुन कर काहूं सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावही सुख ही, नहीं भय शोक न रो।
0: बहुत धन्यवाद बहन
1: जी, समाप्त करती हूँ और को मौका दिए जाए।
0: जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सुंदर चौपाइयाँ सुनाई। और हमारे साथ जुड़ गए हैं नवीन भाई। नमस्कार जी।
2: शुभ नमस्कार बहन जी।
0: आपको भी शुभ नमस्कार। कैसे हैं भाई जी?
2: कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है।
0: यही जिंदगी, यही परीक्षा की घड़ियां
2: जिंदगी है
0: जी।
2: तो बहन जी हमेशा पूछता मेरा, लेकिन मैं खुश हूँ।

0: दुखी तो हूँ थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं धैर्य पाता
1: हाँ,
0: हूँ।
1: उस ईश्वर का संबल लेके रहे हैं तो शक्ति मिलती है।
0: जी बहन जी, बहुत धन्यवाद बहन जी। सहयोगी है
1: आज? सहयोगी नहीं है आज, मैं ही सहयोगी हूँ, मैं ही प्रस्तुत करता
0: अच्छा,
1: हूँ।
0: क्योंकि वो लोग रहते हैं तो आपको कुछ समझ में
1: हाँ
0: आ,
1: बिल्कुल,
0: है?
1: कोई
0: हो
1: पर
0: जाता।
1: कोई बात नहीं, आज थोड़ा काम ज्यादा था।
0: अच्छा बहन जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा।
1: जरूर जरूर।
0: देखिए मैं कहूंगा कि आपको कि देखिए मैं एक नारी से बात कर रहा हूँ,
1: अरे अपनी
0: एक
1: बहन से बात कर रहे हो
0: और एक धर्म पत्नी। हाँ जी
1: तो
0: बहन तो आप तो
1: बस,
0: बड़ी हैं।
1: भाई तो बहन से खुलकर बातें करते हैं।
0: जी बहन जी
1: जी
0: सुनिएगा
1: बोलिए।
0: कृपया,
1: हाँ
0: ये पति तुलसीदास के जीवन में ये पत्नी रत्नावली का भूमिका अत्यंत सराहनीय है।
1: सचमुच
0: मैं
1: जगा
0: कहूँ
1: दिया अपने पति के भीतर की ऊर्जा को, जागृत कर दिया उसने।
0: जागृत कर, मैं आ रहा हूं इस पर।
1: हाँ
0: यहाँ पर कहूंगा कि पत्नी क्या चीज है, लोग कभी यह बात सोचते नहीं। ऐसा ही हुआ था कालिदास
1: के साथ।
0: के बारे में, कि जो माँ ने डंक मारा ऐसे नीच पति से, ऐसे अनपढ़, क्षमा
1: हाँ,
0: करिए,
1: अनपढ़ गंवार पति से
0: मेरा
1: हैं।
0: कैसे मेरा जीवन चलेगा।
1: हाँ
0: फिर से कहूंगा ये पत्नी जो है नारी को जगाती है, पुरुष को नहीं,
1: हाँ,
0: पत्नी
1: शक्ति है ना
0: पुरुष
1: उसके।
0: को जगाने वाली नारी
1: हाँ,
0: है,
1: उसके भीतर एक विशेष शक्ति प्रभु ने दी है।
0: और सचमुच सवेरे जगाती है, उठा उठा उठा, काम पे नहीं जाएंगे
1: हाँ, सोना दुश्वार कर देती है।
0: नहीं
1: चाय
0: ये
1: बन गई
0: हमारा
1: है।
0: ये जीवन में होता है ऐसा। मेरी
1: हाँ
0: पत्नी तो मुझे पलंग ही पर ये पानी दे देती है,
1: हाँ
0: एक गिलास
1: चाय
0: रखकर
1: पानी
0: गुनगुना पानी,
1: बिल्कुल।
0: बिना मुंह धोए मैं पी लेता हूँ। लेकिन
1: पत्नी चाय दे तो कैसे ना पिए आदमी।
0: हाँ जी हाँ बहन जी, जानती तुलसीदास में तब वैराग्य उत्पन्न हो गया और राम भक्ति में डूब गई। यहाँ पर फिर कहूंगा रत्नावली ने यह बताना चाहा,
1: जी
0: तो बहन जी हम जब विवाह करते हैं तो हम पत्नी को अर्धांगिनी, अर्धांगिनी तो है,
1: हाँ
0: लेकिन मैं मानता हूँ कि धर्म पत्नी, और ये मैं मानता नहीं, मैं पढ़ा भी है कि ये धर्म कहता है कि धर्म पत्नी ही संसार सागर पार कराती है।
1: हाँ यदि वो सही रास्ते पर घर को ले जाए
0: हाँ,
1: तो
0: सही
1: भवसागर
0: पत्नी।
1: से सब पार होंगे ही होंगे ना।
0: और तो यहाँ पर रत्नावली ने तुलसीदास को सागर पार करा दिया। कहने का तात्पर्य मैं कहूंगा कि उनको संसारिक दुखों से मुक्ति दिला दी।
1: रत्नावली ने उनको सड़क दिखाई, आगे जो गुरु कृपा हुई, राम नाम जो गुरु ने दिया, बस उसने जीवन उनका बदल दिया।
0: विद्योत्मान ना होती तो ये
1: कालिदास
0: कालिदास
1: भी कालिदास ना
0: कहाँ ये
1: होते,
0: संस्कृत का
1: वो
0: महाविद्वान
1: तो इतने
0: बनता।
1: मूर्ख थे कि उसी डाल को काट रहे थे जिस डाल पर बैठे
0: हाँ, इतना मूर्ख था। तो मैं कहूंगा आपसे
1: थे।
0: अंत में कि
1: जी
0: तुलसीदास की कृपा, या तुलसीदास ने मैं ऐसा पात्र दिया राम के माध्यम से,
1: जी
0: जो उन्होंने उनको प्रस्तुत किया कि सुख दुख दोनों में हम राम का गुणगान गाते हैं।
1: बहुत सुंदर भाई साहब,
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के
0: सुख
1: लिए।
0: संध्या, नमस्कार बहन जी।
1: नमस्कार जी। तो सचमुच श्रोताओं, राम के साथ जुड़ने में तो बात ही कुछ और है।
2: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए, साहित्य दर्पण।
1: श्रोताओं, तुलसीदास जी कहते हैं, राम की भक्ति की जहां पर गंगा बहती है, समझो वहां पर ब्रह्म के विचार ही आ जाते हैं। तो जिस हृदय में राम उतर जाते हैं, बस उस हृदय के तो कहने ही क्या।

0: पाई जा।
1: सचमुच श्रोताओं, राम का नाम लेने में ही वो शक्ति मिलती है, लेकिन तुलसीदास उसके लिए भी एक शर्त लगा देते हैं। वे कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्लियर वे कहते हैं, स्पष्ट रूप से वे कहते हैं बालकांड में कि जब तक सत्य का संग ना हो उसके बिना विवेक पैदा नहीं होता। अब सत्य का संग, सत्संग का मतलब केवल भजन कीर्तन नहीं, सत्संग का मतलब राम का भजन और उसके साथ साथ आचरण की पवित्रता, सत्य का संग। तो बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं होता है, इसीलिए सद्गुरु को ढूंढना पड़ता है। अब ऐसे तो गुरु लोग बहुत हैं दुनिया में जो आपको बहुत सारे टोटके और उपाय बताते हैं, लेकिन क्या जीवन को कैसे ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की ओर लेके जाना है, यह ज्ञान कौन देता है? तो तुलसी स्पष्ट कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आगे एक बड़ी बात वे कहते हैं कि जब तक राम की कृपा आप पर नहीं होगी, तब तक आपको सद्गुरु या सत्संग भी मिल नहीं सकता है। और सचमुच कलयुग है, इस युग में तो गुरु भी अच्छा शिष्य ढूंढता है और अच्छा शिष्य भी योग्य गुरु को ढूंढता है। तो राम कृपा चाहिए, और राम कृपा के लिए सबसे पहले नाम जप चाहिए, राम को हृदय में उतारना ही होगा। तो श्रोताओं, तुलसीदास जी को शत शत नमन है कि उन्होंने इतना बड़ा महाकाव्य जिसकी हर तीसरी चौथी पंक्ति में जीवन का रहस्य है, एक पंक्ति उठा लीजिए उस पर आप एक घंटा बात कर सकते हैं, इतना गूढ़ रहस्य उन पंक्तियों में उन्होंने हमें दिया। ऐसे कवि को, ऐसे संत को, ऐसी महान आत्मा को साहित्य जगत क्या पूरा संसार नमन करता है। आज जहाँ पर भी हिंदी है, दुनिया के किसी भी देश में रामचरितमानस को पढ़ना वे लोग भी अपना सौभाग्य समझते हैं, और इसलिए अवधी और हिंदी सीखते हैं कि राम कथा का क्या जादू है, ऐसी क्या रचना है कि पूरे देश में अनपढ़ हो कि गंवार हो, कि गांव का हो कि शहर का हो, सभी कोई रामचरितमानस और राम कथा को जानते हैं। तो श्रोताओं, आप सभी को आज शुभ संध्या, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अन्य विषय के साथ अगली बार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: जो चले समय के साथ, सफलता आयो उन्हीं के हाथ। 5:01 हो गए हैं।
2: खेल खिलाड़ी इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी।
1: नमस्कार और आदाब प्यारे देवी और सज्जनों, रेडियो मॉरिशस AM2 की लहरों पर आप लोगों का स्वागत है। प्यारे प्यारे श्रोताओं, शनिवार की है मनभावन शाम और आपके लिए खेल खिलाड़ी प्रोग्राम। हमेशा हम करते हैं बड़े प्यार से आप लोगों के नाम। अभी अभी आप लोगों ने सुना साहित्य दर्पण, बड़ा ही ज्ञानवर्धक प्रोग्राम डॉक्टर कालदंपत्य जी द्वारा, और अभी आपके लिए उपस्थित हो गया है आप ही का सेवक रोशन। खेल खिलाड़ी जो दो भागों में विभाजित है, और पहला भाग उसका नाम है सिनेमा दिल से, जो चलेगा 5:30 तक, और दूसरा भाग मेरा सवाल तेरा कमाल, फुटबॉल, सामान्य ज्ञान और स्पोर्ट्स पर आधारित प्रश्न और जवाब की कड़ी।

तो चलिए पहला भाग और सिनेमा दिल से, और सिनेमा जगत के प्रेमी तो बहुत हैं हमारे श्रोतागण यहाँ पर। विषय है सिल्वर जुबिली, फिल्म भी निराली। सिल्वर जुबिली, फिल्म भी निराली। आज हम एक ही फिल्म पर चर्चा करेंगे और उसी फिल्म के गाने चलाएंगे। सिल्वर जुबिली अर्थात 25 वर्ष, 25 years एनिवर्सरी। ठीक 25 साल पहले सन 2001 में एक फिल्म आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया था, और आज वो फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन के रह गई, आपको तो पता है। सुनिए मेहरबान और कदरदान, फिल्म का नाम है लगान। लगान वंस अपॉन ए टाइम इन इंडिया। हम लगान के हर एक गाना चलाएंगे और आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप बड़े प्यार से जवाब दीजिएगा। फिल्म एक, गाने अनेक। तो चलिए पहला गाना आपके लिए हम चलाने ही वाले हैं, और जो गाना चलाएंगे आप सुनकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। भुवन गौरी और एलिजाबेथ की प्रेम कहानी, एआर रहमान का मन को छू देने वाला संगीत, और आशुतोष गवारिकर का लाजवाब निर्देशन। स्वयं आशुतोष गवारिकर ने स्वीकार किया कि लगान फिल्म जो है एक पुरानी फिल्म से प्रेरित हुई थी। उस फिल्म में दिलीप कुमार साहब और विजयंतीमाला जी थे। 1957 में रिलीज हुई ये फिल्म बड़ी दिलचस्प थी। आपको बस फिल्म का नाम बताना है, दिलीप कुमार और विजयंतीमाला वाली फिल्म से प्रेरित होकर आशुतोष गवारिकर को आइडिया आया कि लगान बनाया जाए। उस फिल्म का नाम बताइए जो 1957 में रिलीज हुई थी, दिलीप कुमार साहब और विजयंतीमाला जी, और विजयंतीमाला जी को देखकर ही ग्रेसी सिंह को उन्होंने लिया था इस फिल्म में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विजयंतीमाला जी का रोल ग्रेसी सिंह बखूबी निभा सकती थी। तो चलिए पहला गाना और आप जवाब दीजिए 4-0-2-8-0-8-5 पर।

ओरी छोरी तुम्ही से मैंने किया है प्यार, तेरे ही साथ है मेरा जग मेरा संसार। लगान का बहुत ही रोमांटिक सा गाना उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाजों में आपने अभी अभी सुना। सवाल था कि ये जो फिल्म लगान थी ये किस फिल्म से प्रेरित होकर बनी थी। उस फिल्म में दिलीप कुमार साहब और विजयंती माला जी ने काम किया था। 1957 में रिलीज हुई फिल्म थी और उस फिल्म का नाम है उड़े जब जब जुल्फे तेरी। ये गाने के बोल है, फिल्म का नाम है नया दौर। जी हाँ, नया दौर। और सही जवाब दिया श्यामा जी बिलमे से, क्लावेट सेबास्तोपोल से विजय भाई, रेहाना जी फ्रॉम नोटरडाम, लिस्कालिये से अली साहब, सिरिक भाई फ्रॉम फेनिक्स, इंदिरा जी मोदालबिया से, उमा जी रॉसबेल से, और उमा जी कौदमास्क पावे से, और वीना जी त्यागूश से। हमारे श्रोतागण ढूंढ के लाते हैं और सही जवाब देते हैं, आप तो बधाई के हैं पात्र। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आमिर खान ने स्वयं इस फिल्म लगान को प्रोड्यूस किया था, वही निर्माता थे इस फिल्म के। ग्रेसी सिंह जो अभिनेत्री है ये उसकी पहली फिल्म थी। रॉशेल शेले और पॉल ब्लैकथोर्न ने भी पहली बार के लिए किसी हिंदी फिल्म में काम किया था। यही वो

0: मूवी है जिसमें आज तक सबसे ज्यादा अंग्रेजी कलाकारों ने काम किया है। जरा अब आप विचार करें और बताएं कि फिल्म की कहानी किस गांव में चलती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लगान फिल्म देखी है तो आप हमें बताइए कि ये जो कहानी है किस गांव में ये चलती है। 4028085 9285 पर आप जवाब दें और लगान का यही बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक गाना आपके लिए।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

सुन मितवा, तुझको क्या गम है रे, अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो क्यों आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। सवाल था कि ये जो लगान फिल्म है, इसकी कहानी कौन से गांव में चलती है, और सही जवाब है चंपानेर। बड़ा आसान सा प्रश्न था और सही जवाब दिया एक बार फिर अली जनाब लिस्कालिये से, और साथ ही साथ शोभा जी वाकवा से और सुदेवी जी मोका से। हम बढ़ते हैं आगे। लगान फिल्म की चर्चा हो रही है और फिल्म एक प्रसिद्ध स्पोर्ट्स यानी खेल पर आधारित है।

और उस स्पोर्ट्स उस खेल का नाम है क्रिकेट। इस फिल्म से बहुत लोगों को, खासकर मॉरिशस वासियों को, इस खेल से, खेल के बारे में जानने का बहुत ही अच्छा मौका प्राप्त हुआ। और इस खेल में रुचि उनकी उत्पन्न हुई क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए। चलिए आप हमें ये बताइए, फिल्म के अंत में, जी हाँ, अगर आपने फिल्म ठीक से देखी होगी तो फिल्म के अंत में, क्लाइमैक्स में, चंपानेर टीम जो अंग्रेजियों के खिलाफ ये टीम खेलती है, चंपानेर टीम की तरफ से अंग्रेजों के विरुद्ध कौन से दो आखिरी खिलाड़ी बचते हैं, खेलते हैं, उन दोनों के नाम हमें चाहिए। बड़े आसान सा सवाल है, जो दो अंतिम खिलाड़ी बच जाते हैं चंपानेर के टीम में अंग्रेजों के खिलाफ, और बाद में जाकर उनकी जीत होती है, तो जो दो अंतिम खिलाड़ी हैं जिन्होंने चंपानेर टीम को जितवा दिया, वो कौन से दो खिलाड़ी बचे थे? और एक तो दूसरे से कहते हैं, सबकी जिंदगी तो हर हाथ में है, जीतेंगे नहीं तो तीन गुना लगान देना पड़ेगा। बहुत ही आसान हो गया है, जवाब दीजिए 402-808-5 पर।

राधा को इतना जलाते हो क्यों श्याम जी? आमिर खान और ग्रेसी सिंह पर फिल्माया गया ये जो गाना है, जो डांस सीक्वेंस है, बड़ा ही लाजवाब, बेमिसाल। ए और रहमान का संगीत दिलकश म्यूजिक। सवाल किया था हमने कि चंपानेर टीम की तरफ से जो दो आखिरी खिलाड़ी रह जाते हैं अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए, बाद में चलकर उनकी जीत होती है, एक तो है वो भुवन यानी आमिर खान और दूसरा है आदित्य लाखिया जो कचरा का रोल निभाते हैं। भुवन और कचरा यही दोनों जो है इस टीम को जीत दिलाते हैं और 3 सालों तक लगान माफ की जाती है। क्या फिल्म थी, वाह। और सही जवाब दिया आफेज जी लावेनिया से, अली साहब लिस्कालिये से और विजय भाई क्रावित सेबास्टोपोल से। चलिए इस सेगमेंट में एक अंतिम प्रश्न आपके लिए। इसमें एक गाना है, लगान फिल्म में एक गाना है जिनकी अंग्रेजी अनुवाद, जिनका अंग्रेजी अनुवाद जो है ट्रांसलेशन इस प्रकार है। आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा गाना रह गया है जो अंग्रेजी में हम इसे ऐसे बोलते हैं, से दिस माई फ्रेंड, से दिस माई फ्रेंड अगेन एंड अगेन, मे द विक्ट्री बी आवर्स एंड द डिफीट बी theirs। कौन सा गाना है लगान में जिसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है, से दिस माई फ्रेंड अगेन एंड अगेन, मे वी ऑलवेज विन एंड दे ऑलवेज लूज। कौन सा गाना है? 4028085 पर जवाब दीजिए। तब तक लगान फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: डरने की क्या है बात जब पालनहारे परमपिता परमेश्वर है आपके साथ। हमने सवाल किया था कि say it again and again my friend, may we always win and they always lose। ये कौन सा गाना है लगान फिल्म का? और सही जवाब है बार बार हाँ बोले यार हाँ, उसकी जीत हो हमारी जीत हो उसकी हार हाँ। और सही जवाब दिया देवी जी फ्रॉम हाइलैंड्स और जीवंती जी फ्रॉम बेल्वेडेयर। ये गाना हम चलाएंगे दूसरे सेगमेंट में क्योंकि अभी 5:33 हो गए हैं और दूसरा सेगमेंट अभी आरंभ होने ही वाला है।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी खिलाड़ी।
1: जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, खेलकूद प्रेमी और म्यूजिक लवर्स, ये है खेल खिलाड़ी। सच्चा खेल वही जो बढ़ाए दिलों से दिलों का मेल, और पक्का वही खिलाड़ी जिन पर फिदा ये दुनिया सारी। दूसरे सेगमेंट में हम आ गए हैं जहां पर हम चर्चा करते हैं फुटबॉल, स्पोर्ट्स और सामान्य ज्ञान पर, बेशक अपने प्रश्नों के साथ और आपके उत्तर के साथ इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, और गाने तो बेशक आपके लिए हम चलाएंगे ही, लेकिन सबसे पहला जो हम करते हैं इस सेगमेंट में, जो सबसे पहले हम करते हैं वो है फुटबॉल का जिक्र। और हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो कल से शुरू हो गई है, और कल इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो चैंपियंस है आर्सेनल फुटबॉल क्लब, क्या खेल उन्होंने खेला कोवेंट्री सिटी के खिलाफ। कोवेंट्री सिटी वही टीम है जो न्यूली प्रोमोटेड टीम है, और EFL चैंपियनशिप जो फर्स्ट डिवीजन है इंग्लैंड में, उसका चैंपियन है। यानी दो चैंपियंस के बीच में मैच हुआ कल, पहला मैच, और जीत हुई आर्सेनल की 3-0। बिल्कुल 3-0 के स्कोर से आर्सेनल जीत गई, और अभी अभी ये जो मैच समाप्त हुआ है। जी हाँ, हल सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में मैच समाप्त हो गया, और हल सिटी वो दूसरी टीम है जो न्यूली प्रोमोटेड टीम है, और वो प्रोमोटेड हो गई इंग्लिश प्रीमियर लीग में। कल कोवेंट्री सिटी ने हार का मुंह उनको देखना पड़ा, और आज हल सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा दिया। यू बिलीव, हाय रे बेरहम संसार, मैनचेस्टर यूनाइटेड की हो गई है हार। ओहो हो, पहले ही मैच में माइकल कारिक को परमानेंट रूप से मैनेजर बना दिया गया है। इससे अच्छा था कि वो टेम्पोररी ही रहता, कम से कम यूनाइटेड का ड्रॉ या जीत तो निश्चित थी। वो टेम्पोररी से परमानेंट बन गया, तो यहाँ पर हार हो गई है मैनचेस्टर यूनाइटेड की 2-0 के स्कोर से। पहला गोल अजयी ने स्कोर किया हल सिटी के लिए, और दूसरा गोल मैंडी ने स्कोर किया। यानी पहले ही मैच में 0 पॉइंट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार।

और आज के जो फिक्स्चर्स हैं इस प्रकार हैं, इप्सविच टाउन जो तीसरी टीम है, न्यूली प्रमोटेड टीम, इप्सविच टाउन वर्सेस सन्डरलैंड, एवर्टन वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस लीड्स यूनाइटेड, ब्रेंटफोर्ड वर्सेस टोटनहम हॉटस्पर, और कल का जो मुकाबला है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बोर्नमुथ, ब्राइटन वर्सेस एस्टन विला और न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। तेरा क्या होगा रे कारिया? एवे मैच खेल रहा है लिवरपूल। और अंतिम मैच जो पहले मैच डे का है वो है मंडे की रात्रि, फुलहम वर्सेस चेल्सी। आर्सेनल की शानदार जीत, माइकल आर्टेटा और उनके

सिपाही को फुटबॉल से है प्रीत। तीन अंक और कोवेंट्री सिटी की पहली हार और आर्सेनल है फर्स्ट स्पॉट पर। आप हमें बताइए कि इस सीजन जो है 2026-27 का जो सबसे पहला गोल इंग्लिश प्रीमियर लीग में किसने बनाया? Who has scored the first ever goal of this season 2026-2027? 4-0-2, 8-0-8, 5-4-2, 80-85 पर प्लीज आप लोग जवाब दें और वादे के मुताबिक वही गाना आपके लिए लगान का।

जी हमने कहा था बार बार हाँ उनकी हार हाँ, यानी मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार, और हर स्थिति तो चले चलते जा रहे हैं ऊपर। आर्सेनल के साथ 3 अंकों का एडवांटेज है हल सिटी को। और हमने सवाल किया था कि इस सीजन का सबसे पहला गोल किसने स्कोर किया, और सही जवाब दिया भाई विजय जी फ्रॉम सेबास्टोपोल, और उन्होंने जवाब दिया 15th मिनट में स्कोर करने वाला वो पहला खिलाड़ी था काय हावर्ट्ज़, जो जर्मनी में उन्होंने खेला वर्ल्ड कप के दौरान, और जर्मनी पराग्वे से हार गई पेनाल्टी शूटआउट के दौरान। लेकिन आर्सेनल के लिए क्या खूब उन्होंने खेला, पहला गोल, और दूसरा गोल स्कोर किया किसने, साका ने। बिल्कुल साका ने, आर्सेनल का वो बहुत ही प्रभावशाली सा खिलाड़ी 23rd मिनट पर, और 49th मिनट पर ओडेगार्ड ने फिर खाता खोल, फिर जोड़ा गोल को 3-0 से आर्सेनल की जीत। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और वो भी स्पोर्ट्स पर आधारित। कल 21st अगस्त यानी 21 अगस्त की तारीख थी, और इसी तारीख को 1986 में पैदा हुए थे, जन्म लिया था उसेन बोल्ट। जी हाँ, उसेन बोल्ट जो है इसी तारीख को वो जन्म लिया था उन्होंने 1986 में, और वही अभी रिकॉर्ड होल्डर है 100 मीटर्स में और 200 मीटर्स रन में, द वर्ल्ड फास्टेस्ट रनर टिल नाउ। और 100 मीटर्स में उन्होंने 9.58 सेकंड्स में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, और 200 मीटर्स में भी 19.19 सेकंड्स में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, यानी 100 मीटर्स रन और 200 मीटर्स रन में अभी तक उसका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है अब तक का। और ये बना था 2009 में। हाँ, दोनों जो रिकॉर्ड है उन्होंने बनाया था 2009 में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में। ये जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है ये किस शहर में या किस देश में हुआ था जहां पर ये रिकॉर्ड हुआ था उसेन बोल्ट के द्वारा, किस देश में ये वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हुआ था 2009 में, 402-8085-402-80-85 पर जवाब दीजिए प्लीज। और लगान का आखिरी गाना आप लोगों के नाम, और ईश्वर की कृपा से थोड़ी बारिश तो हो रही है।

प्यारे प्यारे साथियों, उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में फिल्म लगान का ये बहुत ही सुंदर सा गाना बारिश के लिए प्रार्थना। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि मॉरिशस में सभी ओर चहुं ओर बारिश हो, हमारे जो जलाशय हैं वो भर जाएं, क्योंकि जल ही है जीवन। और हमने सवाल किया था कि उसेन बोल्ट जो है उन्होंने दो रिकॉर्ड्स बनाए थे 2009 में, 100 मीटर्स में 9.58 सेकंड्स में और 200 मीटर्स में 19.19 सेकंड्स में रिकॉर्ड, और आज तक ये रिकॉर्ड किसी ने तोड़ पाया नहीं। और ये किस शहर में लगी थी ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो ये थी बर्लिन में, जर्मनी में। और सही जवाब दिया दिला भाई फ्रॉम मौलाशु, और उन्होंने कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को लगा झटका, हल सिटी ने क्या पटका। हल सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को दिखा दिया हेल, ऐसा दिला भाई बोल रहे हैं, बाप रे बाप। और उन्होंने कहा कि हल सिटी जो है वो जैसे कहते हैं छोटी मिर्च जो बहुत तीखी होती है। और जैसे कि कल विकास रामधोनी बाय बोल रहे थे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में कोई टीम बड़ी या छोटी नहीं होती है, तो ये बात पहले ही मैच में साबित हो गई यूनाइटेड के खिलाफ। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, मेरा मॉरिशस महान यानी माय मदरलैंड मॉरिशस पर। चलिए एक गांव ढूंढते हैं हम अपने प्यारे देश मॉरिशस में। गांव का जो नाम है वो एस से शुरू होता है यानी स से शुरू होता है, और वो गांव फ्लक डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, फ्लक जिला में पाया जाता है। वो गांव एस से शुरू होता है और गांव का जो नाम है उसका ओरिजिन जो है एक रशियन नेम है, एक रशियन शहर है जो एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है जो क्रीमिया का जो रशिया से जुड़ चुका है 2014 से, वो क्रीमिया जो उसका जो सबसे बड़ा बंदरगाह है और वो ब्लैक सी में पाया जाता है, और एक हिस्टोरिकल पोर्ट है, वो ऐतिहासिक बंदरगाह है, स्ट्रेटेजिक प्लेस है जहाँ पर कोल्ड वॉर के लिए बहुत ही अनिवार्य था ये बंदरगाह। और यही जो नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बड़ा सा शहर इसी नाम से जाना जाता है, और ये शहर कैलिफोर्निया स्टेट में स्थित है। तो कौन सा शहर है मॉरिशस का जो रशिया में भी पाया जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी पाया जाता है, ये फ्लक डिस्ट्रिक्ट में है और इसका जो नाम है एस से स से शुरू होता है। 402-808-5 पर प्लीज आप लोग जवाब दें।

जी हाँ, ये प्रोग्राम भी आपको ड्राइव यू क्रेजी। हमने सवाल किया था कि मॉरिशस का कौन सा गांव है जो फ्लक डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, एस से उसका नाम शुरू होता है, और यही जो गांव का नाम है ये एक रशियन शहर का नाम है, एक बंदरगाह का नाम है, और यही कैलिफोर्निया स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक शहर है। और सही जवाब दिया सुरेखा जी फ्रॉम मेनिल और संध्या जी फ्रॉम पुएर्टो पिमो। और सही जवाब है फ्लक में स्थित सेवास्तोपोल। जी हाँ, सेवास्तोपोल, और रशिया में इसे सेवास्तोपोल भी कहते हैं, वी बी के बजाय वी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिका में सेवास्तोपोल, और ये मॉरिशस में भी है, फ्लक डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। चलिए, अपने देश से आप हमेशा कीजिए प्यार, और एक बार नहीं कीजिए आप, बार बार, बारंबार, लगातार। इसी के साथ समाप्त होता है आज का खेल खिलाड़ी प्रोग्राम। आप वादा मत भूलिएगा, रोज आप व्यायाम कीजिए और अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ख्याल कीजिए। आप गाते रहें, मुस्कुराते रहें, क्यों नहीं, अगर आप चाहें तो गा भी सकते हैं। संगीत में आप बहुत दिलचस्पी रखें और स्पोर्ट्स में भी। तो चलिए, आपसे हम अनुमति चाहते हैं, मुलाकात होगी बहुत जल्द, यानी बुधवार की शाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर उषा जी के साथ अंताक्षरी प्रोग्राम में हम उपस्थित हो जाएंगे आपकी सेवा में। और अभी के लिए नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि, जो बोले सो अभय। MBC रेडियो की जय।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शाम के 6 बजे है। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बंजन ग्रुप ने 2.5 बिलियन रुपये से ज़्यादा रकम में एंजन मॉरिशस की सारी गतिविधियां खरीद ली हैं। अब से एंजन मॉरिशस के बजाय कंपनी फिलिन के नाम से कार्यरत। प्रधानमंत्री के मुताबिक ईंधन का ये वितरण नेटवर्क 100% मॉरिशन है, जिससे अर्थनीति में उद्योगों के भरोसे की गवाही मिलती है। होम सुलह परियोजना के दूसरे चरण से अंगेता के 400 परिवारों ने उठाया लाभ। मौके पर मंत्री पत्रिका सेवादन ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक नई शाखा की शुरुआत का ऐलान किया। गुलामों की संपत्ति को याद करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय गुलामी संग्रहालय ने ट्रास इंटरनेशनल पत्रिका का दूसरा संस्करण आम किया। इस बार महिला गुलामों पर जोर दिया गया। विदेश में टिकटॉक को चुकाना पड़ेगा $400 मिलियन। 13 साल से कम उम्र वाले नाबालिगों की जानकारियां लेने के लिए। अब समाचार विस्तार से। फिलिन बंजन ग्रुप की नई कंपनी है। उसने 2.5 बिलियन रुपये से ज़्यादा रकम में एंजन मॉरिशस की सारी गतिविधियां और साइंटिस्ट फ्यूल स्टेशन खरीदे हैं। ग्रुप ईंधन को स्टॉक करने की परियोजना में 1 बिलियन रुपये निवेश करने का मकसद रखता है। प्रधानमंत्री के मुताबिक ईंधन का ये वितरण नेटवर्क 100% मॉरिशन है, जिसके जरिए मॉरिशन भारत और देश की अर्थनीति में उद्योगों के भरोसे की गवाही मिलती है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बेटामैक्स और मैरीटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल के मामलों पर भी बात की। ज्यादा जानकारी रजनी पीकर के साथ।
2: फिलिन, ये भंजन ग्रुप की सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल लिमिटेड का नया ट्रेडमार्क है। शनिवार की सुबह से पूर्व इंजन की 37 फिलिंग स्टेशनों के लिए नई पहचान। भंजन ग्रुप ने 2.5 बिलियन रुपए से अधिक की रकम के लिए इंजन द्वारा संचालित फिलिंग स्टेशनों को खरीदा है। इसके अलावा बंजन ग्रुप ने मॉरिशस में ईंधन भंडारण की राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने के वास्ते भी के निवेश निर्धारित किए हैं। बंजन ग्रुप के सीईओ विक्रम बंजन ने कहा, मौजूदा इंजन के पहले ही 37 फिलिंग स्टेशन हैं। इसके साथ साथ स्टोरेज टैंक भी हैं। करीब 35,000 टन की स्टोरेज टैंक्स हैं, चाहे हवाई अड्डे में हो या बंदरगाह में। आज यहाँ टेक ओवर किया है तो देख रहे हैं कि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि आज अगर मॉरिशस के सभी स्टोरेज टैंक को जोड़े तो केवल 4 सप्ताहों के लिए ऑटोनोमी है। ये काफ़ी खतरनाक भी है, इसीलिए 5 अतिरिक्त टैंक्स में निवेश करने के बारे में सोच रही है, जो करीब 25,000 टन है, 1 बिलियन रुपये लगा रहे हैं।

0: contenu per place, 1 milliard de roupies.
1: भोपाल स्थित लावांचर सिख में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम तथा व्यवसाय की दुनिया के अन्य कई महानुभावों की उपस्थिति में इस नए ट्रेडमार्क का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री के अनुसार ईंधन वितरण का ये पहला मॉरिशन नेटवर्क है जो देश की अर्थव्यवस्था में मॉरिशन कंपनियों का विश्वास दोहराता है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात पर जोर दिया कि अहम सेक्टर में एक प्रमुख उपलब्धि है। उन्होंने कहा,
2: Today's event marks the birth of the first fully Mauritian-owned fuel distribution network.
1: आज की गतिविधि पूर्ण रूप से मॉरिशन फ्यूल वितरण नेटवर्क का जन्म का प्रतीक है। ये काफी महत्वपूर्ण भी है। एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम है। ये एक शक्तिशाली प्रतीक भी है। मॉरिशन ठेकेदारों का विश्वास दर्शाता है, जैसे श्री बंजन को अपने देश पर है। ये दर्शाता है कि स्थानीय उद्योगों के पास न केवल महत्वाकांक्षा है बल्कि आर्थिक ताकत भी है, टेक्निकल विशेषज्ञता और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों के मैनेजरियल क्षमता में सफल निवेश करने की कटिबद्धता भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बेटामैक्स मामले पर भी बात की, जिसमें मॉरिशस की ओर भेजे जाने वाले पेट्रोल पदार्थ सप्लाई संबंधी कॉन्ट्रैक्ट के रद्द किए जाने के सिलसिले में सरकार को बंजन ग्रुप के लिए 2021 में 5 बिलियन रुपए से अधिक का निवेश करना पड़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2023 में मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल में करीब 30 बिलियन रुपए के पेट्रोल पदार्थ सप्लाई के एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच का भी उल्लेख किया।
2: I cannot refrain from referring to the persecution of the Banjan Group by the last government.
1: पिछली सरकार की तरफ से बंजन ग्रुप के खिलाफ उठाए गए कदमों की भी चर्चा करना चाहेंगे। अक्सर उसे तंग किया जाता था, उसका अपमान किया जाता, उसके विरुद्ध कदम उठाए जाते। राजनीतिक बदले की भावना थी। पिछली सरकार संबंधी गैर जिम्मेदाराना हरकत से देश की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ गई और इसके परिणाम स्वरूप टैक्स चुकाने वालों को 5 बिलियन रुपए से ज्यादा बेटामैक्स मामले के नुकसान के रूप में चुकाए गए। अब पूरी जनता मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप घोटाले को देख रही है। ये 30 बिलियन रुपए से ज्यादा की लागत के कॉन्ट्रैक्ट से संबंध रखता है।
2: The whole population is now witnessing the unfurling of the mercantile and maritime group scam relating to a contract of more than 30 billion rupees by the blatant manipulation of the tendering process.
1: इसके अलावा डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भारतीय सरकार को भी आभार प्रकट किया, जिसके साथ इसी सप्ताह मॉरिशस में ईंधन मुहैया कराने के लिए एक समझौता तय हुआ है। इस समारोह के दौरान संगीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। दो कलाकारों ने फीलिंग शीर्षक का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
3: और मंत्री पाथक कासियावदेन ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक नई शाखा की शुरुआत का ऐलान किया है। सीबी एनर्जी सभी रिन्यूएबल ऊर्जाओं की जिम्मेदार संचालन कंपनी होगी। मिसाल के तौर पर फोटोवोल्टाइक पैनल्स के आयात और स्थापना के लिए इसके जरिए होम सोलर प्रोजेक्ट को तेजी से चलाया जा सकेगा। मंत्री पाथक कासियावदेन आज औंगेटा में थे, जहाँ 400 परिवारों को टूबी चरण से फायदा हुआ। इस परियोजना के लिए डीपी और दूसरे साझेदारों की मदद मिली है। ज्यादा जानकारी हम बाद के बुलेटिन में आपको देंगे। कल कांगो में आत्सू और एफसीसी के मिले जुले सहयोग से एक कार्रवाई चलाई गई और मुजफ्फर लाल मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल शक्की मुर्जिम से पूछताछ नहीं की जा रही है, क्योंकि वो क्लिनिक में भर्ती है। और इस पर ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: शुक्रवार को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के मुख्यालय लाई गई ये गाड़ियां उसी जगह पर मौजूद थी जहां उसी दिन घोंघुब में मुजफ्फर लाल महमूद को गिरफ्तार किया गया था। मूज के नाम से जाने जाने वाले संदिग्ध इसी गाड़ी से उतर रहे थे, तभी पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी के अंदर से अधिकारियों को कुछ मात्रा में गांजा और 45,000 रुपए नकद मिले। जिस अपार्टमेंट में वे रह रहे थे, वहां से कोकीन और मेथामफेटामाइन बरामद की गई। घर में मौजूद महेश सुजो नाम के एक व्यक्ति को भी

कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया, उसे आज वीकेंड कोर्ट में पेश किया गया। वहीं मुजफ्फर लाल महमूद को क्लिनिक से छुट्टी मिलने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा, जहां वे भर्ती हैं। 32 साल के संदिग्ध, जिन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बताया गया है, फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की उस जांच के सिलसिले में तलाशे जा

0: जिसमें कुछ रकम विदेशी मुद्रा में थी। जहां तक जब्त की गई 4 गाड़ियों का सवाल है, उनके खिलाफ संपत्ति वसूल करने की कार्रवाई की जा सकती है।
1: जैसे कि हम बता रहे थे, मंत्री पत्रिका सेवादन ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक नई शाखा की शुरुआत का ऐलान किया है। सीईबी एनर्जी सभी रिन्यूएबल ऊर्जाओं की जिम्मेदार संचालन कंपनी होगी। मिसाल के तौर पर फोटोवोल्टाइक पैनल्स की आयात और स्थापना के लिए। इस पर ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: यहाँ अगुएता में एनएलएसडी परिसर के हर घर में पहले से ही अपने सौर पैनल लगे हुए हैं। हर घर में 416 पैनल्स लगाए गए हैं। इससे 400 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। ये परिवार हर महीने अपने बिजली के बिल में 400 रुपए से ज्यादा की बचत कर सकेंगे।
2: Solar panel, elle est pas une économie pour nous-mêmes. Quand tu peux rester avant, bien tu peux venir bien cher, plus ou moins 1000 roupies. Tu peux bien difficile pour nous.
3: Je peux payer l'électricité assez cher, 800, 900, tout dépend des foyers. Mais quand nous avons la maison, quand nous venons ici, et là, un grand entreprise qui va nous expliquer qu'il y a un peu de bénéficier, même pas nous solaire dans la maison là-haut.
0: होम सोलर परियोजना के जरिए सीईबी लोगों को देश के ऊर्जा परिवर्तन में ज्यादा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सीईबी के कार्यवाहक महानिदेशक संजय समन कहते हैं,
4: Je pas juste ban bénéficiaire un programme gouvernement. Je aussi ban acteur dans transition énergétique nous pays. Chaque fois, je installation produire électricité grâce à soleil. Je peux aussi aide pour diminuer nos dépendance le ban combustible fossile.
0: इस परियोजना को कई साझेदारों का सहयोग मिल रहा है। इनमें यूएनडीपी भी शामिल है, जो इस परियोजना के लिए $30 मिलियन की आर्थिक सहायता दे रहा है। इसकी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव अलका भाटिया कहती हैं,
5: The solar panels that have been installed on your houses prove that the transition to renewable energy is not something out of reach and only for big institutions. It starts on our rooftops, in our communities, and in our everyday life.
0: सरकार हर साल 3,600 घरों में सोलर पैनल्स लगाने का लक्ष्य रखती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंत्री पत्रिका सेवादन ने सीबी की एक अलग कंपनी बनाने की घोषणा की है।
6: Nous pour créer une subsidiaire CB qui pour consacrer 10 à l'énergie renouvelable. Ce travail, c'est mettre pas nous. Parce que dans les 5 ans, 6 ans à venir, Maurice Bizin au moins a 80 000 lacas inéquipés avec panneaux photovoltaïques. Là, nous en a 12 000 pour l'instant. Mon demande CB qui a partir quelques mois là, prend une mesure pour qu'il y ait un pot de panneaux lui-même.
0: होम सोलर प्रोजेक्ट का उद्देश्य 2035 तक मॉरिशस के ऊर्जा मिशन में रिन्यूएबल ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाकर 60% करने की देश की योजना का हिस्सा है।
1: गुलामों के व्यापार और संपत्ति को याद करने की अंतर्राष्ट्रीय दिवस के एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय गुलामी संग्रहालय ने ट्रांस इंटरनेशनल पत्रिका का दूसरा संस्करण नाम किया। इस बार महिला गुलामों पर जोर दिया गया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अरियाना मारी ने उल्लेख किया कि वो औरतें में बेनाम जरूर थी लेकिन कि वो औरतें बेनाम ज़रूर थी लेकिन उन्होंने ताकत दिखाई और उपनिवेशन के दौर में मजबूत ढाल की तरह अपनी छाप छोड़ दी है। 12 रबी उल अव्वल को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत के मौके पर हस्बे दस्तूर जश्न किया जाता है। मुशस्मी खुदा के आखिरी नबी की मिलाद 40 से ज़्यादा सालों से सिद्दीकी नस्लों की वजह से और ख़ास है। हर साल की तरह मौलाना शाह अनस सिद्दीकी ईद मिलाद नबी के सिलसिले में आज सुबह मुशस तशरीफ लाएं, हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया।
7: सर शिव सागर बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर मौलाना शाह अनस सिद्दीकी का खैर मकदम किया गया। मंत्री शकील मोहम्मद और कई दूसरे अहले दीन मौजूद थे। अपनी आमद पर उन्होंने फिर से मुर्शद जैसे छोटे जजीरे में यौमुन नबी के मनाए जाने पर खुशी जाहिर की। एक ऐसा जश्न जो अमन और सॉलिडारिटी से मनाया जाता है।
8: आज तकरीबन 22-23 वर्ष से

0: मैं फ़कीर भी यहाँ पर हाजिर हो रहा हूँ ईद मिलाद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में आपके साथ शिरकत करने के लिए। आज हमारे यहाँ माशाल्लाह हल्का कादरिया इशाअत इस्लाम में जिस तरह से सुन्नी मदरसा बोर्ड में और जिस तरीके से काम हो रहा है, उसे SNIT में काम हो रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है? टू सेव आवर जनरेशन, हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे बच्चों को बेहतरीन तालीम तरबियत और उनकी बेहतरीन रहनुमाई के लिए, ताकि हमारी नस्ल बच जाए। और अगर हमारी नस्ल बच गई तो यकीन करें हम अल्लाह ताला के यहाँ सुर्ख रू होंगे कि हमने ज़िंदगी में कुछ किया। अगर हम अपनी औलाद के लिए कुछ ना कर सके तो समझ लें आप कि हमने किसी चीज़ में कुछ नहीं किया। और माशाल्लाह काबिल, मेरा पैगाम में मोहब्बत है, हुजूर का मीलाद मोहब्बत से मनाओ और खुशियाँ मनाओ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगियों में, दिलों में, घरों में खुशियाँ अता फरमाएगा।
1: मौलाना सिद्दीकी मंगल 25 अगस्त को फिनिक्स के अलीमिया कॉलेज में मीलादुन्नबी के ख़ास मेहमान होंगे। वो अपने ठहराव के दौरान दीगर जगहों पर रूहानी प्रोग्राम करेंगे। सिद्दीकी ख़ानदान पिछले 40 से ज़्यादा सालों से मुशरस्में ईद मीलादुन्नबी के मौके पर आ रहा है और आप तीसरी नस्ल हैं।
2: आज शनिवार 22 अगस्त को रोज़ल किस गायतंजवा स्टेडियम में 100 से ज़्यादा दमकल कर्मियों को सम्मानित किया गया। यह समारोह दमकल कर्मी दिवस के मौके पर आयोजित किया गया था। इस समारोह का आयोजन मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की तरफ से किया गया था, जहां दमकल कर्मियों की कई सालों की सेवा, उनकी लगन और अच्छे आचरण के लिए उन्हें सम्मान दिया गया।
3: बेडाग वर्दी, एक शानदार ब्रेस बैंड और दमकल कर्मी एक ऐसे दिन के लिए एकत्र हुए जो उन्हें समर्पित था। 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों को प्रेसिडेंट्स लॉन्ग सर्विस एंड गुड कंडक्ट मेडल से सम्मानित किया गया। साथ ही इस सम्मान के प्रथम और द्वितीय बार्स भी प्रदान किए गए। अशरफ मोहम्मद बक्सू कहते हैं,
4: आज मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। 39 साल तक देश की सेवा की।
5: C'est pendant des longues années au service de la nation, au service de la communauté.
3: ये समारोह भावुकता से भी भरा था, विशेष रूप से दिवंगत दमकल कर्मियों के परिवारों के लिए जो उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। राजकुमार रामरचा की पत्नी प्रतिमा रामरचा कहती हैं, आज हमें गर्व है, उन्होंने देश की सेवा की, चाहे वे आज नहीं हैं, उन्हें याद किया गया, सम्मानित किया गया। ये उन लोगों के साहस और समर्पण को सलाम करने का अवसर था जो अक्सर आपात स्थितियों में जीवन की रक्षा के लिए आगे आते हैं। चीफ फायर ऑफिसर अशोक रामजान कहते हैं, हम चाहते हैं कि सभी अफसरों में टीम स्पिरिट हो, अनुशासन हो और किसी भी आपात स्थिति में हम तैयार रहेंगे। इलाकाई प्रशासन मंत्री रंजीत बुचित कहते हैं, उपकरण मूल ढांचों में निवेश कर रहे हैं, बजट बढ़ाया गया है। ये सिस्टम यहीं पर नहीं रुकेगी, सभी दमकल कर्मी इस सेवा और देश के विकास में योगदान देते हैं। वर्षों की सेवा, बलिदान और साहस, वे पुरुष और महिलाएं जो हर दिन दूसरों की मदद के लिए मौजूद रहते हैं।
2: बेहतर रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग करना, आज सुबह मुफ्त में फिनिक्स में मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। ये पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय अभियान के सिलसिले में ली गई, जिसका मकसद जनता को स्क्रीनिंग करने की और सेहतमंद रहने की हिम्मत देना है। देश के कमर्शियल सेंटरों में यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द बीमारी का पता लगाया जा सके और इलाज शुरू किया जाए, क्योंकि मॉरिशस में असंक्रामक बीमारियां सबसे खतरनाक स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल है। विदेश में बच्चों की जानकारियों की रक्षा करने के लिए टिकटॉक को अमेरिकी सरकार को $400 मिलियन चुकाने पड़ेंगे। और ऐप और बाइट डांस ने 13 साल से कम उम्र वाले नाबालिगों की जानकारियां ली थी, जिसकी वजह से टिकटॉक पर मुकदमा चलाया

गया। एल नीनो एक प्राकृतिक मौसमी घटना है जो पैसिफिक महासागर में समुद्री पानी के सामान्य से ज़्यादा गर्म होने के कारण होती है। इसका प्रभाव दुनिया के कई हिस्सों के मौसम पर पड़ता है। एल नीनो के दौरान समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हवाओं और बारिश के पैटर्न में बदलाव आता है। कुछ देशों में बहुत ज़्यादा बारिश और बाढ़ हो सकती है, जबकि कुछ अन्य जगहों पर सूखा और गर्मी बढ़ सकती है। एल नीनो की वजह से अगला साल बहुत कुदरती आफतों के सिलसिले में रहेगा। देश विदेश की खबरों के बाद आइए मौसम का हाल सुनते हैं। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह देश भर में बादल के रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी, खासकर ऊंचे इलाकों पर और अन्य जगहों पर आसमान साफ रहेगा, खासकर कल सुबह के दौरान। कल दोपहर बाद के समय पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल छाए रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी, जो पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। कल सूर्योदय 6:26 पर होगा।

तो इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हम इम्बाओ चिन और लुडोविक का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।

petit chemin Bellermi, c'aura si sal, qui est de foyers ou qui chemati de ventiratia, chemati de ventiratia, pedachina malcori, pedachina malcori, ou je kiss nauti namse, zadajani jati tiki mati hogi hunkerti, kal subhasari nobuji, kal subhasari nobuji, unke beti, shri raja rama ratia ki ker, petit chemin, Bellia siltaker, and timsenskar kilie, kondomaskish machan pomidija jagi commission tomorrow at 9:30 a.m. Renoir Street, Villenoir, 4 साल के 71 years old के श्री मोहन प्रसाद बुबुआन, श्री मोहन प्रसाद बुबुआन जो दीवान नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन की साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री विक्रम बुबुआन के घर रेनोआ स्ट्रीट विल्नोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानवानियों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रमशन टुमरो एट 12:30 PM. काशीपुर हनुमान मंदिर नंबर 120 मिनाजिया रोड काशी में काशीपुर हनुमान मंदिर नंबर 120 मिनाजिया रोड काशी में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री भास्कर प्रसाद देवीदिन जो देवीन महाराज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे पंडित अरवेश शर्मा देवी दिन के घर काशीपुर हनुमान मंदिर नंबर 120 मिनाजिया रोड काशी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालीन काशी की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रमशन टुमरो एट 12:30 PM. अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अमिता चितामन पैदाश नाम जरी और जो अमिता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके पति श्री मानंद चितामन के घर अस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाघोश गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रमशन टुमरो एट 1 PM. स्वस्तिका स्ट्रीट पुथोदो हमलत में स्वस्तिका स्ट्रीट

부토도 함렛 미세터 살기 71 years old 기 시메티 가르기 시바 시바루 시메티 가르기 시바루 페다시남 Ojgobi, Paidashinam Ojgobi, or just Santa Nam, Sisada Janijati, take him with you, Hoge Hunkyarti, Kaldinke Egbaje, Kaldinke Egbajunaki, Patti, Shri Vidyanan, Sibaru Kikher, Susika Road, Putrodo, Hamlet, Siltaka, and Tips and Skarki, Lesbians, Pitonkish Mashan, Bumidija, Jagi Krimushan, Tumuru at 1 p.m. Petit Chemin, Bilermi. Vessi Yishok Samachar Hamni Perlihim. केवल नगर बेलरीव में केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 years old की श्रीमती रानी देसी सीबन श्रीमती रानी देसी सीबन जो आरती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी आरती सोमवार 24 अगस्त को सोमवार 24 अगस्त को दिन के साढ़े दस बजे उनकी माँ श्रीमती चिंता सिपालक के घर केवल नगर बेलरीव से उठाकर दफनाने के लिए थ्वाइलो ओलिविया की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमिशन ऑन मंडे 24 अगस्त एट 10:30 AM शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से विज्ञप्ति, गिश्तिया और आसपास के रहने वालों को गिश्तिया रोड, सुशील लेन, शिवाला रोड, मुस्लिम सिमेट्री रोड, स्कूल लेन, रेजिडेंस रोमा और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 23 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सैंट क्वा और आसपास के रहने वालों को रुई निकोले, देबुशे, मारियामेन टेम्पल, आले तमारें, रेजिडेंस पुल टोरो और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल 23 अगस्त 2026 को मरम्मत कार्यों की वजह से सुबह के दिन के 12:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। एक और विज्ञप्ति सुन लीजिए। पोर्ट लुइस और आसपास के रहने वालों को रुई राहुल रिवे, डॉक्टर वांसीफो बोगो, लागेते, सेंट जेम्स, टर्नी, सेंट जॉन, हेनरी ले सिदानी, नाबू सोलिम और मेयर बोथली और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 23 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। वाकवा और आसपास के रहने वालों को विलोबाई रोड, डीकेन रोड, ब्रिटानिया रोड, सफलक रोड और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि 24 अगस्त 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बॉकले और आसपास के रहने वालों को प्रिजन बोबासें, एवेन्यू जैस्मिन, एवेन्यू कोस्मोस, एवेन्यू बॉकले असाइलम, रेजिडेंस बॉकले, रू हर्चन रोडर, मुआ बॉकले, पिसिन सेज अल्फ्रेड, वेज बिसोंबा और मोरोश और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 23 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 10:30 बजे के बीच और दोपहर के 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना पूर्व सूचित किए बिजली की सप्लाई को फिर से जारी की जाएगी। इन असुविधाओं के लिए सीबी क्षमा प्रार्थी है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: रविवार 23 अगस्त को मिडलैंड्स के जगदीश्वर

नाथ शिवाला द्वारा सुबह 5 बजे से श्री नरसिम्ह देव और नवग्रह की मूर्ति स्थापना, पूजा विधि, प्राण प्रतिष्ठा, पूर्णहोति का आयोजन किया जा रहा है। श्रावण मास के संदर्भ में रविवार 23 अगस्त को मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में महर्षि दयानंद वैदिक मंदिर जो थो बिश में है सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक यज्ञ का आयोजन कर रहा है। लावोच वैदिक मंदिर शाखा नंबर 6 सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक, विनोबा भवन सैकोस्तों सैपिय शाखा नंबर 4 सपहर के 3:30 बजे, विवेकानंद सभा तोंबोबी शाखा नंबर 2 शाम 4 बजे, दोनों जगहों में लावोच और सैपिय में प्रवचन किया जाएगा। आचार्य मोहन आर्य श्रुतबंधु द्वारा रविवार 23 अगस्त को सपहर के 3 बजे श्रावण मास महोत्सव के संदर्भ में गहलोत राजपूत महासभा महायज्ञ का आयोजन कर रहा है जो सपहर के 3 बजे जागोनाल रोड लिस्पेरांस त्रिबोशे में किया जाएगा। रविवार 23 अगस्त को गंगा तालाब में श्री सत्य साई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सुबह 9:30 बजे से दिन के 12:30 बजे तक रक्तदान और शिरडी साई बाबा अभिषेक का आयोजन किया गया है।

相信只有手中的那根烟还能体会我颤抖的双唇，怕就怕在我的心几分，怕就怕缘分尽了我还在奔。

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819频道。

0: मीठी मीठी यादों में आपके संग एनबीसी रेडियो।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सभी श्रोताओं को अनीता का करजोड़ नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप आध्यात्मिक कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम सुन रहे हैं और वो भी रेडियो मोशस की लहरों पर। भक्तों, एक सुंदर विचार इस प्रकार है कि स्वभावो दूर अतिक्रम, अर्थात मनुष्य का स्वभाव बदलना अत्यंत कठिन होता है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, समय बदल सकता है, किंतु स्वभाव की गहरी प्रवृत्तियों को बदलने के लिए निरंतर प्रयास और आत्मसंयम आवश्यक है। तो श्रोताओं, आइए इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तजन, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मुख से गाली निकालता है उसका बुध ग्रह जलकर राख हो जाता है, और जहां बुध कमजोर हो जाता है वहां बुद्धि और व्यापार दोनों नष्ट हो जाती है। कंगाली का द्वार आपका अपना मुख खोलता है। वैसे श्रोताओं, कहा जाता है कि जीभ पर माँ सरस्वती का वास होता है, उससे गाली देखकर अपवित्र मत कीजिए। शास्त्र कहते हैं कि वाणी का घाव बाण के घाव से भी गहरा होता है। क्रोध में निकली एक गाली आपके 100 साल के तप को मिटा सकती है।

यजन महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि यादृशैः सन्निश्वते यादृशांश चोपसेवते यादृक् इच्छेच भवितुम तादृक् भवति पुरुषः। अर्थात मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की संगति और सेवा करता है तथा जैसा बनने की इच्छा रखता है वह अंततः वैसा ही बन जाता है।

भक्तों, स्वर्ण की असली पहचान अग्नि में होती है। मनुष्य की असली पहचान उसके आचरण और व्यवहार में होती है। भय के समय शूरवीर, आर्थिक संकट में धैर्यवान और कठिन आपत्ति के समय सच्चे मित्र तथा शत्रु की पहचान होती है।

श्रोताओं, एक वैदिक संदेश इस प्रकार है कि वे प्रभु दिव्य गुणों के धारण के द्वारा प्राप्त होते हैं, अथवा जितना जितना हम प्रभु को धारण करने का प्रयत्न करते हैं उतना उतना हम दिव्य गुणों वाले बनते जाते हैं। तो इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। मौजूद सामईन, उम्मीद है आप बफजल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात महफिल शब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आइए आगाज़ करते हैं इस कलाम के साथ।

मोहतरम सामीन, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का असल ख़ानदानी पेशा तिजारत था, और चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम बचपन ही में अबू तालिब के साथ कई बार तिजारती सफ़र फरमा चुके थे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को तिजारती लेन देन का काफ़ी तजुर्बा भी हासिल हो चुका था। इसलिए ज़रिया मौश के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने तिजारत का पेशा इख्तियार फरमाया और तिजारत की गर्ज से शाम व बुसरा और यमन का सफ़र फरमाया, और अमानत व दयानत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने तिजारती कारोबार किया कि आपके शुरका तमाम अहले बाज़ार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन के लक़ब से पुकारने लगे।

गुनाहगार पे आका की नज़र हो जाए, जिस गुनाहगार पे आका की नज़र हो जाए उसको खालिक कभी रुस्वा नहीं होने देता, उसको खालिक कभी रुस्वा नहीं होने देता। मौज़ सामीन, इसी तमन्ना के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। हम दुआगू हैं कि पाक परवरदिगार हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाँ।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी,
3: भोजपुरी तड़का,
2: तड़का।
4: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का,
3: तड़का।
5: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमार सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत बा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। रत्ना के सप्रेम नमस्कार स्वीकार कर लिया जाए। अभी से लेके रात के 11 बजे ले आप सब कोई के मनोरंजन करे खातिर बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गीत संगे आप सब कोई के साथ देव अब जा अभी से लेके तो जुड़ जाइए हमनी के संगे 4028085 पर और मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर हमनी के साथ देवत हवन पूनम जे अभी थोड़ा घड़ी पहला तो हर साथ देलन रेडियो मनोरंजन पर। तो चलाओ कर खातिर एगो बढ़िया गीत संगे आज के कार्यक्रम के शुरुआत करब जा और ही मजेदार कार्यक्रम के जरूर सुनिया जा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। और राजा बंधु के आवाज में रखल आज के हई पहला गीत के साथ करब जा एगो धमाकेदार शुरुआत।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के संगे संगे जितना कोई हमने के अभी साथ देवत हवन बस साथ देते रहिए जा बहुत मजेदार कार्यक्रम और ऐसा ठंडा ठंडा मौसम में गर्मा गर्म गीतवा जब बजेला ते एगो दूसर कलिते के ऊर्जा चलावेला। और आज के कार्यक्रम तो चली रात के 11 बजे ले, वैसे तो रोज चलेला रात के 9 बजे से 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। और जब तू साथ देवेला तो हई कार्यक्रम में और भी चार चांद लग जाला। तो चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जाओ। और आज हमनी के संगे प्यारी सुनीता जी भी जुड़ गल हवन गाँव गो बगल से और उनकर प्यारी बहिन कोंगो माँ से विमला जी उतना बेसब्री से हमार कार्यक्रम के इंतजार करत हवन। चला विमला जी तोहर नाम भी बहुत प्यार से जोड़ देवत हई। और हईजा पर हमनी के गाँव गोब से अमृता जी भी जुड़ गल हवन और गुडलैंड बगल से वीना जी भी प्यार से साथ देवत हवन। तो हई अगला गीत तोहरो खातिन चलावब जा साथ देवत हवन भाई आबू और आफेज वाकवा बगल से और उनका सब परिवार असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी और साथ देवत हवन उनकर खास संगतिया आपी और उनकर पत्नी और उनकर एगो भगिनी हवन रकीबा जे तनी मलाद हवन। तो चला दुआ करब जा कि वो अच्छा हो जाए और ऊपर वाला ओकरा बहुत शक्ति दे हिम्मत दे। और भाई आबू हमनी के बोले विक्रम कोलाचन के है गीतवा तनी।

चलादा धोती पोथी पगड़ी बहुत खुशी रहेलन है गीत सुने के। तो चला हंसते मुस्कुराते संगे सुनब जा है गीत और हमर चाचा और चाची के किस्सा तक का बोलब जाने ल। हमर चाची चाचा से बोले जाने ल तू बहुत किस्मत होला हव कि तोरा हमनी नियर पत्नी मिलल बा औरी कौनो दूसर मिल जात हमनी जैसे जस्ती तेज तड़ाक तब देख तोहर जिंदगी कैसे चल।

बोले हाँ तोहर से भी जस्ती तेज तड़ाक कोनो रहल रहल बा, हम कैसे जानब हो भगवान तोहर से भी जस्ती कोनो तेज तड़ाक के बना दिले हव। तोहर से जस्ती कोनो ऐसन मॉडल मिली बाजार में?

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुत ही मजेदार बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम का है कि हैजा पर तू अपन पसंदीदा गीत हमनी के बोलेलन चलावे के और हम बहुत ही प्यार से खुशी रहिला तोहर संगे संगे है गीत के आनंद उठावे के। तो चला आज के कार्यक्रम में हमनी के साथ देवत हवन बसंती जी बोबा से बगल से और वाकवा बगल से जुड़गल हवन फूलवंती जी उनकर बेटा हवन उषण बेटी भावना पति हवन देवानंद और सब कोई परिवार संगे उस साथ देवत हवन और हैजा पर गायत्री जी हमनी के साथ जुड़गल हवन पिचवेश पियसे और बोले हमनी के है गीतवा तनी चढ़ा चला द हमर खातिन हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो और है जोन गीत है जोन ओरिजिनल गीत लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के आवाज में लिखल गल बाते गावल गल बाते और बहुत मजेदार गीत संगे है गीतवा अभी थोड़ा घड़ी में चलाओ अब जा उनकर खातिन और जाने ल है गीतवा हमनी के मोरिस के स्थानीय कलाकार भी बहुत ही प्यार से गईले होवन पर चला तोहर खातिन तोहर पसंदीदा गीत चलाओ अब जा तोहर पसंद पे औरी है जोन गीत है तोहर बहिन अमृता खातिन तोहर भौजी हवन मीरा खातिन और तोहर भगिनी हवन नेहा क्षिति दिव्या गिरिशा और मेधा और भगिना हवन सुधीर और कमलेश और पतो हवन सुधा। तो चला सब परिवार खातिन चलाओ अब जा है गीत और हमर चाची और चाचा के तक किस्सा सुनते चला हो हमर चाची और चाचा जाने ल हमर चाची जब गाल बजावेला और चाचा का जानी कहाँ कहाँ से शायरी खोज के बोल देवेला और ऐसे बतवा बोल देवेला कि चाची जोन है नारिया के खिसिया जाला। चाचा कौन दिन लगल अपन बेसुरा आवाज में गीत गावे जे शादी ना करिए तनहाई से मर जाइब जे शादी नहीं करिए तनहाई से मर जाइब और जे शादी कर लेब मेहरारू संगे जीते जीते मर जाइब का हो चाचा ऐसन गीत को गात हो देखा ऐसन बढ़िया बढ़िया गीत तोहर खातिन हम लेके आल हई सुना तनी भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में

बढ़िया बढ़िया गीत सुनत हवन आउरी टेलीफोन पे इतना प्यार से हमनी के चाची नानी दादी लोग हमनी के संगे बतियात हवन तो बहुत बस हमनी के साथ देते रहिए जा ऐसने। और अभी भाईजा पर विश्वानी दुमन जी भी हमनी के साथ जुड़ गल हवन वाकवा वाकवा देने से। और बहुत प्यार से हमनी के बोले तनी हमर खातिन चला दा दादा के पोसल पासल ललका चिड़ैया। और जो है गीत है न विश्वानी जी है अभयदानन बीजन के आवाज में रखल गीत है, बहुत मजेदार गीत। और इंदिरा शारदा तोहर बहिन लोग और सखी हवन नीला और प्रतिभा साथ देवत हवन शोभा जी और गीता गजादर और सब कोई जितना सुनत हवन सब कोई खातिन है गीतवा चलाओ अब जा। और हमनी के प्यारी चाची और चचा का बोलब हमर चाची जाने ल कौन दिन अपन एगो एप्लीकेशन करलन लिसेंस खातिन तो चचा एक कुछ खिसिया के बोले कौन चिकर देलक बुढ़िया। बोले का होल। बोले हाँ एप्लीकेशन कर देलक लिसेंस के। तो बोले हाँ कर ले हाँ।

0: बोले अनपढ़ के अनपढ़ रहबे। बोले काहे? बोले कौन चीज के लिसेंस के एप्लीकेशन कर ले हवा, लिसेंस कोंजरे करे के? बोले नहीं। तो बोले तो कौन चीज के बंदूक के तू लिसेंस के एप्लीकेशन कर दे ले हवा? तो बोले हाँ जानी ला बंदूक के कर ले हैं। तो बोले तू तो अनपढ़ हो गल हवा, पगली हो गल हवा, बंदूक के काहे तू एप्लीकेशन कर दे ले हवा? बोले नहीं जानबूझ के न कर ले हैं, जान के कर ले हैं, जानी ला हम काहे हम बंदूक के एप्लीकेशन कर ले हैं। जैसन हालात बा घर के, जैसन अभी तू करत हव तांडव हमनी के नचावत हव, हवे से हम एप्लीकेशन कर देले हैं। एगो बंदूक रखब अब घर में हमनी के संगे, हमर सिक्योरिटी खातिर बंदूक के एगो एप्लीकेशन कर ले हैं। तो चचा बोले हमनी से कोनो गलती हो गल बा का हमर रानी? बोले देखा बंदूक जब चलाई तब बतियाब तोहर संगे। तो चचा बोले देखा देखा बुढ़िया, तोहरा बहुत प्यार से हम बोलत हैं, जे फजीर के भूल जाला सांझ के लौट के घरे चले आओ चलावेला, ओकरा भूला नहीं बोलल जाला बुढ़िया हमर रानी हमर गाते कोको। तो चाची बोले देखा हाई जन कहावत है ना, हाई बहुत पुराना हो गल बा हमनी के, हाई सब अभी मक्खन नहीं लगावा हमनी के, समझ गई ला? बोले काहे तो ऐसे खिसियात हव हमर प्यारी बुढ़िया, का पीब? बोलता तनी तोहर तोहर खातिन पानी लेके आई, तोहर खातिन गर्मा गर्म चाय बना दे। काहे तू तो दू तीन दिन से तोहर मूड तनी जस्ती खराब रहेल, नहीं करे के चाहिला इतना खीस हमर बुढ़िया हमर बहुत रानी, तोरा दिल के रानी बना के रखब। बोले हाँ पतलून गीला हो गल तोहर।
1: दादा के पोसल पासल ललका चिरैया, दादा के पोसल पासल

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का
1: उमेश दाऊ की आवाज में रखल हाई बढ़िया गीत रहल और जिले जिले बस जीवन जिए के चाहिला, हंसते रहे के चाहिला और तनाव दूर भगाए खातिन हमनी के चुटकुला सुनते रह। चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ावे खातिन अगला गीत जो है गीता राधे की सुन खातिन, अंजू खातिन, उनकर परिवार खातिन, बड़की मुनवा, सत्यानंद सालिक खातिन और हई जो गीत है अभिमन्यु हरिपाल के आवाज में रखल मजेदार गीत। आउरी हमर चाची के का बोलब जाने लग चल गल कोन दिन बाजार एगो नवा टेम्पो किने, तभी एगो नवा टेम्पो तलाने पे चाचा किन के देलन, तो हम बोली चाची काहे हो एगो नवा किन टेम्पो किनत हो, बोले देख ले गई देखे गईली बाजार में नवा टेम्पो, हम बोली काहे बिगड़ गल का, बोले नहीं जाने लो जब हम टेम्पो पे दाल चढ़ाई ला ना जब मोबाइल में ढुक जाइला तो दलवा जर जाला तो नहीं जानीला हम देखे जात है, हम मौसों से पूछब एगो टेम्पो मिले ऐसे जैसे वो सीटी बजी तो कम से कम हमनी के बताई कितना सीटी होल बा, तो हमनी के पता चली कितना सीटी हो गल बा न, कहे के गिनती भुला जाइला बूढ़ा हो गल हई हवे से। हम बोली का हो चाची बाजार में ऐसन टेम्पो कहाँ मिली तोरा जे तोरा गिनती कराई कितना सीटी होल बा।

0: भोजपुरी तड़का तुहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा। भोजपुरी तड़का
1: भाई जीवन में तनी गमट करे के बहुत जरूरी है, तड़का मारे के बहुत जरूरी है। और जैसे हमर चाची और चचा तो तड़का मारते रहे लन सब, पन जाने ल उ तड़का मारे लन अपन झगड़ा के। अरे वो बात छोड़, चलो आगे बढ़ब जा। चाची ललिता हमनी के संगे जुड़ गल हवन त्रियोले बगल से, और सब कोई कुशल परिवार खाती नगला गीत के उमंग कले हवन। और हई गीतवा भी बहुते मजेदार, लाले लाल होठवा लागी नाही छूटे राम के बहुते मजेदार गीत। उ बहुत खुशी रहल हन सुने के। और हई गीत उनकर बहिन सुदेवी ज्ञानी और देवीना, और संगे हवन छोटी पोलौजे से नीता खातिन, और दादी प्रभावती खातिन, सुखलाल मौसी खातिन, भाई आत्माराम, भाई हरीश खातिन, और माला राम जी आवन खातिन। तो चला हंसते मुस्कुराते सुनब जा है बढ़िया संगीत। और गीत के संगे संगे जाने ला चाची और चचा जितना झगड़ा करत हवन। त दमोदर भैया बोलन चचा गजोदर के, जाने ला अभी हम राजो पर सुनले रही, जब पति पत्नी में झगड़ा होवे के शुरू हो जाला तो तनी काउंसलिंग करे के चाहिला। बोले कौन ची करे के साहिला? बोले काउंसिलिंग जाके बतियाई के चाहिला, काहे झगड़ा होता वो तोहरा बताई कौन ची करे के चाहिला। तो चल गल चाची के लेके काउंसिलिंग करे। तो काउंसिलिंग होला जोन भैया रहल वो पूछलन चचा के, चचा तू शादी काहे करलक? तो चाचा के तो लाल लाल गाल टमाटर जैसे शर्मा के, बोले हमनी के तनी मस्ती रहल हो वैसे शादी कर देनी। तो बोले चाची तू शादी काहे कलन? तो चाचा के तो गाल टमाटर नियर लाल लाल हो गल रहल ना। अब तो चाची के तो आंख टमाटर नियर लाल लाल होके खिसिया के चाचा के ओर देख के, बोले एकरा तो मस्ती रहल, एकर सब मस्ती उतारे खातिर हम शादी कर ले रही।

भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी दर का कार्यक्रम और मजेदार गीत के संगे संगे चला है। जहाँ पर कल्याणी जी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन बुआ शेरी बगल से, और अगला गीत जो ना संभावती दुमन के आवाज में वो मांग कर ले हुआ है। और है गीत भी बहुत मजेदार, कैसे बोला बे को कुहा नियर, हाँ हो ऊर्जा नियर, जाने ल हमर जो चचा है कौन दिन कौन ची होल बार सब खड़ा हो गल, अखवा तक करिया करिया और कान में से जैसे धुआं निकले, मुआ तो ऐसे फाट के तो चाची के बुझाल का होल, चचा के तो उठा के हाली से टैक्सी में डाल के लेके गल लोपीताल। तो लोपीताल में जाके डॉक्टर के बोले हाली से देखकर हम

जानी के बूढ़ा के का जानी कौन ची होल। तो चाचा के देख के डॉक्टर बोले हाँ कौन ची होल ओकरा माता जी ओकरा कौन ची कुहा धरले बाकी का। बोले नहीं कुहा तो नहीं धरले बा पर कुहा के पापिया आल रहल त कुहा के पापिया देख के ओकर सब बार सब ऐसन खड़ा हो गल आंख में से ऐसन ऐसन आंखवा तक करिया हो गल जैसे कि कुहा लग गल बा। बोले कौन पापिये? बोले कुहा के पापिये चलाल त जैसे उधर देलक त ओकर बुझाल जैसे कुहावा चल गल। बोले हाँ तनी महंगा हो गल बा ना महंगाई बढ़ गल बा हवे से तनी झटका लगल चाचा के 4000 रुपया के बिल चलाल बोलत।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और देखते देखते 9:55 हो गए।

बा एक घंटा कैसे बीतल हाली से और ही चला एगो और घंटा रह गल बा बिल्कुल 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और हईजा पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन शोभा जी पॉम्पलेमूस बगल से और उनकर सब संगतिया खातिन सब कोई दोस्त खातिन सब परिवार खातिन अगला गीत के मांग करत हवन और हई गीत भी बहुते मजेदार लागी नहीं छूटे राम की एगो बढ़िया गीत है रखिया बंधाल भैया काहे के सावन के महीना चलाल बा और आवत समय में मनावब जा राखी के पर्व चला जितना भाई बहिन लोग सुनत हवन उन सब कोई के बहुत बहुत प्यार और अगला गीत जोन हई गीत चलाव अब जा विजय बंधन जी खातिन भी जे क्लावेज से हमनी के साथ देवत हवन पत्नी रेखा और तीन गो बहिन है चंदनी बिंदु कुमारी और जितना संगतिया हवन उन सब कोई खातिन बहुते प्यार से चलाव अब जा और हमनी के पीतो बगल से जुड़ गल हवन गणेश परिवार अमृता गणेश हमनी के साथ देवत हवन उनका दू गो नातिन सोनिया और परी बेटा हवन विषम पतो हवन मीनाक्षी और बेटी हवन पूनम तो चला हंसते मुस्कुराते सब कोई साथ देते रहिए जाला जवाब कार्यक्रम चलते रही और हमर चचा के का बोलब दुखते ओकरा बोलले बा तनी मॉर्निंग वॉक करे के त हमनी के चचा बोले जाने ला मॉर्निंग वॉक करे के कोनो फायदा नहीं है हम बोली काहे ऐसन बोलत हवा चचा बोले देखा एक महीना से मॉर्निंग वॉक करत हई हमनी के एक बात तो समझ में चलाल बा कि मॉर्निंग वॉक करे के कोनो मंजिल नहीं है घूम फिर के हाउजे फेरो से जाए के पड़ी तोरा और कितना भी मेहनत करबा आई पेट जोन हा आई जोन तोहर पेट फुला गल बा उ फुले रही कबो भीतरे नहीं हेली हम बोली नहीं चाचा तू जाके उतना मॉर्निंग वॉक करके चलावेला अरे कितना गातो पीमा खाला बोला था बड़का बड़का जीपे में इतना जीपे सब लगा के खाई बा तो कहां से तो हर पेटवा भीतर जाई बोलता अरे चला एगो बढ़िया गीत बोला तरफ सुनावत है हई जोन गीत है राखी के गीत है तनी तोहर बहिन खातिन चलावब है चलावत है तो सुना है गीत बहुत मजेदार गीत है और जाने ल एग्जरसाइज करिए तनी

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का।
2: आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
3: भोजपुरी तड़का मजेदार कार्यक्रम और 10:02 होगलवार रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के जितना कोई श्रोता लोगन हमनी के सुनत हवन, बस प्यार से साथ देते रहिए जा और मजेदार कार्यक्रम संगे है जा पर हमनी के प्यार ही चाची शांता सुकागी भी जुड़ गल हवन से जमिल फॉरेस्ट बगल से, और उनकर पतो हवन किरण और नाती हवन पावेश, नातीन संजना, चार गो बेटा सुदेश, गाविन, सुजीत और अशोक खातीन चलाव अब जागला गीत गीता गजाधर के आवाज में रखल। और हई गीत खास करके चाची बोले हमर समधी जी खातीन चनी चला द हई गीतवा मेघदत्त जपत रॉय जे ग्लेन पॉक से हमनी के संगे जुड़ गल हवन और सब जपत रॉय परिवार खातीन तजलत चलाव अब जा समधी समधन खातीन हई गीत गीता गजाधर के आवाज में रखल समधन के लगे हिचकी। आउरी हमर चचा है कौन दिन हमनी के बोले हमर कुत्ता जोन है वो अंडा दे ले बा। हम बोली चचा तोर कपार घूम गल बा का, कुत्ता कबो अंडा देवे सकी? बोले हाँ काहे नहीं देवे सकी। हम बोली चचा कुत्ता तो जनावर है और अंडा तो मुर्गी देवेला। बोले हमर मुर्गी के नाम हम कुत्ता रख देले हाँ वही खातिर हमर कुत्ता अंडा दे ले बा हो। कलिते के एक्सपेरिमेंट करता है चचा।

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:10 हाली समय वा आगे बीतता और ही चला अगला गीत जो हम मानती जी हमने के साथ बहुत प्यार से देवत हवन नोएल फ्रांस से और आज तक उनकर सब परिवार उनकर संगे जुड़ गल हवन और अगला गीत जोन है मड़ैया में आग लगल बा है गीत मंगले हवन उनकर दुगो बहिन अनंती और आरती दुगो पतो हवन अनुषा और उर्वशी और साथ देवत हवन गिरीशा मितिशा अमिक्षा साथ हवन भव्या पुष्कल और हितांशु चला हंसते मुस्कुराते है गीत सुनब जा और ही हमर पप्पू भैया के किस्सा सुनते चला पप्पू भैया कौन दिन आल एविताशो करे बोले जाने ला हम बहुत खुशी है हम बोली काहे भैया पप्पू कौन ची होल बोले हम और हमर जन छोकरी संगतिया है ना शादी करत हवन अरे हम तो बहुत खुशी हो गई ने हम बोले अरे वाह पप्पू भैया तोरो बहुत बहुत बधाई बोले हाँ हमर शादी होवा था 20 के और हमर जो छोकरी संगतिया है ना ओकर शादी होवा था 30 के तो हम बोले हैं है कैसे

बोले अलग अलग शादी करत हई, संगे संगे शादी नहीं करत हई। हमरे तो इतना खुशी से तू काहे अपन शादी के इनविटेशन करत हवा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का, तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखत है और हैजा पर हमनी के साथ देवत हवन अनीता जी फ्लिकॉ फ्लाग देनी से और संतोष महादेव के आवाज में रखल पियर पियर उंठी के गीत के मांग करले हवन तब मजेदार गीत बा और मजेदार गीत संगे चला सुनब जा अगला गीत उनकर खातिर उनकर सब परिवार खातिर और जितना कोई खुशी अवन है गीत सुने के और ही आप सब कोई के याद दिलावत है कि चचा गजोधर का जनी कैसे कैसे हमर चाची के बतवा सुना देवेला जाने लो हमर चाची बिचारी नवा नवा सब पकवान सीखेलन सा यूट्यूब पे देख देख के और कौन दिन इतना जोली से एगो तरकारी जोन चीज रहल घर में वो सब सब्जी डाल के एगो बढ़िया तरकारी पका के पारी करके चचा के परोस देलक तो चचा तक खा के जैसे मुंह बनैलक और हाली से हल्ला करके बुलैलक चची चाची के बोले अरे बुढ़िया हियाँ तो चाची तो चलाल तो बोले का पकैले हवन बोले का है एगो बढ़िया तकारी बनाई ले हाँ, हाँ, यूट्यूब पे देख देख के बोले हाँ एकर नाम का है बोले नाम तो नहीं जानी ला देख देख के पकैले रही

नमवा तो नहीं देखले हई। बोले काहे पूछत हवा हो? बोले जब मर के जाब यमराज हिया तो यमराज पूछी नहीं हमनी के कौन चीज खाके मरल रलन, तो हवे बोले के तो नाम तो नहीं जानत हवा, तो कैसे जानब कौन चीज पकैले हवन। कुछ ना कुछ पकैते रहेला हमर बुढ़िया।

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:22 हो गलबा। जितना कोई रात के काम करत हवन, आप सब कोई के बहुत बहुत हिम्मत के साथ बस आप सब कोई जुड़ल हवन। और आज के अगला गीत जोन है अनीता जी, अनीता लाल जी खातिन चलावब जाबो डाल बेसे साथ देवत हवन। और अगला गीत जोन है बसंत सुपोल के आवाज में रखल है गीत है, और ई तो परिवार गोगा परिवार, और उनका जितना खास दोस्त आज उनकर हिया आल हवन, सब कोई खातिन चलाओ अब जा। और हमर जोन चचा है कौन दिन ऐसे लंगड़ते लंगड़ते चलत हवन, और जितना कराता ता हम बोली चचा कौन ची होल, बोले का बोला अब हमर तो जाने लग गोड़ में घाव लगल बा, तो दोगतिया ही आ गल रली तो नसवा जाने लग कौन ची कलन। हम बोली हम कैसे जानब चचा, बोले नसवा एगो इतना बड़का सुई लेके हमर पाछे में भोंक देलक। हम बोले अच्छा पिकिया करा ले हो, बोले ओ छोड़ा पहला तक गोड़ में दर्द रहल चले नहीं सकत रली, अब तो बैठे नहीं सकत है हो।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला आगे बढ़ब स और हई जो नगला गीत है पूर्णिमा फोकीरा जी खातिन चलाओ अब जा फोकीरा परिवार देवी दयाल परिवार कालिया चेटी परिवार और SSRN के सभी दोस्त खातिन जितना सुनत हवन उन सब कोई खातिन चलाओ अब जा हई अगला गीत और हई गीत पूर्णिमा जी के आवाज में और जाने ल चाचा हमनी के एगो इतना मजेदार पते के बात बोलले बा बोले जब उठाता फजीरे तो देखत आई हई के भाव बढ़ गल हव के भाव बढ़ गल पेट्रोल के भाव बढ़ गल लाइसेंस के भाव बढ़ गल डीजल के भाव बढ़ गल काश हमनी के पगार भी ऐसने फजीर के उठते ही तोरा एगो जानकारी मिली तोहर पगार भी ऐसने बढ़ गल कितना अच्छा हो आई तो चचा तू नहला पे दहला मार देलक पर कहाँ होला हो ऐसे आई तो सपना बेचत हवा हमनी के।

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला है जा पर मेबग से हमनी के संगे जुड़ गल हवन कल्याणी मोहन जी और अगला गीत के उमांग करत हवन बहुते मजेदार गीत और है गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन जन बेलेना बेलेना बसंत सुपोल के आवाज में है ये गीत कर अब जा बिंदु काली चन खातिन और गायत्री उनकर भगिनी और उनकर बेटा अजय खातिन जे नोएल फ्रांस से हमेशा हमनी के साथ देवेलन और है ये गीत कर अब जा नीता खेदनी खातिन सेंट जूलिया विलार से जुड़गल हवन उनकर खास संगतिया स्वाधिका खातिन

0: नाचे भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला आज के मजेदार कार्यक्रम के आगे बढ़ावे खातिर अगला गीत एक बार फेरो से लागी नहीं छूटे राम के हाई गीत चलाओ अब जा श्यामा जी खातिर श्यामा रघुनंदन जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन गाँव गोप देने से और बिल्कुल उनकर भैया हवन जयप्रकाश भौजी हवन नम्रता केशव और युधीश दूगो भगीना और साथ हवन उनकर खास संगतिया विश्वानी जी और वीना राम फल जे हमनी के हमेशा सुनते रहेलन। और अगला गीत के साथ साथ हमर चचा जोन है कबो कबो ऐसन समझदारी के बात बोल देवेला हमनी के बोले जाने ल है जोन तोहर गलती पे जोन इंसान अपन गलती पे हसेला ओकर उम्र बढ़ जाला। हम बोले सच्चे के चचा? बोले हाँ। आउरी जोन अपन बुढ़िया के गलती पे हसेला ओकर उमीर जोन हा उ कमती होवे के शुरू हो जाला।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम अउरी चला पौने 11 बजता और हैजा पर शोभा जी का त्रिभुवन से हमने के संगे जुड़ गल हवन और ओमनिका के बहुत बहुत प्यार से बधाई देवत हवन जन्मदिन के जेकर काल जन्मदिन रहल 21 तारीख के। उनकर माता पिता दादा दादी नाना नानी भाई और उनकर सब परिवार के दिन से बहुत बहुत ओकरा जन्मदिन के बधाई देवत है और हमर पूरा MBC की टीम बगल से ओमनिका के बहुत प्यार बहुत बहुत जन्मदिन के बधाई। और जितना कोई जन्मदिन मनावत हवन बसंती जी बोले ओकर खातिन भी चला जात शोभा जी हमने के साथ हवन और शोभा जी हमने के बोले सब कोई जितना जन्मदिन मनावत हवन उनकर खातिन चला द एगो जन्मदिन के बहुत ही प्यारा सा गीत जरूर है गीत जितना कोई जन्मदिन मनावत हवन उन सब कोई खातिन हैप्पी बर्थडे।

0: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का।

0: और चला मजेदार कार्यक्रम संगे जितना कोई अभी हमनी के साथ जुड़ल हवन और हैजा पर निमन परिवार साथ देवत हवन हमनी के और निमन परिवार खातिन चलाओ अब जा अगला जोन लाखोश है बहुत मजेदार गीत है और है गीत चलाओ अब जा खासकर उनकर खातिन त चला सुनब जा बसंत सुपोल और सोना नयन के आवाज में रखल है गीत खासकर निमन परिवार खातिन।
1: अरे मूर्ख चिरंजीव ना रहे आम को इमली बताई पैदा होते ही कि नहीं मर गए सब दिन दुख बढ़ जाए।
0: चला हाइये गीत हमनी के जोड़ी हमनी के 11 बजे के कार्यक्रम सुनहरे पल के संगे और हाइये गीत के साथ आज के भोजपुरी दड़का कार्यक्रम हैजा पर समाप्त हो जाए। आप सब कोई हमनी के ढेर से बहुत प्यार से सुनलन बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा और आवत सामदी के एक और एक बार फेरों से सब कोई के साथ देवब जा हैजा रेडियो मॉरिशस सॉरी रेडियो मनोरंजन के लहरों पर भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में। चला साथ देवे खातिन बहुत बहुत धन्यवाद और एकर संगे रत्ना के दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि नमस्कार सब कोई के।

0: समस्त श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं और आप सुनहरे पल कार्यक्रम सुन रहे हैं। हमेशा की तरह श्रोताओं, आज भी बॉलीवुड के उस जमाने में आपको ले चले हैं जहां पर अभिनेता और अभिनेत्रियां जो थी वो कमाल का काम कर रहे थे। उनमें से एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिनका करियर तो एकदम सक्सेसफुल सफल रहा ही, और जिन जिन मूवीज में उन्होंने काम किया वो काफी अच्छे भी रही और गाने जबरदस्त। कौन है वो, ये पहला गाना आप सुनते चले, पता चल जाएगा।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

तो आज के ये सुनहरे पल कार्यक्रम में जिनसे हम मुलाकात करा रहे हैं वो है तनुजा। जी हाँ, वेटरन एक्ट्रेस तनुजा। सौंदर्य, प्रतिभा और स्वाभिमान की मिसाल। हिंदी सिनेमा के स्वर्णीय इतिहास में कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो सिर्फ अपनी फिल्में ही नहीं बल्कि अपनी शख्सियत, अपनी सोच और अपने अंदाज से भी याद रखे जाते हैं। ऐसी ही एक अभिनेत्री हैं तनुजा, जिन्होंने अपनी तीखी नज़र, खुले विचार और प्रभावशाली अभिनय से 60s और 70s के दौर को एक अलग पहचान दी।

उनका पूरा नाम तनुजा सामर्थ है। उनका जन्म 23 सितंबर 1943 को मुंबई में हुआ। वो एक कलात्मक परिवार से आती हैं। उनकी माँ शोभना सामर्थ खुद एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और फिल्म निर्देशिका थी और उनकी बड़ी बहन नूतन तो हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। इस प्रकार कला, रंगमंच और सिनेमा तनुजा के खून में ही बसा हुआ था।

0: तनुजा ने बचपन में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी पहचान एक मुख्य अभिनेत्री के रूप में 1950 के अंतिम और 1960 के दौर में बनी। उनकी पहली बड़ी सफलता 1960 की फिल्म छबीली रही, जिसे उनकी मां शोभना सामर ने ही डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में तनुजा का चंचल और जिंदा दिल अंदाज दर्शकों को तुरंत भा गया। इसके बाद तनुजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लगातार कई सफल और यादगार फिल्में की, जिसमें उनका अभिनय प्राकृतिक भावनाओं से भरा और बहुत ही जीवंत था।
1: ये

श्रोताओ, इस समय आप सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम बात कर रहे हैं तनुजा के बारे में। वैसे उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनकी नेचुरल एक्टिंग। वो बिना ज्यादा बनावट के अपने किरदार को जीती थी। उनकी आंखों की भाषा बहुत ही प्रभावशाली थी, कभी चंचल, कभी तेज, कभी गहरी वेदना से भरी हुई थी। उन्होंने ग्लैमर के साथ साथ स्ट्रॉन्ग रोल्स भी निभाए। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली थी। उस दौर में जब अधिकतर हीरोइन शर्मीली और शांत दिखाई जाती थी, तनुजा ने बोल्ड, कॉन्फिडेंट और जैसे कहते हैं ना आउटस्पोकन महिला के रूप को पर्दे पर पेश किया।

तनुजा की कुछ यादगार फिल्में हैं, जैसे कि 1966 की बहारें फिर भी आएंगी, 1967 की जुअल थीफ, 1971 की हाथी मेरे साथ ही, 1972 की मेरे जीवन साथी, 1971 की अनुभव और 1970 के पवित्र पापी। फिल्म हाथी मेरे साथी में उनका अभिनय आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म में उन्होंने ममता, समर्पण और नारी की सहनशीलता को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया। तनुजा का विवाह शोमू मुखर्जी से हुआ, जो एक फिल्म निर्माता थे। विवाह के बाद उन्होंने फिल्मों से कुछ समय के लिए दूरी बना ली और अपने परिवार पर ध्यान दिया। उनकी बेटियां काजोल और तनिषा मुखर्जी हैं, जो आज खुद फिल्म जगत का हिस्सा है। काजोल के रूप में हिंदी सिनेमा को एक और शक्तिशाली अभिनेत्री मिली, जिसमें कहीं न कहीं तनुजा की प्रतिभा की छाप स्पष्ट दिखाई देती है।

0: है प्यारा।
1: बाद के सालों में तनुजा ने माँ और कैरेक्टर रोल्स में वापसी की। उन्होंने भूत रोल्स प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला साथ ही आज जैसे प्रोजेक्ट्स में अपनी मैच्योर एक्टिंग से फिर से सबका ध्यान खींचा। ये उनकी कला की गहराई को दर्शाता है कि हर उम्र के साथ उनका अभिनय और भी निखर कर सामने आया। तनुजा को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके लंबी और समर्पित सेवा के लिए फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनकी कला, उनके संघर्ष और उनके प्रभाव को समर्पित एक सच्चा सम्मान है।

श्रोताओं, तनुजा सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक सोच, एक जज्बा, एक पहचान है। उन्होंने अपने काम से ये साबित किया कि सच्चा अभिनय शब्द से नहीं भावना से जन्म लेता है। उनका योगदान हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तनुजा ने एक ऐसे दौर में अपनी अलग राह बनाई जब परंपराओं को तोड़ना आसान नहीं था, इसलिए वो आज भी ग्रेस, स्ट्रेंथ और ओरिजिनलिटी का मिसाल मानी जाती है। प्रणाम, शुभ रात्रि।